लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के स्वरों से सजा ये गीत एक ही रास्ता इस फिल्म से अभी आपने सुना। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, हेमंत कुमार का संगीत था मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी बहुत ही सुंदर ये रचना थी। साथियों, पानी की जरूरत, जल की जरूरत हम सभी को होती है, इंसानों को होती है, पशु पक्षियों जीव जंतुओं को, और इस धरती को तो सबसे ज्यादा होती है। धरती को यदि उचित रूप से बारिश नहीं मिलेगी, जल सिंचाई नहीं मिलेगी, तो भाई खेत कैसे मुस्कुराएंगे, कैसे लहलहाएंगे? और अगर खेतों की प्यास बुझ जाए तो बिल्कुल अच्छे से मुस्कुराएंगे वो भी। इसी गीत में इसी तरह की सुंदर बात का समावेश।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी के स्वरों से सजा ये गीत लव इन शिमला फिल्म से अभी आपने सुना। 1960 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। साथियों, इकबाल कुरैशी का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना थी। साथियों, इस धरती पर हमें लाने वाले हमारे माता पिता, हमारा पालन पोषण करने वाले हमारे माता पिता, सबसे न्यारे प्यारे आदरणीय माता पिता, उन्हें प्रणाम करता, उनके सुख की कामना करता हुआ आइए ये सुंदर गीत सुनते हैं।

आशा भोसले की स्वर से सजा ये गीत आपने सुना, मदन मोहन का संगीत था, राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना, फिल्म का नाम आपकी परछाइयां जो रिलीज हुई थी वर्ष 1964 में। साथियों, सुहानी भोर का उदय हम सबको नव चेतना नव ऊर्जा दे रहा है, आइए स्वागत करें इस नव प्रभात का, नव भोर का, भोर सुहानी का।

मुकेश की आवाज से सजा ये गीत संत ज्ञानेश्वर फिल्म से अभी आपने सुना। 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, भरत व्यास की लिखी रचना। और अब आज के भोर जुबानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में ये गीत सज रहा है।

मुकेश की आवाज से सजा ये गीत अनाड़ी फिल्म से अभी आपने सुना। 1959 रिलीज ये फिल्म शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना थी। इसी गीत के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 जुलाई वर्ष 2026। सवेरे के 5:53 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रही हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दिए देते हैं।

अर्पण कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 6:10 पर, 6:44:30 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान अयोध्या कांड, इसमें होगा आज इसका चौथा भाग प्रसारित किया जाएगा। संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे प्रातः 6:55 पर, 7:00 हिंदी में समाचार आप सुन सकती हैं। अंग्रेजी समाचारों का वक्त प्रातः 7:05 पर।

गोल्ड सुप्रभात सुनिएगा प्रातः 7:10 पर। आज सवेरे इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रातः 7:30 पर। हिंदी समाचार सुनेगा समाचार प्रभात के तहत प्रातः 8:00। 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार। उर्दू में बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा प्रातः 8:30 पर। म्यूजिकल दिल लगी सुनिएगा ये कार्यक्रम प्रातः 8:45 पर। हिंदी में समाचार आप सुन सकते हैं प्रातः 9:00। अंग्रेजी में समाचार प्रातः 9:05 पर। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा,
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल

0: मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। द गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nanda Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and Logistics Expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: Union Minister Prahlad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. Lata Gupta has been named chairperson of the Delhi Commission for Women with Shambala, Malti Verma, Lata Sodhi, Sandrika Sharma Jha and Renu Bhalla appointed as members. Nirmal Jain has been appointed chairperson of the Delhi Minorities Commission with Kuldeep Singh and Muhammad Haroon as members. Chief Minister Rekha Gupta stated that these initiatives aim to enhance the protection of women's rights, support the empowerment, ensure the welfare of minority communities and safeguard their constitutional rights. A deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in Odisha from today, with the India Meteorological Department issuing red alerts for several districts. As a precautionary measure, the state government has ordered the closure of all government and private schools, higher secondary institutions and Anganwadi centres in Mayurbhanj and Jagatsinghpur districts. Maritime operations have also been suspended and fishermen have been advised not to venture into the sea. US and Iran have paused attacks for a second straight day, raising hopes of renewed negotiations on an interim ceasefire after nearly 2 weeks of escalating military action. US Ambassador to the UN, Mike Wald, said yesterday, President Trump is giving diplomacy space, noting that Oman, Iran and other negotiators have been engaged in talks at all levels in recent weeks. India's weightlifting queen Mirabai Chanu has won her first gold medal for the country at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. She dominated the women's 48kg weightlifting event with a record-breaking total lift of 190 kilograms. The 31-year-old weightlifter set new Commonwealth Games records by lifting 85 kilograms in the snatch and 105 kilograms in the clean and jerk. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have congratulated Mirabai Chanu on her achievement. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare yesterday. And that is the end of this news bulletin.

सोमवार की सुहानी सुबह और एफएम गोल्ड का साथ। आइए अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को संगीत के रूप में ढालते हैं और लेते हैं आनंद भक्ति संगीत का अर्पण के जरिए। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज साथ हूँ मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

हमें याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा हमारा प्रेरणा का स्रोत हमारा विश्वास है, क्योंकि जिस चीज में हमें विश्वास होता है वही कार्य हम पूर्णता से कर सकते हैं।

वक्त हो चला है 6:31 आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

भावनाओं से स्वच्छ हुए मन में विराजमान होने के लिए ईश्वर उसी प्रकार खींचा चला आता है जैसे सघन छाया के हरे भरे पेड़ के नीचे विश्राम पाने को थका हुआ पथिक आकर्षित होता है। आत्मिक पवित्रता ही रिद्धि सिद्धियों का स्रोत है। उपासना आवश्यक है और उपयोगी भी, पर उसका लाभ केवल उन्हें मिलता है जो अपनी मनोभूमि को सद्भावना से और अपने शरीर को सत्कर्मों से पवित्र बनाते हैं।

परिस्थितियां मानव की राह में रोड़ा बनकर तब तक ही आती हैं जब तक उसने अपने आप को कर्म के प्रति निष्ठावान न बना लिया हो।

अयोध्या पुरी में श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावे बजने लगे। अयोध्या के महल में श्री राम तथा सीता जी को अंग फड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या आगमन की सूचना का संकेत मानते हैं। रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पुराए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी। ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, और आइए अब सुनते हैं संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नन्दन नीलेकणी करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्व निदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्व निदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन विशेषज्ञः अमितलाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षाव्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भाविपरीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षासम्बद्धानाम् अनियमिततानां निवारणाय कठोरप्रावधानयुक्तं नूतनविधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंह एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गत शुक्रवासरे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गे परीक्षासु च अनुचित

0: साधनप्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुतन्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतरदण्डविधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूपविधेयकम् अनुमोदितम्। केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लादजोशी शिक्षामन्त्रिणः कार्यभारम् अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गतशनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमानमन्त्रालयैः सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तानदेशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रक्षा मंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रासनगरे 27वें कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु भल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिम युद्धविराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अमेरिका देशस्य राजदूतः माइक वॉल्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपति ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु महिलानां 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्णपदकं विजितवती। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। श्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
3: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
2: कार्यबल में आसूचना ब्यूरो आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संडिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग 2 की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है।

0: संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत माइक वॉल्ट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 लोग घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लॉट के तौर पर हुई है। लगभग 24 घंटे की खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई ने असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतना उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4th राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। श्री शाह ने कहा कि शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Dekha, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and Logistics Expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing,

0: कहते हैं सुबह का आगाज अगर जोश और उम्मीदों से भरा हो तो दिन अच्छा गुजरता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बेहतरीन गीतों के साथ आपकी सुबह को और हसीन बनाने आ गए गोल्ड सुप्रभात लेकर, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आज साथ हूं मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।
1: सुनिए,
2: कहिए, कहिए,
1: सुनिए, सुनिए,
2: कहिए, कहिए ना।

मौसम की अगर बात करें तो आसमान में बादल छाए रहेंगे, ह्यूमिडिटी बरकरार रहेगी, कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी हो सकती है। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो देखते हैं ये जो घटा आसमान में छाती है, बरसती है या फिर ऐसे ही हमें निराश करके चली जाएगी।

वक्त हुआ है 7:21 और ये हो गए पूरे 22 मिनट। आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। तो आइए सुनते हैं एक फूल दो माली फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं कुछ बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी आपकी सेहत को सुरक्षित रख सकती है। जैसे पानी को हमेशा उबाल कर पिएं, ताज़ा और गर्म भोजन को ही प्राथमिकता दें, खुले में बिकने वाले कटे फल या स्ट्रीट फूड से बचें, भीग जाने पर जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहनें ताकि सर्दी जुकाम के जोखिम से बच पाएं। और ये भी ध्यान रखें कि मच्छरों से बचाव के लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें। हाथों की सफाई का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी सतर्कता और अच्छी आदतें इस सुहाने मौसम का आनंद भी बनाए रखेंगी और आपकी सेहत भी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। इजाजत दीजिए बबीता को और आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी के स्टूडियो से इस बेहद खूबसूरत सुबह में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो आज सवेरे। स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ जया भारती और आज तारीख है 27 जुलाई। श्रोताओं, आज की सुबह की शुरुआत भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के इसी ऊर्जावान विचार के साथ। आज उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें याद कर रहा है। मेहनत और सादगी का उनका यही मंत्र आज हमारे इस सफर की शुरुआत की प्रेरणा है। वैसे डॉक्टर कलाम के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने और बेहद दिलचस्प किस्से हैं जिन पर हम आज के कार्यक्रम में बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रूबरू कराएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन हलचल से, साथ ही जानेंगे आपके महानगरों की धड़कन यानी मेट्रो न्यूज और मौसम का ताजा मिजाज और आज के इतिहास। तो मनोरंजन, जानकारी, इतिहास और डॉक्टर कलाम की यादों के इस लाजवाब सफर को मिस मत कीजिएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों और इन दिलचस्प शख्सियतों के बारे में पूरी जानकारी के लिए कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आज मेरी को होस्ट हैं सुभद्रा रामचंद्रन। हेलो सुभद्रा।
1: हेलो जिया, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल यू लिसनर्स। वेक अप एंड स्टार्ट द न्यू वीक। We are here with another edition of Aaj Savere, so get ready and settle down as we begin the program with some headlines.
0: बिल्कुल, तो बढ़ते हैं आज की सुर्खियों पे। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट द यूथ ऑफ द कंट्री हैव अ क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग अ विकसित भारत। ही सेड दे आर नॉट ओनली द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अ डेवलप्ड इंडिया बट आल्सो इट्स ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरीज। एड्रेसिंग पार्टिसिपेंट्स ऑफ द विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मिस्टर मोदी सेड डेवलप्ड विलेजेस आर द फाउंडेशन ऑफ अ विकसित भारत एंड दैट यंग पीपल हैव अ वाइटल रोल इन अचीविंग दिस विजन। He highlighted that despite facing challenges, residents of border villages have always maintained an unwavering spirit of patriotism.
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज की ये यात्रा सबको जोड़ने और सबसे जुड़ने का ही एक सशक्त माध्यम है और अब आप सभी की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है। आपकी ये यात्रा यूनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन की यात्रा है। भारत का युवा जितना ज्यादा भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा उतना ही वो भारत को सरलता से जानेगा, वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री संग्रहालय में कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलो बॉक्स का उद्घाटन किया गया। यह आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का एक जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। होलो बॉक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करके भारत के प्रमुख नेताओं के दृष्टिकोण, विचारों और योगदान को इंटरैक्टिव 3D के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दर्शाया गया है, जिसमें आगंतुक इन प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ संवाद कर सकते हैं। इन पहलों के माध्यम से प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्देश्य भारत के सशस्त्र बोलों को गौरवान्वित करना और देश के दूरदर्शी नेताओं की विरासत संरक्षित करना है।
1: इन आवर बायलिंगुअल लाइव फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीड टुनाइट एट 9:30 PM वी विल ब्रिंग एन इनसाइटफुल डिस्कशन ऑन वेक्टर बोर्न डिजीजेस Prevention, Protection and Public Awareness with Dr. Akshay Dhariwal, Public Health Specialist and former Director, National Center for Vector-Borne Diseases Control, and Dr. Piyush Ranjan, Professor in the Department of Medicine, AIIMS, New Delhi. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2331-0481, 011-2371-7117, 011-2371-7106 and 011-2331-4444, 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 928-909-4044 or post your questions on X with the hashtag AskAir. The Ministry of Jal Shakti has said that Rajnandgaon district in Chhattisgarh has emerged as a national front runner in water conservation through scientific planning and community participation under the Catch the Rain campaign and Mission Jal Raksha. More than 60,000 water conservation and recharge structures have been created across 662 villages. Over 500 defunct borewells have been converted into recharge shafts. More than 600 injection wells have been linked with over 1,700 mini percolation tanks and over 2,500 water bodies have been geotagged.
3: आंध्र प्रदेश की हथकरघा और वस्त्र मंत्री एस सविता ने बुनकरों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। अमरावती में दिग्गज हथकरघा नेता प्रगदा कोटैया की जयंती पर कल उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रीमती सविता ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए सरकार ने इस अवसर को राज्य उत्सव घोषित किया है। श्रीमती सविता ने कहा कि एनडीए सरकार बुनकरों के लिए सम्मान जनक आजीविका सुनिश्चित करने के लिए कई कल्याणकारी उपाय लागू कर रही है।
1: Going over to some sports news. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare, chasing a target of 193.

0: रहे तो क्यों ना ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों की भी बात करें, जहां भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में 190 किलोग्राम के रिकॉर्ड तोड़ भारोत्तोलन के साथ शानदार प्रदर्शन किया। तो भाई ये सुनते हैं कि इस जीत के बाद मीराबाई चानू ने क्या कहा।
1: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: 31 वर्षीय इस भारोत्तोलक ने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए नए रिकॉर्ड बनाए। इस जीत के साथ ही उन्होंने 2018 और 2022 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद लगातार तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। और अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का, तो सबसे पहले शुरुआत चेन्नई से करें सुभद्रा।
2: Yes, let's start with news from Chennai, Jaya. The Greater Chennai Corporation has launched several measures to bring out of school children back to classrooms and prevent dropouts. The initiatives include appointing psychological counselors in schools and resettlement colonies, conducting socio-economic surveys to identify vulnerable children, organizing special camps for Aadhaar and birth certificates, and improving coordination with neighboring districts to ensure better access to schools. Greater Chennai Corporation Commissioner G.S. Samiran said the civic body will increase awareness about physical and mental health, step up action against drug abuse near schools, and work with the Madras School of Social Work to carry out socio-economic surveys in vulnerable areas. Moving over to Bengaluru, Karnataka Deputy Chief Minister Dr. G. Parmeshwara has called for greater efforts to promote physiotherapy as part of preventive health care and strengthen sports medicine in the state. Speaking at the Bangalore Physiotherapist Network Colloquium in Bengaluru yesterday, he said the government will explore making physiotherapy services available at the district level to provide better support for athletes. Dr. Parmeshwara said physiotherapy should not be limited to treating injuries but should become a regular part of healthy living. He also stressed the need to ensure quality healthcare reaches every citizen. Jaya?
0: हाँ, अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के खबरों की बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वहीं निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। दिल्ली से एक और अच्छी खबर है हमारे पास कि दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी को भारत मंडपम में आयोजित दिल्ली सरकार अचीवमेंट और स्कीम एक्सपो 2026 में शहरी नागरिक सेवाओं तथा जन कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नागरिक केंद्रित सेवाओं, जन कल्याणकारी पहलों और शहरी प्रशासन में नवाचार के क्षेत्र में एमसीडी के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया है। और बात करते हैं मुंबई की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल ठाणे में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें से तीन हाथ नाका यातायात जाम निवारण परियोजना भी शामिल है। इस परियोजना से सिग्नल पर प्रतीक्षा समय घटकर 15 सेकंड होने की उम्मीद है। मंत्री ने ठाणे तटीय सड़क, पूर्वी फ्रीवे विस्तार, ठाणे बोरीवली दोहरी सुरंग और प्रस्तावित पॉड टैक्सी नेटवर्क जैसी चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा की। और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुंबई विश्वविद्यालय अपने कलीना परिसर में इस माह की 29 तारीख को भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर पोस्टर और मॉडल निर्माण प्रतियोगिता सह प्रदर्शन

0: का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू अध्ययन केंद्र, भारतीय ज्ञान प्रणालियों के अध्ययन बोर्ड और पुरातत्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। 53 कॉलेजों के लगभग 125 छात्र इसमें भाग लेंगे। पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें 12 भारतीय भाषाओं में भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा।
1: And Jaya, now let's go to Hyderabad. Union Minister G. Kishan Reddy inaugurated the newly constructed Komuravelli Railway Station in Telangana yesterday, marking a significant boost for commuters and devotees visiting the Sri Mallikarjun Swami Temple. Built at a cost of 6 crore rupees under the Manoharabad Kotapalli new railway line project, the station has been equipped with modern amenities reflecting the cultural heritage of the temple. And we have another one from Hyderabad. The Telangana Agriculture Department is organizing a 3-day seed mela from today to July 29. At Raitu Vedikas in Mandal headquarters across all 33 districts. The fair aims to help farmers tackle the impact of El Nino by promoting low water crops and providing quality seeds through dedicated counters. Agricultural scientists will guide farmers on crop selection, climate resilient farming and sustainable practices. Certified seeds recommended by research institutions will also be available. The agriculture director has appealed to farmers to attend the seed mela at their nearest Raitu Vedika and purchase suitable high quality seeds for the upcoming season.
0: और अब बात करते हैं जॉय सिटी कोलकाता की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज उत्तर बंगाल के दौरे पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे सिलीगुड़ी में वर्धमान रोड पर नवनिर्मित फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे और श्रावणी मेले के दौरान जलपेश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में मुख्यमंत्री सिक्किम के नामची जिले में हाल ही में हुए सुरंग हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि सौंपेंगे। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। और अब रुख करते हैं मौसम का और जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। तो मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उधर मुंबई में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। शहर का न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसके अलावा कोलकाता में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। आज का न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: Chennai is likely to witness a partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. Temperatures are expected to range between a minimum of 29 degrees and a maximum of 38 degrees Celsius. A generally cloudy sky with light rain will be seen in Bengaluru. The minimum temperature is expected to be 20 degrees, while the maximum may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with haze. Temperatures are expected to range from 25 to 33 degrees Celsius.
0: तो अब समय है आज के इतिहास के बारे में बात करने का कि कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने आज अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1694 की, जब आज ही के दिन किंग विलियम तृतीय और क्वीन मैरी द्वितीय द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के लिए आधिकारिक तौर पर रॉयल चार्टर प्रदान किया गया, जिसने आधुनिक सेंट्रल बैंकिंग की नींव रखी।
1: 1939, the Crown Representatives Police was established in India, which is renamed the Central Reserve Police Force, CRPF, in 1949, and is today India's largest central armed police force.
0: और आज के दिन 1940 में यानी कि दुनिया भर में लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर बक्स बनी पहली बार एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म भी दिखाया गया था।
1: वेरी नाइस, वेरी क्यूट।
0: बक्स बनी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार बनने वाला वह पहला दुनिया का एनिमेटेड चरित्र था और यह केवल एक कार्टून चरित्र नहीं बल्कि एक वह वैश्विक पॉप कल्चर के इतिहास का एक सबसे बड़ा प्रतीक है।
1: They were a family, you know, of called Looney Tunes.
0: बिल्कुल। वार्नर ब्रदर द्वारा निर्मित यह शातिर और गाजर चबाने वाला खरगोश पिछले 85 से अधिक सालों से दुनिया को हंसा रहा है।
1: Yes, I know. I still watch them, right?
0: Yeah.
1: 1955, the Austrian State Treaty officially came into force, restoring Austria as a sovereign.

0: इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
1: और अगर हम इससे कुछ दिनों पहले जाएं, 27 जुलाई 1949 को उस दिन दुनिया के पहले जेट इंजन से चलने वाले कमर्शियल पैसेंजर प्लेन डी हैविलैंड कॉमेट ने अपनी पहली टेस्ट उड़ान भरी थी और इस जेट इंजन के आने से हवाई यात्रा का समय आधा हो गया।
0: And 2012, the spectacular opening ceremony of the 30th Summer Olympic Games was held in London, directed by acclaimed filmmaker Danny Boyle. And JR, today is, you know what, National Sleepyhead Day. This has actually happened in Europe, Finland. It is a traditional Finnish celebration in which the last person to wake up is playfully splashed with water. So JR, if you decide to sleep even after, you know, your alarm goes off, what will you do? And I'm going to wake you up then.
1: बिल्कुल, तो अगर अलार्म बजने के बाद भी अगर आप चादर तान कर सो रहे हैं या सोने का मन बना रहे हैं तो संभल जाइए कहीं ऐसा ना हो कि कोई आकर आप पर भी ठंडा ठंडा पानी डाल दे।
0: I don't know where you live, otherwise I would come and
1: तो इसलिए मैं सभी श्रोताओं से भी ये कहना चाहूंगी कि जल्दी से उठिए और मुस्कुराते हुए अपने जीवन की शुरुआत कीजिए।
0: Yes, of course. So let's move on to our next section. We're starting with Mr. Kalam, I guess, 2015.
1: जी.
0: APJ Abdul Kalam, as the 11th president and celebrated aerospace scientist, passed away in Shillong this day. This happened in the year 2015. And of course, he played a leading role in the development of India's missile and nuclear weapons programs.
1: बिल्कुल, हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जो अखबार बेचते बेचते एक दिन देश का सबसे बड़ा अखबार बन गया।
0: यस,
1: रामेश्वर के उस लड़के की बात जिसे दुनिया ने मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति कहा।
0: यस, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007।
1: बिल्कुल,
0: एंड ऑल्सो यू नो ऑफकोर्स हिज साइंटिफिक अचीवमेंट्स एंड पॉपुलैरिटी गेन्ड हिम द एपिथेट्स मिसाइल मैन एंड पीपल्स प्रेसिडेंट। And Jay, he also wrote several books, you know, autobiography, Wings of Fire, this in 1999, and a book titled Ignited Minds in 2002. And among his numerous awards were three of country's highest honors, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and the Bharat Ratna.
1: जी, आपने इनके बारे में बात की है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि हम इनके कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बात करेंगे, तो बताना चाहूंगी कि रामेश्वरम का वो तटीय इलाका जहां लहरें किनारे से टकरा कर लौट जाती थी, वहीं एक छोटा सा बच्चा लहरों के पार उड़ने वाले परिंदों को देखता था और उसने वहीं से तय कर लिया था कि एक दिन उसे भी आसमान छूना है। गरीबी थी, मुश्किलें थी, लेकिन इरादे फौलाद से भी मजबूत थे। सुबह 4 बजे से उठकर गणित पढ़ना, फिर स्टेशन जाकर ट्रेन से गिरते हुए अखबारों के बंडल उठाना और घर घर तक पहुंचना। कलाम साहब कहते थे कि कठिनाइयां इंसान को सफल का आनंद उठाने के लिए जरूरी है। और फिर भारत ने देखा विज्ञान का वो चमत्कार, चाहे वो देश का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यानी SLV-3 हो या फिर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें। पोखरण में जब परमाणु परीक्षण हुआ तो पूरी दुनिया देखती रह गई। डॉक्टर कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया, लेकिन जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी सादगी। जब वो देश के राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता और बच्चों के लिए हमेशा के लिए खुल गए। वे जनता के राष्ट्रपति कहलाए। 27 जुलाई 2015 शिलांग का वो मंच जहां वो छात्रों को संबोधित कर रहे थे, शब्द थे रहने योग्य पृथ्वी, और अचानक वो सितारा हमेशा के लिए आसमान में विलीन हो गया। डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लिखी किताबें जिनका भी आपने जिक्र किया, उनके विचार आज भी करोड़ों युवाओं की रगों में जोश भरते हैं। वो अक्सर कहते थे, सपने वो नहीं जो हमें सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और आज देश तकनीकी और रक्षा के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उसकी मजबूत बुनियाद में कलाम साहब की ही विजन धड़कता है।
0: And friends, today is the birth anniversary of Bharati Mukherjee, a notable Indian-born author and professor known for her exploration of immigration and identity in her literary works. Born in Kolkata, 1940, she exhibited early literary talent and pursued higher education in English and ancient Indian culture before relocating to the United States for advanced studies. Mukherjee faced challenges as an immigrant, particularly in Canada, where she experienced discrimination discrimination, themes that are prevalent in her writings. And she later moved to the US, embracing the concept of the melting pot, identifying simply as an American with Bengali roots. Her famous novels are Jasmine, Tiger's Daughter, Wife, and The Holders of the World.
1: आज की तारीख सिनेमा जगत के एक ऐसे चेहरे से भी जुड़ी है जिनके बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास अधूरा है। आज हिंदी फिल्मों के कालजयी अभिनेता अमजद खान की भी पुण्यतिथि है। फिल्म शोले के गब्बर सिंह के रूप में उनका निभाया किरदार और उनके डायलॉग आज भी हमारी बोलचाल और वैश्विक पॉप कल्चर का एक अमर हिस्सा है।
2: कितने आदमी थे
3: सरदार? दो आदमी।
2: दो आदमी, वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। खाली हा क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों
1: सिल्वर स्क्रीन पर जब ये खौफनाक आवाज गूंजती थी तो सिनेमा घरों में सन्नाटा छा जाता था, है ना सुभद्रा?
0: ऑफ कोर्स।
1: लेकिन पर्दे पर डर का दूसरा नाम बन चुके गब्बर सिंह, यानी हमारे अपने अमजद खान साहब, असल जिंदगी में बेहद जिंदा दिल, हसमुख और चाय के बेहद शौकीन थे। अमजद साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वैश्विक पॉप कल्चर में वे हमेशा अमर रहेंगे।
0: And friends, today is the birthday of Pandit Bishwamohan Bhatt, the Grammy-winning Hindustani classical music instrumentalist who plays the Mohan Veena. It's called a slide guitar. He is one of the foremost disciples of Pandit Ravi Shankar and belongs to the Mehar Gharana, founded by Ustad Alauddin Khan. Vishwamohan Bhatt first attracted attention in the world of Indian music by introducing the techniques of the sitar, sarod, Veena to the Hawaiian guitar. He subsequently won wide appreciation in India and abroad with his creative and experimental works in collaboration with musicians from other countries. He modified, Indianized the Western instrument and called it Mohan Veena. Pandit Bhatt has composed for films as well. His first fusion music album with Rai Kuda, A Meeting by the River, won him his Grammy in 1994. And of course, he's also created numerous compositions, including one based on Kalidasa Meghadutam, a sample of Pandit Vishwamohan performing a tune in Raag Khirwani, which is also called the best rock for rainy season. Here goes.

0: आज साहित्य की दुनिया के लिए भी एक बेहद संजीदा दिन है। आज राजस्थान की माटी से निकले हमारे समय के जाने माने संत कवि पंडित शिवदीन राम जोशी की भी पुण्यतिथि है। 27 जुलाई 2006 को वे इस नश्वर संसार को छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए थे। जोशी जी के बारे में एक बेहद विस्मयकारी बात यह है कि उन्होंने मात्र 10 वर्ष की कोमल आयु से ही साहित्य सृजन और काव्य लेखन शुरू कर दिया, जो जीवन पर्यंत तक चलता रहा। समाज में व्याप्त कुरूतियों और पाखंड पर करारी चोट करने वाले जोशी जी ने ज्ञान और वैराग्य के सच्चे साधक थे। वे अक्सर अपनी रचनाओं में लिखते थे कि अनुराग में प्रेम है, त्याग में प्रेम है, ज्ञान ही प्रेम है, ध्यान ही प्रेम है, राम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है।
1: Country singer, songwriter Bobby Gentry, whose real name is Roberta Lee Streeter, took birth this day in Chickasaw County, Mississippi. She learned to play the piano after watching the church pianist and later taught herself how to play the banjo, guitar, bass and vibes. Bobby was one of the first lady artists who wrote and produced her own material. Her late 60 hit Ode to Billie Joe earned her 3 Grammys. Let's listen to a bit of it right now.

0: आज 27 जुलाई को देश अपनी उस जांबाज बेटी को भी याद कर रहा है जिसने भारत माता के पैरों में बंधी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हाथों में बंदूक उठा ली थी। आज महान महिला स्वतंत्रता सेनानी कल्पना दत्त जी की जयंती है। जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे जहन में पुरुषों के नाम पहले आते हैं, लेकिन कल्पना दत्त ने यह साबित किया कि आजादी की लड़ाई में देश की बेटियां किसी से भी पीछे नहीं थी। उनका जन्म 27 जुलाई 1913 को हुआ। वे प्रख्यात क्रांतिकारी सूर्य सेन, जिन्हें दुनिया मास्टरदा के नाम से जानती थी, उनके क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी थी।
1: And friends, we remember Bob Hope on his death anniversary. British-born American entertainer, comic actor known for his rapid-fire delivery of jokes and one-liners and for his success in virtually all entertainment media. And we also remember Tony Martin on his death anniversary, an American pop singer, movie actor whose handsome looks and smooth baritone made him one of the most celebrated all-round entertainers of his era.
0: आज सुरु की देवी पद्म भूषण डॉक्टर के एस चित्रा जी का भी जन्मदिन है। आज के दिन वो केरल में जन्मी थी और दुनिया उन्हें मैडली क्वीन के नाम से जानती है। तो सुनते हैं उनका ये बेहद जादुई आवाज का यह गीत।

0: तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जया और सुभद्रा को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश

0: में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।

0: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
1: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है, इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार PM ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, NEET UG प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब IT नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 इन लोकसभा टुडे। Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bags silver in men's 60kg class. And now the news in detail. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of Parliament to participate in the discussion on the exam reform bill. In a social media post, Mr. Rijiju said, after listening to the voice of the young generation and the historic decisions taken by Prime Minister Narendra Modi for the future of students, he appeals all MPs to participate in the discussion today. We have a report.
6: The bill has strong penal provisions to deal with any case of paper leaks. According to the listed agenda of Lok Sabha, Union Minister Jitendra Singh will introduce the bill in the House. The bill introduces 7 key amendments designed to plug enforcement loopholes, establish dedicated judicial mechanisms, and accelerate criminal trials. It also seeks to significantly overhaul the 2024 framework by instituting strict time frame for both investigations and judicial proceedings. State governments and Union union territory administrations will be empowered to designate courts of sessions as special fast-track courts dedicated exclusively to trying offences under the Act. According to the provisions of the bill, proceedings in special fast-track courts must be conducted on

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में तरमीम का 2026 का बिल पेश करेगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सभी अरकान पार्लियामेंट से जोर देकर कहा है कि वो इम्तिहान के इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहसे में हिस्सा लें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकणी की सरबराही में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। वजीर आजम ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने राब्तों को मुस्तहकम करें। उन्होंने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारत की माया नाज वेटलिफ्टिंग एथलीट मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में लगातार तीसरी बार सोने का तमगा जीता है। ऋषिकांत सिंह ने मर्दों के 60 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में 2026 का तरमीमी बिल पेश करेगी। ये बिल आज कामकाज में लाजमी तौर पर शामिल है। इस बिल में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीके अपनाए जाने की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। ये बिल मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जुमे को मरकजी काबीना ने तेज रफ्तार अदालतें कायम करने के लिए इस बिल के मुसवदे को मंजूरी दी थी, ताकि पेपर लीक और इम्तिहान में गलत तौर तरीकों के मामलों में सख्त तर सजा को यकीनी बनाया जा सके। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट के सभी अरकान से अपील की है कि वो इम्तिहानात की इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहसे में हिस्सा लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि नौजवान नस्ल की आवाज़ सुनकर और तलबा के मुस्तकबिल के लिए वजीर आजम मोदी की तरफ से किए गए तारीखी फैसले के बाद वो सभी अरकान पार्लियामेंट से अपील करते हैं कि वो आज बहस मुबाहसे में हिस्सा लें। एक रिपोर्ट।
1: इस बिल में पेपर लीक के किसी भी केस से निपटने के लिए सख्त सजाओं पर मबनी शिकायतें शामिल की गई हैं। इस बिल में 7 अहम तरामीम की गई हैं, जिनका मकसद कानून लागू करने में खामियों को दूर करना, खसूसी अदालती निज़ाम कायम करना और फौजदारी मुकदमात में तेजी लाना है। इस बिल में तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए एक सख्त फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया है, जिसका मकसद 2024 के

ने कहा कि डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम एक दूरंदेश और रोशन ख्याल शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने भारत को एक तरक्कीयाफ्ता, खुद कफील और मजबूत भारत बनाने का ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा कि मुल्क की टेक्नोलॉजी से मिसाइल तैयार करने तक और भारत के खलाई प्रोग्रामों को नई बुलंदियों तक ले जाने में डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की खिदमात को भारतीय साइंस की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। कौम आज सबक

0: डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के तौर पर भी जाना जाता है। उनका 2015 में आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टर कलाम को खिराज अकीदत पेश करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के खलाई और मिसाइल प्रोग्राम का मेमार बताया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के यौम तासीस पर सभी फौजी एहलकारों, अफसरों और उनके कुनबों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि CRPF मुल्क को बाइख्तियार बनाने और उसकी सलामती में मुसलसल सरगर्म अमल है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन हमलों का सिलसिला रोके रखा, जिससे तकरीबन दो हफ्ते से जारी फौजी कार्रवाई के बाद एक उबूरी जंगबंदी के बारे में ताज़ा मुज़ाकरात की उम्मीदें पैदा हुई हैं। अक़्वामे मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप सिफारती कोशिशों का मौका दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओमान, ईरान और दीगर मुज़ाकरातकार हालिया हफ्तों में हर सतह पर बातचीत में सरगर्म रहे हैं। ईरानी फौज के एक तर्जुमान ने तस्दीक की है कि ईरान से खित्ते में जवाबी हमले रोक दिए हैं और जब से अमेरिका ने अपनी कार्रवाई बंद की है पिछली दो रातों से कोई हमला नहीं किया गया है। महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगोत्री, मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उत्तराखंड के दूरदराज इलाकों में भी आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश हो सकती है। साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, गुजरात खित्ते, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, माहे, पंजाब, विदर्भ और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम का इम्कान है। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को मुल्क के लिए सोने का पहला तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग जुमरे में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेटलिफ्टर ने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वेटलिफ्टिंग में भारत ने चांदी के भी मजीद दो तमगे हासिल किए हैं। बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि प्रीति पवार खवातीन के 54 किलोग्राम मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मर्दों के क्रिकेट में कल हरारे में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत की तरफ से जीत के लिए 193 रन का निशाना रखा गया था, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 157 रन बना सकी। इससे पहले भारत ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए थे। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों, उनकी रोकथाम, हिफाजती इकदाम और अवामी बेदारी के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा सेहत आम्मा के माहिर और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर कंट्रोल के कौमी मरकज के साथ डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय धारीवाल और एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 0112342100 और 0112331444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #AskAIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने इम्तिहान में इस्लाहात पर टास्क फोर्स कायम करने की खबर को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, इम्तिहानी इस्लाहात के लिए आला सतही कमेटी के क्याम का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, नंदन नीलकनी कमेटी की सरबराही करेंगे, हुकूमत तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुसलसल कोशां। रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर वज़ीर आज़म के बयान की खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, खलाई शोबे में निजी शराकतदारों का मुस्बत नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। रोजनामा

आइए हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक नए दिन एक नई सुबह का स्वागत करें आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है म्यूजिकल दिल लगी का, तो चलते हैं आज के सुरीले सफर पर। और आज साथ हूं मैं आपके पविता। नमस्कार।

हर गुजरता दिन इतिहास में कुछ घटनाएं जोड़कर जाता है, कुछ उपलब्धियां जोड़कर जाता है। आज का दिन यानी 27 जुलाई भी इसका अपवाद नहीं है। आज का दिन भारत के लिए एक भावुक स्मृति का दिन भी है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रख्यात वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन हुआ। उनका जीवन देश के युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। और इसके अलावा आज के दिन 1939 में भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की नींव क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के रूप में भी रखी गई। और आज के दिन 1994 में भारतीय संसद ने गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता लगाने वाले परीक्षणों पर रोक लगाने का कानून भी पारित किया। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी, और आइए अब सुनते हैं दुश्मन फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को स्वीकृति दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संडिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही यह दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
0: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित

0: की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49 गेंद पर 81 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, in a social media post, has appealed to all members of Parliament to participate in the discussion on the exam reform bill following historic decisions taken by Prime Minister Mr. Modi for the future of students. We have a report.
2: The bill has strong penal provisions to deal with any case of paper leaks. According to the listed agenda of Lok Sabha, Union Minister Jitendra Singh will introduce the bill in the House. The bill introduces 7 key amendments designed to plug enforcement loopholes, establish dedicated judicial mechanisms, and accelerate criminal trials. It also seeks to significantly overhaul the 2024 framework by instituting strict time frame for both investigations and judicial proceedings. State government and Union Territory Administrations will be empowered to designate courts of sessions as special fast-track courts dedicated exclusively to trying offences under the Act. According to the provisions of the bill, proceedings in special fast-track courts must be conducted on a day-to-day basis, with trials mandated to conclude within 3 months from the date the charge sheet is filed. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms, which will be led by renowned technology expert Nandan Nilekani. In a video message, he said that the task force will focus on examination reforms and, based on its report, steps will be taken as soon as possible to ensure the credibility of upcoming examinations. He said that the country's examination system must be trustworthy, transparent and leverage technology to the maximum extent.
3: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: Prime Minister Narendra Modi has urged young people to strengthen their connection with India's border villages. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing yesterday, Mr. Modi described developed villages as the foundation of a Viksit Bharat. Prime Minister said, when young people connect with grassroots realities, they strengthen India's journey towards inclusive development. Speaking about the Viksit Vibrant Village program, the Prime Minister said the initiative was designed to inspire young people to visit, understand and engage with the country's border villages. The nation pays tribute to

सुकून और आराम के बाद आता है मंडे, यानी कि सैटरडे संडे के बाद। तो कुल मिला के बात यह है कि घर में रहना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी होता है घर से बाहर निकलना। और मंडे हमें काफी इंस्पायर करता है कि भाई चलो उठो तो सही। 9:11 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। 27 जुलाई है ये, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे।

अब कोई कहे या ना कहे, लेकिन अपने आप को तो कहना बनता है ना कि आई एम द बेस्ट। चलो चलते हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही ना दिमाग भी चलता है पैरों के साथ साथ। और जहाँ तक रही पर्सी प्रेम की बात, तो प्रेम से परिचय तो आपका भी होगा ही। प्यार वाले गाने हम सबको अच्छे लगते हैं। आज भी प्यार के इंतज़ार में कई सारे लोग होंगे, और इस इंतज़ार को अगर साथ मिल जाए म्यूज़िक का तो भाई क्या बात है, क्योंकि म्यूज़िक का कोई एज तो होती नहीं, सिर्फ होती है तो एक वाइब होती है, कुछ ऐसा जो हमें कहता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा जो हमें किक देता है कि भाई चलो आज का दिन तो हमारा बड़ा शानदार होने वाला है। म्यूजिकल दिल्ली में आप सबका स्वागत है, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। आइए हमारे साथ जुड़ जाइए आप।

वो मुझे मालूम है कि ध्यान तो सारा का सारा मंडे पे है और मंडे को लेकर के ना नई नई चीज़ें आती रहती हैं। जैसे कि एक बात है बेयर मिनिमम मंडे, अगर हम इसकी बात करें तो मंडे को केवल हम उतना ही काम करने के लिए सोचते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बना संडे की घबराहट दूर हो, इसलिए बर्न आउट से खुद को बचाने के लिए सिर्फ ये एक सोच है, क्योंकि जब हम काम पर लग जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हम किधर हैं और काम किधर है।

चलते रहिए क्योंकि साथ में हम आपके हैं और हमें पता है कि हमें बड़ी चिंता होती है कि आगे क्या होगा। भविष्य की चिंता में हम सब पड़े हुए हैं, हालांकि पड़ोसियों को भी होती होगी। मानसिक तनाव और कई बार ऐसा लगता है कि जितने भी पैसे हैं हमारे पास वो सारे के सारे बहुत कम हैं। ऐसे में इमोशनल वैल्यूज भी तो कुछ चीज़ होती हैं, तो दूसरों को खुशी बेचकर खुद कमाई में बड़े सारे लोग लगे हुए हैं। जैसे कि ये तो आप सोचेंगे, मैं थोड़ी सारी बात बताऊंगी। वैसे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:24 और ठीक 40 सेकंड हो चुके हैं। म्यूजिकल दिल्ली की है ये, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

मैं और तुम इतने आराम से अब मिल सके, ये अब इतना आसान नहीं रहा। दोस्त बनाने, साथ घूमने और बातें करने के लिए भी अब ऐसे लोग हैं जो पैसे देना चाहते हैं, और कई लोगों को पैसे मिल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी हो रही हैं जो पहले ज़्यादा नॉर्मल लगती थी, और अब वो नॉर्मल चीज़ें स्पेशल हो गई हैं। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमें अपने आस पास जो ऐसी चीज़ें थी जो बड़े आराम से हमें मिल जाती थी, उन्हें उसी तरह से बनाए रखना, रिटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम छोटी छोटी बात के लिए पैसे देने लगेंगे तब कैसे चलेगा। इसीलिए जब हम कई बार खामोशी के साथ बैठते हैं तो बहुत कुछ हमारे आसपास सुनाई देता है। कभी आपने सुना है?

ऐसा तो सिर्फ गानों में हो सकता है कि हम चुप हो और कोई हमारी बात समझ जाए, क्योंकि ये बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? ये सवाल अब भी हमारे यहाँ रिश्तों में बहुत कम पूछा जाता है, और अगर कभी किसी ने पूछ भी लिया तो इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। ये बहुत अजीबोगरीब बात है, जहाँ एक बोल नहीं पाता और दूसरा सुन नहीं पाता। ऐसे में ये जो गाने होते हैं ना, बहुत हेल्प करते हैं, और हमें लगता है कि इनका साथ बड़ा बेमिसाल है, जिससे कि हम बहुत सारी बातें बड़े आराम से किसी के साथ भी कर सकते हैं, शायद अपने आप से भी। तो फिर आप इस ये जो छोटी छोटी बातें जिसका जिक्र हम अक्सर म्यूज़िकल दिल्लगी में करते हैं, कभी इनके बारे में सोचते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास हमारे साथ भी हो रही हैं, आखिर इनके साथ किया क्या जाए? उपाय भी हम सबके आसपास ही होगा, बस ढूंढने की ज़रूरत है।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना?

0: बिजली बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर,
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: से नहीं,
1: तन से। तो फिर समझ जाइए कि मोबाइल पे स्क्रीन टाइम कम करने का टाइम आ चुका है। मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त कंधे बहुत सारे लोगों के अब झुके रहते हैं हमेशा, और ये बच्चे बड़े सब में हो रहा है। तो फिर इसका एक टेक्निकल नाम भी दे दिया गया, नेक हम्प। अब ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर जाके ख़त्म हो गई, इसका तो हमें पता ही नहीं। लेकिन हाँ, अलर्ट ज़रूर कर सकता है कोई ना कोई जो हमारे आसपास बड़े आराम से ध्यान से इन सबको देखता है। तो ये टाइम है अपने आप को रोकने का।

आइए म्यूजिकल दिल्ली में आप भी शामिल हो जाइए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। अगर हम पूछें कि क्या आप थोड़ा सा झुका झुका सा फील करते हैं, मन

0: और ये दास्ता कहाँ जाके रुकेगी ये भी नहीं पता। अगर आपके होठों पे चोट का निशान है तो हो सकता है कि मोबाइल का हो, क्योंकि लेटे लेटे फोन जो गिर गया होगा।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

0: प्यार को।
1: और आप याद करेंगे इस बात को भी कि मिशन कर्मयोगी क्या है, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता, पारदर्शिता तथा कौशल को सुधारने की एक राष्ट्रीय पहल है और इसका मुख्य उद्देश्य है नौकरशाही को नियम आधारित रूल बेस्ड प्रशिक्षण से हटा करके भूमिका आधारित यानी कि रोल बेस्ड और जन केंद्रित बनाना। इसके बारे में और जानिए और फिर देखिए आपको कैसा लगता है। और अगर हम बात करें ओवर थिंकिंग की तो वो आप स्टॉप करना चाहते हैं और वो रुकती नहीं, तो कीजिए वही जो अच्छा लगता है, क्योंकि दिमाग खाली होगा तभी तो उसमें कुछ घुसेगा और दिल का भी कुछ यही हाल है। दिल और दिमाग दोनों थोड़े थोड़े खाली होने चाहिए, पूरे नहीं।

कहेंगे कि आपका मंडे आपके मन के अकॉर्डिंग हो, एकदम शानदार बीते, और आप कहें भाई वाह साथ हो तो फिर ऐसा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड जैसा। इसी के साथ मैं कहती हूँ बजने वाले हैं 10, समय है ये समाचारों का, और उसके बाद हम तो आपके साथ हैं ही, यूं ही बने रहेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोड़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
1: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
0: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई थी। डॉ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉ कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के अवसर पर

0: सभी जवानों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि असाधारण साहस, अटूट समर्पण तथा उच्चतम मानकों के साथ सीआरपीएफ ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ अटूट साहस, असाधारण कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि अपने स्थापना के बाद से सीआरपीएफ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर लड़ाई जीतकर गौरव के अनगिनत मील के पत्थर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The government will introduce the public examinations prevention of unfair means. Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of parliament to participate in the discussion on the exam reform bill. In a social media post, Mr. Rijiju said, after listening to the voice of young generation and the historic decisions taken by Prime Minister Narendra Modi for the future of students, he appeals all MPs to participate in the discussion today. Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms, which will be led by renowned technology expert Nandan Nilekani. In a video message, he said that the task force will focus on examination reforms and, based on its report, steps will be taken as soon as possible to ensure the credibility of upcoming examinations. He said that the country's examination system must be trustworthy, transparent, and leverage technology to the maximum extent.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: Prime Minister Narendra Modi has urged young people to strengthen their connection with India's border villages. Addressing the participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi described developed villages as the foundation of a Viksit Bharat. The Prime Minister lauded the growing role of youth in nation building through the Mera Yuva Bharat, My Bharat platform. Prime Minister said the youth of the country are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Mr. Modi said, when the energy of youth is channeled towards addressing national challenges and finding solutions, the future of the country becomes brighter. He added that when young people connect with grassroots realities, they strengthen India's journey towards inclusive development.
2: Viksit Vibrant Village ki ye yatra, sabko jodne और सबसे जुड़ने का ही एक सशक्त माध्यम है। और अब आप सभी की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है। आपकी ये यात्रा यूनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन की यात्रा है। भारत का युवा जितना ज्यादा भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा, उतना ही वो भारत को सरलता से जानेगा, वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे।
1: The nation pays tribute to former president and renowned scientist Dr. APJ Abdul Kalam on his death anniversary today. He played a crucial role in India's space and missile development programs. Dr. Abdul Kalam is also known as the Missile Man of India. He died on this day in 2015. Union Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla today pay tributes to the former president Dr. APJ Abdul Kalam on his death anniversary. Head of the Iranian Parliament

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन हमले नहीं होने से अस्थायी संघर्ष विराम पर बातचीत फिर शुरू होने की उम्मीद। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार 3रा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। और भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
1: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के अंतर्गत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
1: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
0: अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन अपने हमले नहीं किए। इससे लगभग 2 सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वाट्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं।
2: ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के हमलों से बचाव के लिए उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। उधर ईरान ने इलाके में हमले रोक दिए हैं। हाल ही में तनाव तब शुरू हुआ था जब ईरान ने हुर्मुज जलडम्र मध्य से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया। इसके बाद दोनों पक्षों ने रोजाना एक दूसरे पर हमले किए। अमरीकी सेना के ठिकानों पर ईरानी हमलों में जॉर्डन में 3 और इराक में 1 की सैनिक की मौत हुई। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। विश्व दर्पण के लिए मैं जया भारती।
0: ईरान ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि कैस्पियन सागर में वाणिज्यिक पोत पर कथित हमले का जवाब अवश्य दिया जाएगा। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान पर किसी भी हमले की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने संकेत दिया कि यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
3: इब्राहिम अजीजी की यह टिप्पणी ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची के आरोप के बाद आई है। उन्होंने यूक्रेन पर ईरानी जलपोत पर हमले का आरोप लगाया था जिसमें एक नाविक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। सैयद अब्बास अराग़ची ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले का आदेश दिया था। ईरानी विदेश मंत्री ने इसे संधि का उल्लंघन बताते हुए कहा कि ईरान इसका जवाब देगा। ईरान ने इससे पहले तेहरान में यूक्रेन के कार्यवाहक राजदूत को तलब कर घटना पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया था। यह राजनयिक विरोध व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की उस घोषणा के आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन ने कैस्पियन सागर सहित रूस में सैन्य लक्ष्यों पर लंबी दूरी के हमले किए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के अन्य हिस्सों पर हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलिवका शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
4: दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फ्रांस में ऐतिहासिक शहर बॉर्डरो के बाहरी इलाकों की ओर बढ़ती आग के कारण लगभग 2,20,000 लोगों को निकाला गया है। अटलांटिक तट पर स्थित कैंप फेरेट प्रायद्वीप में आग ने भारी तबाही मचाई है। पड़ोसी देश स्पेन में 75,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि 30,000 लोगों को घर के अंदर रहने का आदेश दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 अन्य घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लॉट के तौर पर हुई है। हमले के बाद लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। अब्दुल ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने का प्रयास भी किया था। जर्मनी के गृहमंत्री ने इस घटना को संदिग्ध आतंकी हमला बताया। ये हमला शनिवार रात पार्क के पास उत्सव के समापन समारोह के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है।
5: मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलो वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही भारत T20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने मुक्केबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जदुमणि सिंह ने पाकिस्तान के सुमामा रहमान को हराकर पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि प्रीति पवार ने मलावी की देबोरा मतेंजे पर जीत हासिल कर महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत के पदकों की संख्या 4 हो गई है। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। पैरा पावर लिफ्टिंग झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। विकसित गांवों की विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन हमले नहीं होने से अस्थायी संघर्ष विराम पर बातचीत फिर शुरू होने की उम्मीद। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने

महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या 4 हुई, इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक मिला और भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आ जाइए, शामिल हो जाइए हमारे दिल का मेल बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे होती हैं आपकी चॉइसेस, आपकी बातें और एक गाने से जुड़ी हुई न जाने कितनी सारी यादें, क्योंकि गाना सिर्फ गाना नहीं होता, गाना एक याद होती है, एक जान पहचान होती है और बड़ी सारी कहानियां अपने साथ समेटे होता है। एक गाना मेरे लिए उसकी डेफिनेशन अलग है और वही गाना आपके लिए हो सकता है कि उसकी परिभाषा अलग हो जाती हो। तो फिर शुरू करते हैं हम इस गाने का नाम लेकर के। गाना है मुझे नींद ना आए, फ्रॉम फिल्म दिल, और पसंद करने वाले बड़े सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि कई बार कुछ ऐसा होता है कि किसी एक गाने पे हमारे पास बड़ी चॉइस होती है, इसे सिर्फ और सिर्फ इत्तेफाक कह सकते हैं।

दिल का मेल बॉक्स है ये। हो सकता है कि आपका दिल यहाँ खो गया हो। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। इश्क मोहब्बत की कई सारी अजीब रस्में होती हैं, कभी जीने के वादे होते हैं, कभी मरने की कस्बे होती हैं। ये गाने की बोले वैसे तो। जनाब नाम शुरू करते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। और हमें कहते हैं आदरणीय आरजे जी, सादर नमस्कार, हम आपका कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर लाइव सुन रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, किसी भी गीत में शामिल हमें कर लें, हमें अच्छा लगेगा। ऐसे कैसे आप अपना गाना हमें बताइए। ये और बात है कि हमारा जो गाना होता है या फिर किसी और की जो चॉइस होती है वो आपको अच्छी लगती है, ये मैं मान सकती हूँ। कृष्णा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता और कुमारी प्रियाली हागोड़े, पार्थ हैं और धन्यवाद करते हैं। वीरम गाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सनी भावसार हैं। और इसके अलावा हमारे पास हैं भावी निमगांव शेवगांव से श्रीराम धुलंकी, उषा कोपरगांव से सुरेश और वर्षा, बड़ा बम चौक खड़वा से मध्य प्रदेश से संजय बम मारकंडे और ममता मारकंडे और बेबी किट्टू, ये सारे के सारे लोग इस वक्त सुन रहे हैं हमें, यानी कि आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। ये है दिल का मेल बॉक्स और उस बॉक्स में से निकला आपकी चॉइस का ये वाला गाना।

और बाकी है ये वाली चीज़। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना रचित और केशु रिधान खुराना देहरादून से, आलोक पवार और मिनी, ये है दिल का मेल बॉक्स। और आप है हमारे साथ श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख प्रणाली हैं, कुमारी सानवी देशमुख हैं, हर्षिता देशमुख हैं, समस्त राजे जाधव देशमुख वायला परिवार है जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सीटी दीवाना और जय जैनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से पूरा का पूरा संघई परिवार दिल का मेल बॉक्स में है हमारे साथ।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर कर

0: pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले से मुझे याद आया कि अक्सर मैं देख रही हूँ आजकल कि बारिशों के चक्कर में हम ना अपने पौधों में पानी नहीं डाल रहे हैं और बड़े सारे गमले सूखे हुए हैं। बस ये कुछ कुछ चीज़ें ना हमें भी याद आ जाती हैं गाना सुनते हुए। ये आपने सुना लता जी की आवाज़ में, फिल्म का नाम परख, और हमारे सामने है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, और साथ में इनके मित्रगण संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन, राधा नामदेव और दर्शन भाई। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू, और इसके साथ साथ हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और ये अपनी फिल्म का गाना सुनने के लिए बैठे हैं। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। और गुड मॉर्निंग कहते हैं महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर, और कहते हैं कि भाई पुणे में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। वैसे मौसम बहुत अच्छा है भाई, मतलब दिल्ली में बैठ के हमें ये सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई वहाँ बारिश हो रही है, थोड़ी सी बारिश यहाँ भी भेज दीजिए तो और अच्छा लगेगा। और ये कहते हैं कि ये मौसम आपके यहाँ भी आ जाए तो बहुत अच्छा है। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेल

उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। सलीम अख्तर हैं, रेशमा बेगम हैं अलीगढ़ से, मुदाला महाराष्ट्र से, विजय हैं, रतन माला आरती भी हैं, रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ हैं, श्रीमती रंजूबाई धाकड़ हैं, युवराज सिंह और शिवांगी हैं इनके साथ साथ, कस्बा गुन्ना और यूपी से फारूख अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, तायरा और मैं हूं आपके साथ दिल का मेल बॉक्स में। ये जो इतने प्यारे प्यारे कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें अभी भी बड़े अच्छे से याद हो गए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे कि ये नाम है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय, ममता और बेबी किट्टू का। मोहम्मद अब्बासी और उनका पूरा अब्बासी परिवार है हमारे साथ। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी, वीना, आशीष, राजा, चैतन्य, मस्कीन, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रुचिता, केशुरिधान और परसमणि रेडियो श्रोता क्लब से गांधी चौक बाड़मेर, राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी, मनीष और दिनेश चौहान हैं, बाबूराम जयपाल डांगरी से और खुदा बख्श खलीफा हैं, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी सिर्फ सोचते हैं कि एक दिन हम भी दिल का मेल बॉक्स में अपनी चॉइस तो ज़रूर भेजेंगे। तो भेजिए ना आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे।

सत की जामा दिल का मेल बॉक्स में मुकेश कुमार मोहम्मद है, दिलावर खान है, सतीश अनेजा है, दिलावर है, सतीश है, उसके बाद मुकेश कुमार है, ऊषा है और मैं हूँ आपके साथ दिल का मेल बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए और अपनी चॉइसेस हमें बताने के लिए। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। फिलहाल समय

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
1: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
0: दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग के सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। 23 और 24 जुलाई को भी वायुसेना ने 148 यात्रियों को सुरक्षित निकाला था। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारत

डल झील की लहरों में सुकून का पैगाम है, हर लम्हा यहाँ कुदरत का खूबसूरत इनाम है, क्योंकि ये तस्वीर है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

तारीफ कीजिए जितना आपका मन करे, क्योंकि ये तस्वीर है डल लेक की। डल झील की लहरों में सुकून का पैगाम है। हर लम्हा जब आपने यहाँ पे गुजारा होगा तो वो कुदरत का खूबसूरत इनाम लगा होगा। शिकारी की सैर हो या फिर शाम की रोशनी, डल झील का हर मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं। झील के आईने में जब आसमान उतर आता है तो हर मुसाफिर का दिल सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ठहर जाता है। कश्मीर की वादियों का सबसे हसीन एहसास है ये। डल झील सिर्फ झील नहीं, ये कुछ एक ऐसा एहसास है जिसे हम अपनी आंखों में कैद करके हमेशा के लिए रख लेते हैं। स्वागत है आपका आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। ये तस्वीर है, और तस्वीर है ये डल लेक की। तो फिर चलें

सोचा डल झील के बारे में। डल झील भारत की जम्मू कश्मीर की श्रीनगर शहर में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध मीठे पानी की झील है, जिसे अक्सर कश्मीर का ताज या फिर श्रीनगर का रत्न भी कहा जाता है। तो फिर ये लगभग 18 से 22 वर्ग किलोमीटर मौसम और जलस्तर के अनुसार ही बदलता रहता है, लगभग इतनी बड़ी है। और ये बहुत फेमस है रंग बिरंगे अपने जो शिकारे हैं यानी कि नाव है उसके लिए, सुंदर हाउस बोट और तैरते हुए बाजार के लिए। कमल के फूल, चार चिनार द्वीप, मुगल गार्डन, निषाद बाग और शालीमार बाग और जबरवान पर्वतमाला का एक बहुत ही अच्छा सा नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप गए हैं तो फिर ये सब कुछ रिवाइव हो रहा होगा, नहीं तो फिर तस्वीर है ना डल लेक की।

तस्वीर है ये डल लेक की। पता है जब मैंने पहली बार डल लेक को देखा ना, तो मतलब कई बार ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिनको देखने के बाद हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि इतना सुंदर भी कुछ हो सकता है। तो फिर ऐसा ही कुछ हुआ था जब मैंने डल लेक देखा था। डल झील के मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हैरान करेंगी, शिकारे, हाउस बोट, बहुत अच्छा लगता है। जो लोग हैं इन हाउस बोटों में रह के झील को बड़े आराम से और अच्छे से उसका आनंद उठा सकते हैं। नेहरू पार्क, कानूटूर खाना, चार चिनारी और जो छोटे द्वीप हैं और तथा हज़रत बल की सैर भी इन शिकारों से की जा सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कमल के फूल, पानी में बहती हुई कुमुदनी और झील की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं जब आप देखेंगे अपने चारों तरफ। तो ये एक शहर है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि आपको नाव में बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी जो खरीद सकते हैं और जो उनको देखने के बाद सच में हैरानी होती है। और जो उसकी सुंदरता है ना, वो भी हमें बहुत ज़्यादा हैरान करती है और जो व्यवस्था है वो भी हैरान करती है। तो डल लेक की खासियत बहुत सारी हैं, इनमें से कुछ है थोड़ी थोड़ी मेरे पास।

और इस कश्मीर में आप हैं डल झील की तस्वीर देख रहे, जहाँ पे जाके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप काइकिंग कर सकते हैं जो एक तरह से नौका विहार मानी जा सकती है, कैनोइंग भी कर सकते हैं, पानी पे सर्फिंग कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं। और डल झील में जो पर्यटन के बहुत सारे ऐसे भी रूप आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे कि आपको लगेगा कि हाँ इसमें तो हम शामिल हो सकते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हमें करना अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर चुपचाप आराम से शिकारी में बैठ जाइए और कुछ नहीं करना, अपने आसपास पानी को देखिए, उन नज़ारों को देखिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगेगा कि ये शायद हमने ज़िंदगी में पहली बार देखी हैं। अगर आप कश्मीर से नहीं हैं, भारत के दूसरे हिस्सों से वहाँ गए हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको हैरान करेंगी। तैरता हुआ बाग, पानी में तैरते हुए खेत और बाज़ार, कितना अच्छा लगेगा जब वहाँ की आप सब्जियाँ देखेंगे कि कैसे, कौन सी सब्जी हैं, कैसे उगाई जाती है। और खूबसूरती की तो बात हम जितनी करें उतनी कम है। और ये है तस्वीर डल लेक की, और कश्मीर के बारे में बड़ी सारी बातें हम सब पढ़ते हैं, जानते हैं, बस थोड़ी सी बात तस्वीर में हो रही है।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।

अजी इतना शुक्रिया कहेंगे तो हम भी यही कहेंगे कि भाई आइए शामिल हो जाइए आप भी इस तस्वीर में जो हम दिखा रहे हैं आपको आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। तस्वीर है ये डल लेक की। अगर आप डल लेक जाना चाहते हैं यानी कि मन बनाइए, और मन बनाने के लिए बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं और हम जैसे लोग बस निकल पड़ते हैं। तो फिर अगर आप जाना चाहते हैं तो श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है और दिल्ली और मुंबई से यहाँ के लिए नियमित उड़ानें हैं, आप बड़े आराम से जा सकते हैं। नज़दीकी रेल सेवा जम्मू में स्थित है, यहाँ वहाँ का नेशनल हाईवे आप पहुँच जाइए वहाँ से, और वो कश्मीर घाटी को देश के दूसरे भागों से जोड़ता है और आपको अच्छा लगेगा। जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो फिर आप कहेंगे भाई हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए। सच में जब शिकारी धीरे धीरे चलते हुए देखेंगे और गीत हवा के संग अपने आप गुनगुनाएंगे, पहाड़ों की गोद में जब आपको नज़र आएगा तो आप यही कहेंगे कि भाई ये नज़ारा हमने भला मिस कैसे कर दिया।

और जब आप जाएंगे डल लेक तो वहाँ पे ना फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ज़रूर देखेगा। हाँ सच्ची में बहुत अच्छा लगेगा। ये डल झील पे फ्लोटिंग डाकघर और बहुत अच्छा संग्रहालय है जो कि डल झील का जो पश्चिमी किनारा है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बुढ़ियार चौक से खरीदे जा सकते हैं पोस्ट कार्ड भी यहाँ पे। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इस पे डाक टिकट लगाता है, तो ये जो अनुभव है ये बड़ा ही यूनिक अनुभव है, बहुत अच्छा लगता है। इससे ज़रूर आप अपने आप को ओझल मत कीजिएगा। और इसके अलावा वहाँ पे आसपास आपको बहुत सारी ना लोकल खाने की डिशेस मिलेंगी, उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। और जाने के मौसम, मतलब जिस मौसम में आप जा रहे हैं डिपेंड करता है कई बार, क्योंकि सोचिए कि चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही हों, आपने फिरन पहना हो और आपके हाथ में गर्म गर्म भुट्टा आ जाए, आय हाय, मतलब मुंह में पानी आ गया मुझे मालूम है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट फूड्स हैं जो वहाँ मिलते हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, तो करिएगा ज़रूर।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये तस्वीर है ये डल लेक की, जहाँ पे आप जा सकते हैं वैसे तो कभी भी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो वो है अप्रैल से अक्टूबर। सर्दियों में कभी कभी झील के कुछ हिस्से में बर्फ जम जाती है, और जो वहाँ पे जब आप जाएंगे तब आपको इस बात का एहसास और अच्छे से होगा। वैसे तो घूमने का कोई समय नहीं होता, जब मन करे तब आप चले जाइए, मैं तो यही सोचती हूँ। और डल लेक जो है वो सिर्फ एक, अगर हम देखें कि पर्यटन की दृष्टि से, तो सिर्फ एक वो एक जगह नहीं है, बल्कि कई सारे लोगों से जुड़ी हुई है और कई सारे लोगों के लिए वो आजीविका का साधन है। यहाँ पे लोग शिकारा चलाते हैं, हाउस बोट में मेहमानों की मेज़बानी करते हैं, तैरते हुए बागों में सब्जियाँ भी उगाते हैं, और जो फ्लोटिंग मार्केट है, तैरता हुआ बाज़ार है, वो सुबह सुबह लगता है, जहाँ पे आपको नाव में सब्जियाँ मिलेंगी, फल मिलेंगे, फूल और बेचे ख़रीदे जाते हैं। तो ये जितने नज़ारे हैं, ये सब के सब इतने हसीन हैं कि बस पूछिए मत। इसलिए ज़िंदगी में

मुझे तो कई बार लगता है कि प्यार ही है घूमना, मतलब घूमना प्यार ही है। और डल झील की अगर बात करें तो डल झील दुनिया की पहली झील है जहाँ पे बेतार इंटरनेट की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाती है। डल झील की शांत लहरें, अब समझ में आया ना कि क्यों छू लेती हैं मन के तार। शिकारे धीरे धीरे चलते हैं और अपने आप आपको लगेगा कि आप गुनगुनाने लगे। पहाड़ों की गोद में सिमटी ये जो प्रकृति की छवि है वो इतनी अच्छी लगेगी कि शायद आपके कैमरे में वो कैद ही ना हो पाए, सिर्फ आंखों में बस जाएगी। कश्मीर है ये डल लेक जिसका अनुपम नज़ारा है हमने आपको दिखाया तस्वीर में। आपको कैसी लगी? आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे हमें बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम तो चले घूमने के लिए, आप बने रहिए FM गोल्ड के साथ। और ये वक्त है अभी समाचारों का।

0: वही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों मीराबाई चानू, चानम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथु पांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी।
1: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
1: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के निदेशक वी कामकोटि भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदक की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned till 12 noon following

0: घर आंगन।
1: अक्सर घर के आंगन में बैठ जीवन का मंथन करती हूँ, सुनहरी यादों के ताने बाने से खुशियों की चादर बुनती हूँ। ये आंगन मेरे अपनों से पूरा होता है, जिनके होने से मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ।
2: जी हाँ जी प्रतिभा, क्योंकि घर आंगन की शोभा तो अपनों से ही होती है, और भाई जब घर आंगन में अपने मिलते हैं तो ये और भी खूबसूरत हो जाता है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए रश्मि जी, तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं और स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोताओं का। और आज आपके साथ हूँ मैं प्रतिभा और
2: रश्मि कुकरेती। प्रतिभा, आपको आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को और आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के सभी सुनने वालों को हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: और देखिए रश्मि जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो FM गोल्ड चैनल पर जुड़ते हैं, जो कि है 100.1 MHz पर, और इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर।
2: जी, और आज का दिन विशेष दिन है। हम सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज उनकी पुण्यतिथि है। और डॉक्टर कलाम शिक्षा, विज्ञान और राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, और घर आंगन परिवार की तरफ से हम भी उन्हें शत शत नमन
1: करते हैं। बिल्कुल। और रश्मि जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न पूछकर अपने श्रोताओं से, और उस प्रश्न का जो हमारे श्रोता हैं वो एक प्यारा सा जवाब भी देते हैं, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे उस प्रश्न का।
2: जी, तो आप जल्दी बताइए कौन सा प्रश्न लाई है आज।
1: जी रश्मि जी, आज का जो हमारा प्रश्न है हमारे श्रोताओं के लिए वो है कि ऐसी कौन सी आदत या ऐसी कौन सी खूबी है उनमें जो उनको यानी कि आपको बेहतर बनाती है।
2: जी बिल्कुल, और उसका जवाब वो हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
1: जी हाँ।
2: fmgoldga@gmail.com।

0: तलाश फिल्म में अभी आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: और बहुत अभी जो समाचार सुन रहे थे ना प्रतिभा, तो मतलब इतना अच्छा लगा भाई। राष्ट्रमंडल खेल की बात हुई 2026 जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किए जा रहे हैं, और एक बड़ी खुशखबरी हमने अभी सुनी कि इन खेलों में भारत की जो स्टार भारोत्तोलक है मीराबाई चानू, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भाई ये सुन के तो मेरा मन जो है ना खुशी से झूम उठा।
0: बिल्कुल, बात ही झूमने वाली है रश्मि जी। देखिए मतलब मैं ये पढ़ रही थी कि लगभग 3000 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और 74 राष्ट्रमंडल देश जो यहाँ पर भागीदारी दे रहे हैं अपनी। लेकिन जब इतने सारे लोगों में जब हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के जो खिलाड़ी अपनी पहचान बनाते हैं, तो वो खुशी का माहौल तो होता ही होता है। और देखिए ना केवल मीराबाई चानू बल्कि भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश ले लिया है।
1: जी, तो हमारे जो इस समय जो है भारत के 4 पदक आ चुके हैं, और जो महिलाएं हैं भाई जब जाती हैं अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो देश के लिए गौरव बढ़ाने की बात होती है, तो हमें अच्छा लगता ही है।
0: बिल्कुल, और देखिए एक और हैं प्रतिष्ठा सामंता, उन्होंने भी शनिवार को जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में महिला वर्ल्ड स्पर्धा के में जो है क्वालिफाई करके 5वें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बना ली है। तो रश्मि जी, इन सभी खिलाड़ियों को हमारी तरफ से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, ये ऐसा ही अपना प्रदर्शन देते रहें इन खेलों में
1: जी, और भारत का नाम रोशन करते रहें
0: जी।

0: तेरे मेरे सपने। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज़ थी आशा भोंसले की। और श्रोताओं, जैसा कि हमने शुरू में ही आपसे एक प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न था कि ऐसी कौन सी आदत या ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको बेहतर बनाती है। जी हाँ, ये हमारा आज का प्रश्न है और जिसका आपको हमें जवाब देना है fmgoldga@gmail.com पर।
1: तो इसी के साथ हमारे पास जवाब आने शुरू हो गए प्रतिभा
0: जी।
1: और उमेश कुमार खयाला से कहते हैं कि मेरी खूबी ये है कि अगर कोई मुझसे मदद मांगता है तो बिल्कुल मैं मदद करने के लिए एकदम से तैयार हो जाता हूँ। भाई बहुत अच्छी आदत है, अगर आप मदद मांगते हैं, किसी कोई आपसे मदद मांगे और आप मदद दे दें, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने रश्मि जी। देखिए, मदद करना तो बहुत ही अच्छी बात है और खुद को सुकून भी देती है ये वाली आदत जब हम मदद करते हैं। और देखिए, एक मेल और है डी राजेश्वर राव जी का, वो कहते हैं कि वो अपने जो

0: रोजमर्रा की जो रूटीन है उसकी उनकी, उसमें वो अपनी डाइट संतुलित आहार लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और एक भरपूर और एक अच्छी नींद लेते हैं, जिसकी वजह से वो शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं।
1: और सुदर्शन मुखी अनीता और सिमरन शांति नगर सोनीपत से जुड़ गए हैं हमारे साथ और कह रहे हैं कि मैं बिजी रहता हूँ और बिल्कुल साफ सफाई से रहना पसंद करता हूँ, तो ये मेरी मेरी ये आदत है। बहुत अच्छी बात है। देखिए जो स्वच्छता जो है ना, वो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है, और बिजी रहना भी बहुत अच्छी बात है। हमेशा कर्मशील बने रहे, कर्मठ बने रहे, तभी हमारा देश जो है विकास की ओर कदम बढ़ा पाएगा। तो ये अच्छी आदतें हैं, ये भी बनाए रखिए और हम भी आपसे कुछ कुछ सीखते रहेंगे।
0: और ये आदत तो बनाए रखेंगे ही, और हम उम्मीद ये करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आप हमें अच्छे से अच्छे जवाब अपने भेजते रहेंगे, क्यों रश्मि जी?
1: जी,
0: तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं ना। और अब बात करते हैं उस महिला की जिसकी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें दी एक खास पहचान।
1: जी,
0: पल्लवी पाटिल। जी हाँ, पल्लवी पाटिल ने मुंबई फायर ब्रिगेड की पहली महिला फायर इंजन ड्राइवर बनकर इतिहास रच दिया।
1: जी, और भाई देखो कितना मुश्किल काम है महिला फायर इंजन ड्राइवर होना। लेकिन क्या था कि पल्लवी के भाई पहले से ही फायर ब्रिगेड में काम करते थे और उनके पिता भी चाहते थे कि दोनों भाई बहन इस सेवा का हिस्सा बने। और जब महिलाओं की भर्ती शुरू हुई तो पल्लवी भी फायर ब्रिगेड में शामिल हो गई, और उसके बाद वो फायर फाइटर के तौर पर थोड़ा उन्होंने काम किया, उसके बाद फायर इंजन चलाने की विशेष ट्रेनिंग ली और विभाग की परीक्षा पास करके मुंबई फायर ब्रिगेड की वो पहली सक्रिय महिला फायर इंजन ड्राइवर बनी।
0: देखिए, वो ड्राइवर तो बनी है ना, लेकिन वो जो है पल्लवी सिर्फ अब फायर इंजन नहीं चलाती बल्कि मौके पर पहुंच कर पानी के प्रेशर को भी नियंत्रित करती है ताकि दमकल कर्मी आसानी से आग को बुझा सकें।
1: हाँ, और भाई प्रतिभा देखो, जब फायर इंजन की ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो फिर लगता है ना कि भाई घटना पर जा रहे हैं, आग की घटना है, मन में थोड़ा डर भी होता है, जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। तो ये तो काम तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन भाई महिलाएं अगर करना चाहें तो क्या नहीं कर सकती।
0: बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जोश और जज्बों में महिलाएं तो देखिए किसी से कम है ही नहीं, और आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में साबित भी तो कर दिया है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानती हैं। क्यों
1: जी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सोच उन्हें आसमान की बुलंदी तक पहुंचा सकती है। और अगर आप भी ऐसे सपनों को जी रही हैं तो भाई वक्त है उन्हें भी नया आयाम दें।
0: बिल्कुल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी रखवाला।
1: और प्रतिभा, यहाँ हमारे पास सवालों, जो सवाल तुमने पूछा था उसका जवाब आ चुका है। रवि नारायण जी भिलाई से कह रहे हैं, भाई इस सवाल का जवाब है सकारात्मक सोच। जीवन में चाहे कितने भी दुख आए, हम अपनी सकारात्मकता हमेशा बनाए रखें तो हम बेहतर बन सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब। और डॉक्टर ए के टंडन जो हैं वो माया इनक्लेव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरे वाह, आप 82 साल के हैं प्रोफेसर साहब। और वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ और मेरी हैबिट है, मेरी आदत है कि मैं कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ और बाकायदा उसकी डेमोंस्ट्रेशन करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं प्रोफेसर सर आपको, और आप इसी प्रकार सक्रिय बने रहें और आपके जो छात्र हैं वो आपके अनुभव का, आपकी से जो शिक्षा प्राप्त करके बड़े बड़े पदों पर आसीन हो, हमारी यही कामना। आप स्वस्थ जीवन जिए और FM गोल से यूं ही जुड़े रहे। और साथ में एक और मेल हम मेरे पास आई है, आप हैं सुरभि मयूर विहार से, वो कहती हैं, दीदी मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं मुश्किल हालात में भी घबराती नहीं हूँ, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो मैं शांत रहकर अपना काम करने की कोशिश करती हूँ, शायद यही हिम्मत और आत्मविश्वास मुझे दूसरों से अलग बनाता है।
0: बिल्कुल। और रश्मि जी देखिए, एक और मेल है राजेश शर्मा जी का, वो कहते हैं कि मेरी आदत है कि मैं ज्यादातर सच बोलता हूँ। देखिए कितनी अच्छी आदत है ना। और वो कहते हैं कि उनका बिजनेस है और वो जो अपने क्लाइंट्स को जो भी कमिटमेंट देते हैं समय की, उसे वो समय पर डिलीवर करते हैं, उसे समय पर पूरा भी करते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि इसी आदत की वजह से उन्हें समाज में एक बहुत अच्छा स्थान मिला हुआ
1: जी,
0: है।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है, हमेशा सच बोलना चाहिए और हम भी हमेशा कोशिश करते हैं कि सच बोलें, सच के साथ रहें। और एक और मेल आ गई है हमारे पास, उग्रसेन यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कि मेरी हमेशा से ये सोच रही है कि किसी को कोई गुमराह होने वाली सलाह मत दो, अगर उनकी मदद करने की पॉसिबिलिटी हो तो ज़रूर करें और कोशिश करें। बिल्कुल सही आपने कहा यादव जी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रतिभा, कुछ और जानकारियों के साथ।
0: बिल्कुल, देखिए रश्मि जी, जब हम अपने देश को हम चौतरफा जब अपनी नज़र दौड़ाते हैं, हर राज्य हर क्षेत्र में हर जिले में हमें अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कलाएं, अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं जो हमारे देश की एक अनमोल धरोहर है, है ना। और ऐसी ही आज हम बात करेंगे कला, ऐसी ही एक कला की जो कि हमारे ब्रज क्षेत्र की आत्मा कहलाती है, जो कि है सांझी कला।
1: ये कला भारत के ब्रज क्षेत्र मुख्य रूप से मथुरा और वृंदावन की एक पारंपरिक और अत्यंत प्राचीन कला है प्रतिभा। और इसमें रंग बिरंगे कागजों पर अत्यंत बारीक और जटिल जो डिजाइन है वो उकेरे जाते हैं, स्टेंसिल्स बनाए जाते हैं।
0: और देखिए स्टेंसिल तो बनाए जाते हैं लेकिन इनका जो उपयोग है ना, वो दीवारों और पानी पर मनमोहक रंगोली बनाने या

0: आकृतियां उकेरने के लिए किया जाता है। और उस सांझी कला के बारे में अगर हम और बातें करें तो सबसे खास बात यह है कि ये जो सांझी शब्द है वो हिंदी के संध्या यानी शाम से निकला हुआ है ना, और ये कला जो है शाम के समय में बनाई जाती है। और कहा जाता है कि जो ये वाला समय होता है ना शाम वाला, वो भगवान कृष्ण के ब्रज लौटने का समय होता है, और इसे राधा कृष्ण के प्रेम और उनकी रासलीला का प्रतीक माना जाता
1: है। शाम भी है और श्याम भी है, और पुराणों में उल्लेख है कि संध्या के समय जब भगवान श्री कृष्ण गोचरण करके आते थे तो ब्रज गोपियां उनके स्वागत में फूलों की चित्रकला सजाकर उनका स्वागत करती थी, तभी से ब्रज में ये सांझी कला की शुरुआत हुई।
0: देखिए जैसा कि आपने शुरू में बताया कि स्टेंसिल्स बनाए जाते हैं कैंची से ये काट कर, और सबसे जो खास बात यह है कि जो इसके डिजाइन होते हैं ना वो बहुत खूबसूरत होते हैं। इसमें मोर, फूल और कृष्ण लीला के जो डिजाइन है वो काटे जाते हैं, और फिर इन स्टेंसिल्स को जमीन पर या पानी की सतह पर रखकर उसमें रंग या सूखे फूल डाले जाते हैं।
1: जी, और जब कागज हटाते हैं ना प्रतिभा, तो एक शानदार चित्र उभर जाता है। और ये मंदिरों में जो सांझी बहुत श्रद्धा के साथ बनाई जाती है, भाई हमें भी ऐसी ही एहसास हो रहा है, ये जो विषय है आज का मन में श्रद्धा पैदा हो रही है। और ये कला अध्यात्म और हस्तशिल्प का एक अनूठा संगम है जो आज भी भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजे हुए है।

0: राम तेरी गंगा मैली। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और रश्मि जी, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, और हमारे साथ हमारे श्रोता भी जुड़े हुए हैं। एक बार हम अपना प्रश्न श्रोताओं को एक बार फिर से बता देते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: कि ऐसी कौन सी आदत या ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको बेहतर बनाती है, बेहतरीन बनाती है, और आपको हमें मेल करना है fmgoldga@gmail.com पर।
1: जी, एक मेल मेरे पास आ गई है, आप हैं कुमुद वैशाली से। वो कह रही हैं कि मैं जल्दी हार नहीं मानती, मुश्किल चाहे कितनी भी हो, मैं जब तक रास्ता ना मिल जाए मैं कोशिश करती रहती हूँ। वाह, क्या बात है। देखिए, हमारे श्रोता ही हमें सिखाते हैं जिंदगी जीने का तरीका।
0: जी, बिल्कुल। और देखिए, हम एक दूसरे से सीखते ही तो हैं।
1: जी,
0: है ना। और जो ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा बनकर ही आ गया।
1: एक और मेल हमारे पास आई है, लता जी हैं, वो कह रही है सकारात्मक सोच रखती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और आप और भी जानकारियां कई लेकर आई हैं प्रतिभा।
0: बिल्कुल। और देखिए रश्मि जी, सरकार ने जो है ना जनहित को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हुई हैं, और जिनका लाभ अनेकों अनेक लाभार्थी उठा भी रहे हैं। और सरकार ने हमारे पशुपालकों का भी ध्यान रखा है, है ना, और उनके ध्यान को रखते हुए, उनके हितों का ध्यान रखते हुए सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिसका लाभ छोटे पशुपालक, महिलाएं सभी को ही उठा रहे हैं। और उनमें एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना।
1: क्या बात है, आपने पहले सांझी कला में कृष्ण की बात की और उसके बाद आप गोकुल मिशन में आ गई। आज थोड़ा सा वृंदावनी हो रहा है मन। और भाई, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा शुरू की गई ये प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जो देसी गाय है ना, उनका, भैंसों का, नसों का, उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना और दुग्ध उत्पादकता को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाना है।
0: बिल्कुल। और इसी के तहत जो है ना, उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं का उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान और IVF जैसी आधुनिक तकनीक के माध्यम से देसी मवेशियों की नस्लों में सुधार करना है। साथ ही साथ स्वदेशी नस्लों की दूध देने की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि करना भी है।
1: तो भाई, जो महिलाएं स्वरोजगार अगर की तरफ मुड़ना चाहती हैं, अगर ऐसा कुछ काम करना चाहती हैं, तो भाई उनको जो है पूंजीगत लागत पर 50% तक सब्सिडी मिल जाती है। और मवेशियों के जो वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए विशेष गोकुल ग्राम एकीकृत केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल। और देखिए रश्मि जी, ये जो है ना, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसान उच्च नस्ल के मवेशियों की ऑनलाइन खरीद और बिक्री कर सकते हैं, और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गोपाल रत्न और कामधेनु जैसे पुरस्कार भी दिए जाते हैं।
1: तो अगर इस सब्सिडी का लाभ उठाना चाहती हैं कोई महिला या जो भी स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो जो नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र है राज्य के, उसके पशु पालन विभाग या कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं।

हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में। अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी नदिया के पार। और रश्मि जी, एक मैसेज और आया है इदरीस सैफी जी का।

0: वो भी हमारे एक रेगुलर लिसनर हैं और मेल करते हैं. उन्होंने लिखा है कि उनकी जो आदत है वो ये है कि कोशिश करते रहना.
1: हाँ, और शीतल शाह बेंगलोर से जुड़ गई है हमारे साथ. वो कह रही है, जिंदगी के ऊंचे नीचे रास्ते पर मैं गिरी, संभली, चोट खाई, दिल टूटा, पर हार नहीं मानी. और आध्यात्म का ज्ञान और गीत संगीत का साथ उनका रहा, तो जीवन में उनको वो संभल गई. मैं बता दूं आपको, शीतल जो हैं बहुत अच्छी कहानीकार हैं, और इनकी कहानियां समय समय पर विभिन्न एफएम चैनल से प्रसारित होती रहती हैं. विविध भारती में भी इनकी कहानी प्रसारित हो चुकी है, और मैं पानी पर लिखी कहानी में भी इनकी कहानियाँ ले चुकी हूँ. और शीतल जुड़ी हुई हैं, अच्छा लग रहा है. इसी तरह से जुड़े रहिए शीतल जी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखकर श्रोताओं का मनोरंजन करती रहिए. और के साथ एक दो श्रोता मेरे साथ और जुड़ गए हैं. आप हैं राघव दिलशाद गार्डन से. वे कह रहे हैं, मेरे अंदर सबसे अच्छी खूबी शायद ये है कि मैं रिश्तों और जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेता हूँ. अपने परिवार और अपने लोगों का साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और कोशिश करता हूँ मुश्किल समय में मेरे अपने लोगों को ये महसूस हो कि वो अकेले नहीं है.
0: देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि रिश्तों को सहेज कर रखना बहुत जरूरी है, और उसमें जो संतुलन है ना, वो इन्हीं सब आदतों के चलते ही आता है.
1: और एक और मेरे पास थोड़ा सा मजाक सा जवाब आ चुका है. आप है सोनीपत से वीरवान जी. वो कह रही है, मेरी खूबी बताऊं भाई, मैं बहुत धैर्यवान हूं, और खासकर तब जब मेरी पत्नी कहती है बस 5 मिनट में मैं तैयार हो रही हूं. वैसे सच कहूं तो मैं बहुत खुश मिजाज हूं, लोगों की मदद करना बहुत पसंद करता हूं, और मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ खड़ा रहता हूं. पर ये हंसमुख होने की आदत आपकी बहुत अच्छी लगी वीरवान जी, बनाए रखिए इसे.
0: बिल्कुल. और रश्मि जी, तो आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम में. और आज हम देखिए बात करेंगे कि ऐसी आर्मी की जो सरहदों की रक्षा नहीं करती, वो रक्षा करती है एक पक्षी की.
1: वाह.
0: जी हाँ, हरगिला एक पर्यावरण प्रहरी है, जिसका जिक्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी किया है.
1: जी, हरगिला जो है वो असम में पाया जाने वाला दुर्लभ पक्षी है, जो पर्यावरण को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. एक जमाने में इसको माना जाता था कि भाई देखना अच्छा नहीं मानते थे, तो ये होता था गांव वाले जो इस पेड़ पर पक्षी का घोंसला होता था ना प्रतिभा, और वहां के लोग उस पेड़ को ही काट देते थे. लेकिन देखिए कैसी विडंबना थी, क्योंकि जो व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सफाई में योगदान दे रहा है, लोग थोड़ा सा डर जाते थे उससे.
0: हाँ. और देखिए, जो अंधविश्वास और डर होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच को जन्म देता है, और भाई नुकसान भी होता है. और देखिए, ऐसे में डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन, जो कि एक जीव विज्ञानी है, उम्मीद की किरण बनकर आई. जब उन्होंने हरगिला को इस तरह मरते देखा, तो उन्होंने लोगों के मन में बसे अंधविश्वास और डर को दूर करने की जिम्मेदारी उठाई, और साथ ही साथ गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया, और विज्ञान के जरिए उन्हें समझाया कि जो ये हरगिला है वो अंधविश्वास से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, ये तो बल्कि पर्यावरण प्रहरी है. और धीरे धीरे देखिए बदलाव आया,
1: और सही तरीके से जो उन्होंने जानकारी दी, उन्होंने इस जो परंपरा जो थी उसको तोड़ दिया और बदला, और हरगिला का संरक्षण किया.

0: बंदनी। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी आशा भोसले की।
1: और प्रतिभा, तुम खूबियों के बारे में पूछ रही थी, तो शीशपाल अकेला जी गाजियाबाद से कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और ना ही मैं कसम कभी खाता हूँ। भाई अच्छी बात है, हमने भी यही सीखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। और एक और बड़ा मजेदार सा मेल मुझे मिला है पालम से, हिमांशु जी लिख रहे हैं, वो कहते हैं मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं हर परिस्थिति में खाने का जुगाड़ कर लेता हूँ।
0: अच्छा
1: जी, हाँ। परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, परेशानी कितनी भी बड़ी हो, मैं पहले चाय पीता हूँ और फिर सोचता हूँ कि समाधान क्या निकलेगा। और दोस्तों के बीच मेरी यही खासियत है कि मैं माहौल को बिल्कुल हल्का कर देता हूँ। मेरा मानना यह है कि जिंदगी में समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन अगर मुस्कुराने की आदत बनी रहे तो आधी समस्याएं वैसे ही छोटी लगने लगती है।
0: बिल्कुल, देखिये कितनी अच्छी बात कही है कि बड़े हल्के तरीके से, मतलब बड़े माहौल को हल्का करके वो समस्याओं का हल निकाल लेते हैं और परिस्थिति को जो है उसको ओवरकम कर लेते
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: और विवेक हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी खूबी यह है कि मैं गलती होने के बाद भी आत्मविश्वास नहीं खोता। आखिर गलती मेरी हो तो उसे भी समझाने के लिए मेरे पास कम से कम 10 अच्छे बहाने जरूर होते हैं। मतलब तो बहानेबाज हैं भाई विवेक जी, लेकिन मजाक से अलग वो कहती है मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ और मैं लगातार ये कोशिश करता हूँ कि गलतियों को दोहराऊंगा।
0: और देखिए रश्मि जी, जो समय है वो निष्पक्ष है ना, देखिए अब समय निरंतर चलता है और उसने हमें इशारा कर दिया है कि हमारे चलने का हो गया है वक्त, है ना?
1: हाँ बिल्कुल।
0: और तो इसी वादे के साथ श्रोताओं से फिर मुलाकात होगी इसी जगह पर इसी समय पर, तो मुझे यानी प्रतिभा को और
1: रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों को बधाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूँ, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदेह जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 638 अंक बढ़कर 76,698, जबकि निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 23,952 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आजकल की जो फिल्में हैं वो पुरानी फिल्मों से बहुत अलग हैं। पहले किसी फिल्म में अक्सर तीन किरदार ज्यादा खास हुआ करते थे, ज्यादा मशहूर हुआ करते थे। एक लीड एक्टर, दूसरा एक्ट्रेस यानी कि मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री, और तीसरे हुआ करते थे विलेन यानी कि खलनायक। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था दोस्तों कि किसी किसी फिल्म में नायक से ज्यादा चर्चा खलनायक की हो जाती थी। जिन्होंने नेगेटिव रोल्स में खूब नाम कमाया, ऐसे बहुत सारे कलाकार हिंदी सिनेमा में रहे हैं। तो आज एक ऐसे ही शानदार कलाकार की हम बातें करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। उनका नाम अमजद खान जी।

दोस्तों, आज के जो गाने हैं वो आपको थोड़े से अलग सुनाई देने वाले हैं, क्योंकि आज मैं कोशिश करूंगी आपको वो गाने सुनाऊं जिनमें अमजद खान नजर आए। वैसे इस गाने में आपने आवाज सुनी कंचन और अमित कुमार की, और ये गाना फिल्माया गया था फिरोज खान, जीनत अमान और अमजद खान पर। इस गाने में जो बार बार आवाज आ रही थी ना ड्रम बजाने की, वो ड्रम के बिल्कुल नजदीक ड्रम को बजा रहे हैं अमजद खान, और बड़े ही डैशिंग पुलिस वाले बने थे इस फिल्म में कुर्बानी में। दोस्तों, अमजद खान को अदाकारी जो है ना वो विरासत में मिली थी। उनके पिता जयंत भी अपने ज़माने के नामी अभिनेता रहे। उनका असली नाम जकारिया खान था और उनका पूरा असर अमजद खान पर रहा। अमजद की आवाज़, उनका अंदाज़ बहुत ही अलग था। 12 नवंबर 1940 को उनका जन्म हुआ था और बचपन में ही उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। अमजद की जो पढ़ाई लिखाई है वो मुंबई में हुई। स्कूल और फिर कॉलेज में अमजद नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थे और अपने कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी भी रहे अमजद खान। जी हाँ।

ध्यान तो सबका उसी तरफ हो जाता था जिस तरफ नजर आते थे अमजद खान, इतनी जबरदस्त उनकी पर्सनैलिटी हुआ करती थी। दोस्तों, किशोर कुमार की आवाज में कालिया फिल्म का एक गाना आपने सुन लिया है बिल्कुल अभी। इसका संगीत दिया था आरडी बर्मन साहब ने और ये गाना फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन और अमजद खान पर। दोस्तों, कॉलेज के जो थिएटर फेस्टिवल्स हुआ करते थे उनमें अमजद खान खूब चर्चा में रहा करते क्योंकि वो अक्सर दो तरह के अवार्ड जीता करते, एक तो बेस्ट एक्टर का और दूसरा बेस्ट डायरेक्टर का। उन्हें बहुत तारीफें मिला करती। इन दोनों ही कैटेगरीज में अमजद ने इतने अवार्ड जीते कि कॉलेज के टाइम में उनका खूब नाम हो चुका था कि हाँ भाई, ये बंदा डायरेक्शन में भी बहुत अच्छा है और ये जो है ना एक्टिंग भी बहुत ही अच्छी करता है। वैसे शायद आप जानते हो अमजद खान के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात कि अमजद को भाषाओं का बहुत ज्ञान था। अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू के अलावा पर्शियन भाषा के भी वो अच्छे जानकार थे। उन्हें लिटरेचर और फिलॉसफी से ताउम्र लगाव रहा। ये अनुभव उनके फिल्मी करियर में भी खूब काम आया। फिलहाल तो आने वाला है गाना, आपको कहीं नहीं है जाना।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना मिस्टर नटवरलाल फिल्म का एक गाना, जो कि फिल्माया गया था रेखा, अमिताभ बच्चन और अमजद खान पर। अमजद खान के बारे में और भी ढेर सारी बातें होंगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, बस यहीं बने रहिए, कहीं मत जाना।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज बातें हो रही हैं अमजद खान की। कहते हैं कि अमजद खान ने पर्दे पर भले ही खतरनाक दिखने वाले किरदार निभाए, लेकिन असल जिंदगी में अमजद बहुत ही सीधे और सरल हुआ करते थे। उनके पिता जाने माने अभिनेता थे और इंडस्ट्री में उनके बहुत सारे अच्छे दोस्त भी रहे, लेकिन फिर भी अमजद काम मांगते वक्त अपने पिता का नाम नहीं बताया करते थे। इसकी वजह से उन्हें लंबे टाइम तक खूब संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आखिरकार हुनर बोलता है वाली जो कहावत है वो सच साबित हुई। अमजद खान थिएटर से जुड़े ही थे। एक नाटक का डायरेक्शन करते वक्त उनकी मुलाकात मशहूर फिल्मकार रमेश सिप्पी से हुई। रमेश ने उसी वक्त तय कर लिया कि अपनी जो ड्रीम प्रोजेक्ट वाली फिल्म है शोले, उसमें जो गब्बर का किरदार है वो अमजद को ही देंगे। और आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। गब्बर का जो रोल है वो हिंदी सिनेमा में क्या महत्व रखता है। जी हाँ, मैं समझ गई कि आप उसी गाने को सुनना चाहते हैं जो अमजद पर फिल्माया गया और बहुत ही मशहूर रहा इस फिल्म में। बिल्कुल वही सुनाने वाली हूँ।

दोस्तों यूं तो इस गाने की बहुत सारी तारीफें हैं, बहुत कुछ इसके बारे में बताने को है, लेकिन सबसे ख़ास बात मुझे लगती है इसमें अमजद खान का होना। सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इस गाने में जो म्यूज़िक है वो आर डी बर्मन साहब का है, और साथ ही साथ उन्होंने गाया भी है इस गाने को। जी हाँ, और हेलन का डांस उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वैसे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि शोले जो है वो हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक रही है। ये एक ऐसी फिल्म रही जिसने सब कुछ आइकॉनिक रहा, कहानी, डायलॉग्स और अभिनय। इस फिल्म को एक और वजह से जाना जाता है कि शोले के जो गाने हैं वो बाकी चीज़ों से थोड़े से हल्के रहे। जी हाँ, इस फिल्म में सभी चीज़ें बहुत अच्छी थी, कहानी, डायलॉग्स, लेकिन जो म्यूज़िक था इस फिल्म का वो इतना ज़्यादा कामयाब, इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था। तो ऐसे में जो मशहूर डायलॉग्स थे उनको कैसेट्स में रिकॉर्ड किया गया, डाला गया गानों के साथ, और इनफैक्ट कुछ डायलॉग्स का अलग से कैसेट भी जारी किया गया। और शोले ऐसी पहली फिल्म थी जिसके कैसेट्स डायलॉग्स की वजह से बिके थे। जी हाँ, और ये तो आप जानते हैं कि अमजद के जो बोले गए डायलॉग्स हैं इस फिल्म में वो तो ऐतिहासिक रहे हैं, इतिहास गवाह है, पूरा हिंदी सिनेमा गवाह है उनके डायलॉग्स का। वैसे आपको कौन सा वाला डायलॉग पसंद है उनका, शोले फिल्म का, ज़रा सोचिए ना। आप सोचिए, मैं तब तक आपको याराना फिल्म का गाना सुनाती हूँ।

किशोर कुमार की आवाज़ में ग्यारहना फिल्म का गाना आपने सुना बिल्कुल अभी, और इस फिल्म को अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा अमजद खान का बिशन वाला किरदार, और उनके ऊपर कई गाने भी फिल्माए गए थे इस फिल्म में। ये बहुत ही ख़ास फिल्म रही है अमजद खान के करियर की, और शायद आपको पता हो कि इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों, भले ही फैंस अमजद खान को सबसे ज़्यादा शोले के गब्बर के तौर पर याद करते हों, उनकी पहचान नेगेटिव रोल्स के लिए हो, लेकिन अमजद खान ने कुछ ऐसे पॉजिटिव किरदार भी निभाए हैं जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला, जैसे कि ग्यारहना फिल्म में बिशन का किरदार हो, या फिर आपने देखी हो कभी शतरंज के खिलाड़ी जिसमें नवाब वाजिद अली शाह का दमदार जो कैरेक्टर था वो निभाया था अमजद खान ने। फिर इसके बिल्कुल उलट उन्होंने कुर्बानी और उत्सव में कॉमिक रोल किए। अमजद खान को साल 2022 में बॉलीवुड के बेस्ट 75 एक्टर्स की लिस्ट में जगह दी गई थी। 1976 में उन्हें गब्बर की भूमिका के लिए BFJ अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला था। 1980 में फिल्म दादा के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर उन्हें फिर से दिया गया। 1982 में याराना के लिए उन्हें एक बार फिर से फिल्म फेयर अवार्ड्स बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। 1986 में फिल्म माँ की कसम के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट कॉमिक एक्टर अवार्ड से नवाजा गया था। एक गाना अब मैं आपको ऐसा सुनाने वाली हूँ जिसमें अमजद खान बड़े ही आराम से बैठे हैं और बहुत ही आराम से गाना सुन रहे हैं। जी हाँ, ये गाना आपने सुना होगा धर्म कांटा फिल्म से।

0: आशा भोसले की आवाज़ में धर्मकांटा फिल्म का ये गाना आपने सुना बिल्कुल अभी। और दोस्तों, आज ही के दिन अमजद खान ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। बने रहें आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। हुकूमत ने लोकसभा में अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस की जानिब से जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल से मुतालिक दरखास्तों की कल समाअत करने पर इत्तेफाक किया। अमरीका और ईरान की जानिब से फौजी कार्रवाइयां रोकने के बाद आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। और 22वीं दौलत मुशरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। अब खबरें तफसील से। सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीम बिल 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल का मकसद सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम एक्ट 2024 में तरमीम करना है। दोपहर 12 बजे पहले इल्तवा के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉ जितेंद्र सिंह ने मजकूरा बिल ऐवान में पेश किया। बिल पेश किए जाने के दौरान अपोजिशन अरकान नीट मामले पर तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर बहस का मुतालबा करते हुए अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। लोकसभा स्पीकर

0: ओम बिरला ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अरकान नीट मामले पर बहस का मुतालबा कर रहे थे और ऐवान में पेश किया गया बिल इस्लाहात की जानिब एक शुरुआती कदम है। उन्होंने कहा कि यह बिल नहायत अहमियत का हामिल है और इस पर जाम बहस जरूरी है जो ऐवान की इज्तमाही राय और कौम के जज्बात की अक्कासी करे। जनाब बिरला ने अरकान से अपील की कि वो अपने ख्यालात और तजावीज़ पेश करें ताकि मुल्क के इम्तहानात के निज़ाम से मुतालिक मसाइल के मुअस्सर हल के लिए मुनासिब इकदामात किए जा सके। उन्होंने तमाम अरकान से ताउन करने और इस अहम बिल पर बहस में सरगर्मी से हिस्सा लेने की भी दरख्वास्त की। ताहम अपोजिशन अरकान तलबा के एहतजाज पर मुबैना पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामा आरई जारी रहने पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने भारत की मुमताज वेटलिफ्टर्स मीराबाई चानू, ऋषिकांत सिंह, राजा मुथु पांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को स्कॉटलैंड में 23वें दौलत मुशरका खेलों में तमगे जीतने पर मुबारकबाद दी।
1: 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावर लिफ्टर श्री झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तहानात की असलाहत के लिए टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन निलेगनी की क़्यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तहानात की असलाहत पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि आइंदा इम्तहानात को काबिल एतमाद बनाया जा सके।
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: ये टास्क फोर्स साबिक आईबी डायरेक्टर तपन डीका, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स के माहिर अमृतलाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। जेडीयू लीडर और राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट संजय झा ने आज कहा कि इम्तहानात में इस्लाहात के सिलसिले में तश्कील दी गई आला इख्तियाराती टास्क फोर्स से इंसानी मुदाखलत कम होगी और टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीकेकार फराहम होगा। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जनाब झा ने कहा कि यह कमेटी मुस्तकबिल में बगैर किसी खामी के इम्तहानात को यकीनी बनाने की खातिर एक पुख्ता तरीकेकार फराहम करेगी।
3: जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगा।
0: बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के एमपी तरुण चुग ने कहा कि इम्तहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल को खत्म करने की खातिर मुजवजा बिल से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुल्क के नौजवानों और तलबा के मुस्तकबिल को महफूज करने के पुख्ता अजम की अक्कासी होती है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज अपोजिशन पार्टियों पर ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने और सरकारी इम्तहानात से मुतालिक बिल पर बहस से बचने का इल्जाम लगाते हुए उनकी शदीद नुक्ताचीनी की। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल उन अफराद के खिलाफ सख्त और मुकर्रर वक्त में सजा का तरीकेकार फराहम करेगा जो पेपर लीक में मुलव्विस पाए जाएंगे।
4: कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूँ, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए इस वक्त।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने

0: amid ongoing unrest in the occupied territory. The march came after talks between JAAC and Pakistani authorities failed to produce a mutually acceptable outcome, prompting a renewed call for public mobilization. The organization urged the United Nations, the European Union, the United States, the United Kingdom, Russia and the wider international community to actively support efforts aimed at protecting civilians and promoting a peaceful resolution of the dire situation in POJK. On the other hand, amid criticism over suppression of fundamental freedoms, the Legislative Assembly elections are currently underway in POJK. News just in, Rajya Sabha has been adjourned till 3 p.m. and Lok Sabha has been adjourned till 5 p.m. Today is the death anniversary of former president and renowned scientist Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam, popularly known as the Missile Man of India. Dr. Kalam is remembered as one of the greatest teachers ever. He played a pivotal role in India's defence and space research development. More from our correspondent.
1: Born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu, Dr. Kalam specialised in aeronautical engineering from Madras Institute of Technology. He made significant contribution as project director to develop India's first indigenous satellite launch vehicle, which successfully injected the Rohini satellite in the near-Earth orbit in July 1980 and made India an exclusive member of Space Club. The former president was also responsible for the development and operationalization of Agni and Prithvi missiles and for building indigenous capability in critical technologies through networking of multiple institutions. Dr. Kalam was one of the most distinguished scientists of the country, with the unique honor of receiving honorary doctorates from 30 universities and institutions. He has been awarded the coveted civilian awards Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and the highest civilian award Bharat Ratna. Dr. Kalam became the 11th President of India on 25th July 2002. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
0: In shooting, India's Isha Singh grabbed the gold medal in the women's 25-meter pistol event of the ISSF World Cup Rifle Pistol Shotgun in Hangzhou, China today. She upstaged Olympic medalist Manu Bhakar, who took the bronze, to complete a double podium finish for India. The 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026 commenced in New Delhi today. Addressing the inaugural ceremony of the event, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said Commonwealth Table Tennis Championships are an inspiration for everyone that will serve to strengthen relations among participating countries. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government introduces Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition ruckus. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju says preventing discussion on such important issues will send wrong message to the country. Global crude oil prices plunge around 6% after United States and Iran pause military strikes. Weather Department forecasts heavy to extremely heavy rainfall in parts of Odisha, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal as deep depression forms over Bay of Bengal. Indian shooter Isha Singh clinches gold in women's 25-meter pistol event at ISSF World Cup. Manu Bhakar settles for bronze. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
3: tries to move.
4: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
2: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
6: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
2: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
6: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
2: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
7: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करे। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
2: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
8: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों। प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
2: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
9: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716, जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
10: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
2: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत

0: को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
2: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
1: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ. अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार किसान भाई बहनों, आकाशवाणी दिल्ली के इस विशेष कार्यक्रम उन्नत किसान में मैं प्रतिमा शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और मेरे साथ हैं
1: रजनीश।
0: तो रजनीश, ये कहा जाता है कि धरती की हरियाली ही जीवन की खुशहाली है और किसान की मुस्कान ही देश की असली सुख समृद्धि भी है, और ये जो धरती है ना, ये हम सब के जीवन का आधार है।
1: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा आपने। देखिए कि ये जो धरती है ना, जो हरी भरी वसुंधरा है, ये हमें बहुत कुछ देती है, पोषण देती है, सब कुछ देती है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो हमें पोषण देती है, जो हमारी माँ जैसी है, हम भी उसकी सुरक्षा करें, उसकी बेहतरी के लिए कुछ काम करें।
0: बिल्कुल। और आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौती का सामना कर रही है, जैसे कि बदलता मौसम, अनियमित वर्षा, बढ़ता तापमान और

0: प्राकृतिक आपदाएं न केवल खेती को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि हमारे भोजन की गुणवत्ता और पोषण सुरक्षा पर भी गहरा असर डाल रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा, और जलवायु परिवर्तन और पोषण सुरक्षा आज एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती बन गई है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम समय रहते कुछ कदम उठाएं, सही जानकारी हो कि हम किस तरह से इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और आज इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि बंसल, वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। और आज का हमारा विषय है जलवायु परिवर्तन और पोषण सुरक्षा, एक उभरती हुई चुनौती। डॉक्टर रुचि बंसल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: जैसा कि बात हमने की, विषय बताया आप सभी को, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है।
2: जी देखिए, जलवायु जो है वो है लंबे समय से किसी भी जगह का जो तापमान और मौसम का पैटर्न है, उसे हम जलवायु बोलते हैं। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में इस पैटर्न में बहुत अधिक बदलाव आया है, और वही बदलाव जो है वो जलवायु परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब इसके जो कारण हैं वो है जैसे जीवाश्म और ईंधन का अत्यधिक प्रयोग, जैसे कोयला, तेल, गैस, ये जलाने से जो हानिकारक गैसें निकलती हैं। फिर वनों की कटाई, शहरीकरण बढ़ने के कारण हम देख रहे हैं कि हर जगह नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, हर जगह नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो उनकी वजह से जो हमारे वन हैं, जो हमारा ऑक्सीजन का स्रोत हैं, वो कटते जा रहे हैं, तो इसके कारण भी तापमान में वृद्धि हो रही है। फिर मानवीय गतिविधियां, इसके अतिरिक्त बहुत अधिक केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग, खादों का प्रयोग, ये भी कहीं ना कहीं इस जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। तो यही सब कारक हैं जो मिलकर हमारी इस जलवायु को बदल रहे हैं।
1: डॉक्टर बंसल, जहाँ पे आपने बताया कि जो तापमान है बढ़ रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बढ़ता हुआ तापमान हम सबके लिए एक चिंता का विषय क्यों है?
2: जी बिल्कुल। तो यदि हम देखें तो सिर्फ तापमान ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि जो हमारे किसान भाई बहन जो बुआई करते हैं फसलों की, उनका समय भी बदल रहा है। अगर हम सभी ने महसूस किया है कि पहले जो बारिश कई बार जून में हो जाया करती थी, अब वो जुलाई में होने लगी है, तो जो सीजन है वो पीछे खिसक रहे हैं, उनका समय बदल रहा है।
0: और कई बार तो डॉक्टर बंसल ये भी हो रहा है कि जो जुलाई में बारिश होनी चाहिए वो अभी तक भी
2: नहीं होती। जी, तो इसी तरह की जो घटनाएं हैं, माने कि बहुत अधिक, कभी बहुत अधिक लू चलना, कभी बहुत अधिक सूखा हो जाना, और कई बार बहुत अधिक बाढ़ आ जाना या नहीं आना, इस तरह की जो घटनाएं हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनका जो होना है वो बढ़ गया है, और इनमें बहुत ज्यादा अनियमितता आ गई है। तो इस अनियमितता की वजह से जो हमारी फसलों का उत्पादन है वो घट रहा है।
0: तो डॉक्टर साहब, इसका हमारी खेती और किसानों की आय पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है?
2: जी बिल्कुल। देखिए, हमारे जो किसान भाई बहन हैं, उनकी जो आय है उनकी खेती से ही है। और अगर इस तरह का जो ये जो चरम घटनाएं हैं जलवायु की, यदि ये बार बार होंगी और अगर फसल का उत्पादन ही कम होगा, तो फिर उनको कीमतें भी, कहीं ना कहीं उनका उत्पादन कम होगा तो उनकी आय कम हो जाएगी, उनको कीमतें भी कम मिलेंगी। या फिर कई बार क्या होता है, और इससे उपभोक्ता पे क्या फर्क पड़ता है, कि वो जो उत्पादन कम होने की वजह से कीमत में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, थोड़ा सा ही सामान, थोड़ा सा ही सब्जी आपको या फल बहुत महंगा मिलता है। तो एक तो ये चीज है, और दूसरा है कि ये जो जलवायु परिवर्तन है इसकी वजह से न केवल उत्पादन कम हो रहा है, बल्कि जो पौधों की पोषणता है, पोषणता माने कि उनके अंदर जो भी प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। तो इससे न केवल खाद्य सुरक्षा का खतरा है, बल्कि कहीं ना कहीं जो पोषण सुरक्षा है वह भी प्रभावित हो रही है। और सिर्फ हम मनुष्य ही नहीं, यदि हम बात करें तो जो हमारे मवेशी हैं, जानवर हैं, उनमें भी इस बढ़ते हुए तापमान के बहुत अधिक बुरे प्रभाव देखे गए हैं। जो कीट पतंगे हैं उनसे जो होने वाली बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी में भी हमारे जो सूक्ष्म जीवी हैं वो पाए जाते हैं, तो जो उनकी विविधता है वो भी इसकी वजह से कहीं ना कहीं कम हो रही है।
0: तो इससे हमारे जो मिट्टी है, खेत है हमारे, उसकी उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है।
2: जी जी। तो जब ये सब कम होगा तो फिर हमारे किसान भाई बहनों की आय पर तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही।
1: डॉक्टर बंसल, जैसे कि आपने बताया कि पोषक तत्वों की कमी हो रही है, खासतौर से जैसे हमारी जो पारंपरिक खेती है गेहूं, चावल, मक्का, तो इसमें जो पोषक तत्वों की कमी हो रही है वो किस तरह से एक पूरी ह्यूमन लाइफ को प्रभावित कर रही है?
2: जी, देखिए, जो हमारा हम सभी की ग्रोथ के लिए, हमारे या हमारे जो जानवर हैं, मवेशी हैं, उनके ग्रोथ के लिए या जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए हमें कुछ मुख्य पोषक तत्व चाहिए। जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना। हमें फैट्स चाहिए जिसे हम वसा भी बोलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा का स्रोत है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन शरीर की बढ़त के लिए जरूरी है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अधिक जरूरी है। बच्चे और बूढ़े लोगों में भी कई बार देखा गया है कि प्रोटीन की कमी हो जाती है, मसल लॉस हो जाता है, तो ये जो प्रोटीन है ये बहुत ही अधिक जरूरी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के विटामिन है, विटामिन ए बी सी डी ई के और भी बहुत सारे खनिज हैं। जैसे अगर हम बात करें, कैल्शियम है, कैल्शियम हम जानते हैं हमारे दांतों के लिए, हड्डियों के लिए जरूरी है। आयरन है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है ना। जिंक है, जिंक भी हमारे बॉडी में जो बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, एंजाइम एक्टिविटीज़ होते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। माने हमारे शरीर की जो एक सुचारू ग्रोथ है, वृद्धि है, उसके लिए ये सब पोषक तत्व जरूरी है।
0: डॉक्टर साहब, पोषण सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा दोनों ही अलग अलग हैं, तो इससे हम कैसे सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं इसको?
2: देखिए, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि मनुष्य को अपनी दैनिक आवश्यकता पूरी करने के लिए, सभी कार्यों को पूरी करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है, वो दैनिक ऊर्जा हमारे खाने से रोज मिल जाए, ये सुनिश्चित हो। जबकि पोषण सुरक्षा का अर्थ है वह स्थिति जहाँ पे लोगों को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाना उपलब्ध हो, मतलब सिर्फ मात्रा ही उपलब्ध ना हो, जो मात्रा उपलब्ध है उसमें जो पोषक तत्व रिक्वायर्ड हैं, जो आवश्यक हैं, वो भी उसमें हो। तो क्या था कि अभी तक जो हमारा उत्पादन था उसमें ज्यादा ध्यान जो दिया जाता था वो खाद्य सुरक्षा की तरफ दिया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा के साथ में पोषण तत्वों की सुरक्षा या पोषण सुरक्षा भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि हमें खाना मिलेगा और यदि हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम अपना काम जो है वो सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे।
0: तो रजनीश, आज का विषय बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है बहुत उपयोगी सिद्ध होगा हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। तो आज के विषय से संबंधित, जलवायु परिवर्तन और पोषण सुरक्षा एक उभरती हुई चुनौती, इस विषय से संबंधित कोई सवाल हो तो हमारे श्रोता हमसे कर सकते हैं। इसके लिए बता दें हमारा नंबर,
1: जो हमारे नंबर है वो जो भी दिल्ली से बाहर के हमारे श्रोता है उनके लिए जो एसटीटी कोड है 011, और जो हमारा फोन नंबर है 2342-1081, दूसरा नंबर है 2342-1083, और विषय जैसा कि बताया प्रतिमा ने, जलवायु परिवर्तन और पोषण सुरक्षा एक उभरती हुई चुनौती। तो इस विषय से जुड़ा कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप सीधा इन फोन नंबरों पर फोन करके हमसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब उसका सीधा जवाब देंगे।
0: और हमारे साथ हैं हमारी वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रुचि बंसल। तो डॉक्टर रुचि बंसल, भारत में कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, और किसानों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी ऐसी फसलें हैं जो प्रभावित होती हैं और कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनसे कि वो अपने आप को सेफ भी रख सकते हैं?
2: जी, यदि देखा जाए तो जो हमारे सीरियल्स हैं, यानी कि जैसे गेहूँ है, चावल है
1: जी,
2: मक्का है, और हमारी सब्जियां हैं, इनमें चूंकि पानी की अगर देखा जाए तो रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा होती है, और जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो वर्षा में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, और तापमान भी बढ़ रहा है, तो अगर तापमान भी बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पानी की रिक्वायरमेंट भी कई बार ज़्यादा चाहिए होती है, तो इनका जो उत्पादन है ये बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। और यदि हम इसके विपरीत, यदि हम दलहन या थोड़ा मोटे अनाजों की बात करें, तो मोटे अनाजों की उत्पादकता पे इस जलवायु परिवर्तन का, सूखा या बढ़े हुए तापमान का थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है। इनमें नेचुरल रूप से थोड़ी प्रतिरोधक क्षमता होती है,
0: जिसको हम मिलेट्स भी कहते हैं,
2: जिनको हम मिलेट्स भी कहते
0: हैं। जी जी, डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए पूछते हैं उनसे सवाल। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम उन्नत किसान में। आप कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें।
3: मैं तो मैम दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: दिल्ली से बोल रहे हैं, कौन?
3: पर्यावरण के ऊपर आप बात कर रहे हो।
0: जी जी,
3: मैंने फोन करा, मैं किसान नहीं हूँ।
0: हाँ जी,
3: मैं व्यापारी हूँ छोटा सा।
0: कोई नहीं, आप जागरूक नागरिक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण को लेकर हम सब को जागरूक होना बहुत जरूरी है, तो पूछिए अपना सवाल। जी जी, आप अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम संजय कुमार है, दिल्ली में निहाल विहार से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा संजय जी, सवाल पूछें आप।
3: सवाल मेरा ये

0: है जी, मैं ये देखता हूँ हम लोगों ने डीडीए के पार्क है हमारा, उस पे हमने हरा भरा करा है
1: जी,
0: अपने खुद जनता द्वारा ही
1: जी,
0: किसी का सहयोग नहीं है। उसमें हमने पीपल के पेड़ लगाए, बरगद के लगाए, नीम के लगाए, जामुन लगाया, अमरूद लगाया, मतलब कि 3 एकड़ कम से कम 15,000 गज जगह को डेवलपमेंट करा है, जो कि
1: बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोई सवाल हो तो आप पूछ लें फिर उसका आंसर, क्योंकि हमारे पास

0: जी ठीक है संजय जी।
1: तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न एक मेरा, हमारे जो अमरूद के पौधे हैं उनको ना कीड़ा लगता है, अमरूद को, जामुन को,
0: ठीक है,
1: और अनार के पौधों लगे हुए उनमें जो फल आता है बड़ा होता है नहीं है, फूल नहीं है, पड़ता नहीं है।
0: संजय जी हम समझ गए, समझ गए, धन्यवाद सवाल करने के लिए जी। मैम बताए, थोड़ा सा इनको भी संतुष्ट करना होगा कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने जो पार्क हैं बड़े हरे भरे किए हैं, जामुन के, पीपल के पेड़ लगाए हैं, तो आम जो नागरिक हैं इस ओर अपना अपनी सहयोग दे रहे हैं, तो क्या सरकारी सहायता इन लोगों को भी मिल सकती है, कहने का मतलब ये था।
2: जी जहाँ तक मुझे जानकारी है तो ये जो भी अपनी लोकल बॉडी है आसपास उससे ये कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, या किसी ये एनजीओ के थ्रू भी
0: इनको पता लग,
2: इनको अभी मदद मिल सकती है।
3: मैं संजय जी को ये भी बताना चाहूंगा, हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक पूरा वन महोत्सव बनाया था जिसमें 90,000 पौधों का जो टारगेट रखा गया था, और उसमें सरकार ने फ्री पौधे भी दिए थे जो भी नागरिक जागरूक थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता में
0: तरीके से सहायता ही होती है,
3: सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिशें प्रयास करती है और हमें उससे जुड़ना होता है, तो ऐसे निरंतर सरकार की ओर से प्रयास रहते हैं।
2: और देखिए जहाँ तक पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ की बात है, तो जो पीपल और बरगद हैं इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत दूर तक फैलती हैं
3: जी,
2: है ना, तो पार्क या ऐसे खुले एरिया जहाँ पे इस तरह की भूमि उपलब्ध है वहाँ तो ठीक है, लेकिन हर जगह सड़क के किनारे इस तरह के पेड़ लगाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि रोड साइड में इट इज वेरी डिफिकल्ट।
0: बिल्कुल, तो ये तो खेतों के किनारे पे, मेड़ों पे, आसपास फेंसिंग के रूप में भी लगाए जा सकते हैं, या वन तो है ही हमारे जहाँ पर इनको और अच्छे से
2: जी जहाँ पे खुला खुला जो जगह है
0: जी, जी
2: वो हो जिससे ये अच्छे से फल फूल सके, ऐसी जगहों पर उन्हें लगाना उचित है।
3: और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो,
4: हेलो
3: जी, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं।
4: मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, मेरा नाम डॉक्टर अभय कुमार पाल है
3: जी। अभय जी अपना सवाल पूछिए।
4: सवाल से ज्यादा बस मैं दो ही चीज करना चाहूंगा, सवाल तो चलते रहेंगे
3: जी।
4: आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज पे बहुत कम फोकस किया जाता है
3: जी।
4: जो घरों में बागवानी होती है उस पे एक दिन जरूर दिया करें, क्योंकि ये भी एक पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने छोटे छोटे पेड़ उगाएं। नंबर दो, ये जो पेड़ डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें बहुत ज्यादा मिसमैच हो रहा है, लोग पेड़ लगा रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, लेकिन पेड़ ऐसे लगाते हैं सफेद जगह पेड़ लगा दिए जहाँ पानी का कंजम्पशन आपका अंडरग्राउंड वाटर ले रहा है, इस पर रोक नहीं लगने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इस पर कृपया ध्यान दिया जाए कि जो पेड़ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर इस टाइप का कोई भी पेड़ नहीं हो जो जो अंडरग्राउंड पानी को एब्जॉर्ब ज्यादा कर।
0: बहुत अच्छा आपने हमें जानकारी,
4: मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूँ जितनी भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता हूँ या वो करता हूँ जब हम बात करते हैं, लेकिन इस वैरायटी हमें नंबर से मतलब नहीं है, क्वांटिटी। तीसरा एक पॉइंट और है मैम, मेरा कोई वो नहीं है, बच्चों के न्यूट्रिशन पर भी मैं कह सकता हूँ एक शब्द अगर आप मुझे समय दें।
0: जल्दी से
4: कह रहा हूँ, ये जो हमारे आज के टाइम में मैं गेहूं पे लेकर चलता हूँ केवल, हम जो ये हाइब्रिड टाइप के गेहूं बना रहे हैं इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे अगर हम देखें अपने मेडिकल हिस्ट्री में ग्लूटेन सेंसिटिविटी बढ़ गई है, तो ये एक तरह से बैड इफेक्ट आ रहा है नई हाइब्रिड वैरायटी से, जो ओल्ड वैरायटी में नहीं था, जो नई वैरायटी से आ रहा है, क्योंकि उसका कोई भी आवरण जो वहां से आप खत्म हो गया जो हमारे गट को प्रोटेक्ट करता है।
0: ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बातें भी बताई और हमारी जो डॉक्टर बैठी हुई है हमारे साथ वो भी कुछ इस पर प्रकाश डाल रही है जी। धन्यवाद सवाल करने के लिए जी।
2: हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा सुझाव था। लेकिन मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि बदलते समय के साथ में हमारी जीवन शैली भी बहुत अधिक बदल गई है
3: जी।
2: पहले हम मिश्रित अनाज खाया करते थे, आज के समय में हम ज्यादातर गेहूं चावल ही खाना चाहते हैं, तो जब तक हम वापस मिश्रित अनाज पर नहीं जाएंगे तब तक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, चाहे किसी भी तरह की एलर्जी, किसी भी तरह की स्वास्थ्य से संबंधी कोई भी परेशानी हो वो दूर नहीं होगी, तो हमें इसके लिए अपने खाद्य शैली में परिवर्तन करना बहुत ही जरूरी है।
0: जो परंपरागत जो अनाज थे मोटे अनाज
2: उनको अपनाना बहुत जरूरी है।
0: सरकार लगातार कहती है कि आपकी थाली में एक ना एक मोटा अनाज होना चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए, तो ये हमें अपने घर से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे बुजुर्गों से ये चीजें शुरुआत होती है, और मुझे लगता है हमारे जो कार्यक्रम होते हैं इसी पर फोकस भी होते हैं कि हर, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सब तक पहुंचे। और आज का तो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ही अलग है और सभी के लिए लाभदायक है। जलवायु परिवर्तन और पोषण सुरक्षा एक उभरती हुई

0: चुनौती। और डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज बहुत सारे कॉल आ रहे हैं हमारे पास, एक और कॉलर को ले लेते हैं। हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, आप अपना नाम बताएं और सवाल पूछें।
1: मैं राजेंद्र जाटव मोदी नगर से बोल रहा हूँ, जिला गाजियाबाद के मोदी नगर से।
0: राजेंद्र जी स्वागत है कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ लें।
1: और मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार चाहता हूँ।
2: जी बहुत बहुत नमस्कार।
3: कृपया अपना रेडियो सेट थोड़ा अपने फोन से दूर रखिए क्योंकि आवाज थोड़ी।
1: देखिए मेरा तो किसानों से ये कहना कि भाई जो जहरीली खाद है उसे ना लगाएं,
0: ठीक है,
1: और जो देसी खाद है जैसे पहले गोबर की खाद थी, बनी हुई खाद आ रही है, उनको लगाएं।
0: जी ठीक है।
1: मेरा ये है कि भाई पेड़ ना काटें, जैसे अभी सरकार कह रही है माँ के नाम एक पेड़ लगाएं, तो पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, इसीलिए गर्मी बढ़ रही है।
0: चलिए आपका ये संदेश हमारे रेडियो के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच गया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो डॉक्टर साहब आज हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो बहुत ही जागरूक हैं और इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूक भी हैं, क्यों?
3: बिल्कुल प्रतिमा, और देखिए ये हर व्यक्ति का विषय है कि किस तरह से हम अपने जलवायु को ठीक रखें और किस तरह से हम पोषक तत्वों के बारे में जानें। तो मुझे लगता है कि किसान भाई बहनों के साथ हर आदमी का ये कर्तव्य बनता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल था कि आपने बीच में मृदा स्वास्थ्य की बात की, तो जो जलवायु परिवर्तन से मृदा स्वास्थ्य किस तरह से प्रभावित होता है, इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए।
2: जी बिल्कुल। जैसे कि हमारी जो मिट्टी है, तो हमारी मिट्टी की जो उर्वरकता है वो कहीं ना कहीं मिट्टी में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवी हैं, विभिन्न प्रकार के फंगस हैं, जीवाणु हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है उस पर निर्भर करती है। और अगर इस बढ़ते हुए जलवायु के बदलाव के कारण, जैसे जो हम तापमान की वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो वो तापमान की वृद्धि सिर्फ हमें ही नहीं प्रभावित कर रही, वो उन सूक्ष्म जीवियों को भी प्रभावित कर रही है। तो हमारी मिट्टी में जितनी विविधता इनकी होगी, हमारी मिट्टी की उर्वरकता उतनी अधिक होगी। तो यदि हमारी मिट्टी में इनकी विविधता ही नहीं होगी, तो हमारी मिट्टी की उर्वरकता धीरे धीरे धीरे कम हो जाएगी।
0: तो डॉक्टर साहब ऐसी कौन कौन सी तकनीकें हैं जिन्हें अपना कर किसान भाई जलवायु परिवर्तन को कम कर सकता है?
2: जी सबसे पहले तो फसल चक्रण। फसल चक्रण माने कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की फसलें लगाना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ जो अनाज वाली फसलें हैं, जैसे आपका गेहूं चावल मक्का, अधिक उत्पादन अधिक आय के लिए सिर्फ इनको ही ना लगाएं, इनके बीच में यदि आप दलहन लगा लें, किसी एक सीजन में दाल लगा लें, तो उस दाल से क्या होता है कि आपकी मृदा को में जो है वो नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है
3: जी।
2: एक तरह से जो प्राकृतिक रूप से आपकी मिट्टी को खाद मिल जाती है ना, ये लगा लें। फिर आप मिलेट्स लगाएं और जो आप लगाएंगे वो आप खाएंगे भी
3: जी,
2: तो कहीं ना कहीं वो आपकी थाली तक पहुंचेगा। तो यदि आप इस तरह की विभिन्न प्रकार की फसलें लगाएंगे तो आपकी आहार में भी आपके विविधता आएगी। फिर दूसरी चीज हो गई, जैसे कि अभी हमारे पिछले जो कॉलर थे उन्होंने भी बोला कि हम रासायनिक खादों की जगह जैविक खादों के प्रयोग पर ज्यादा ध्यान दें। यदि हम पूरी तरह से जैविक खादों का उपयोग नहीं कर सकते, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पूरी तरह से रासायनिक खादों पर भी निर्भर ना रहें, कुछ जैविक खाद और कुछ रासायनिक खाद ये हम यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि अगर आप अपनी फसल में 3 बार रासायनिक खाद डालते हैं, तो उसमें 1 बार पहले जैविक खाद डाल दें, फिर रासायनिक खाद डालें, इस तरह से आप इसका बैलेंस बना के चलें। फिर इसके अतिरिक्त आप अपनी मिट्टी का परीक्षण कराते रहें समय समय पर, जिससे पता चलता रहे कि आपकी जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता कैसी है, उसमें जो पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए चाहिए हैं वो किस मात्रा में है।
0: बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो आपने बताया डॉक्टर साहब
2: जी।
0: तो डॉक्टर साहब जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन इस दिशा में कितना महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है?
2: जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जितना अगर हम पंप से जमीन से भूमिगत जल जितना निकालेंगे हमारा वाटर लेवल उतना कम होता जाएगा, और यदि यहीं पे हम अपनी जो फसल है उसे यदि हम आवश्यकता के अनुसार जल देंगे, जो कि हम सूक्ष्म सिंचाई में करते हैं, जिसे कि हम माइक्रो इरिगेशन भी बोलते हैं, तो पौधे को उतना ही जल मिलेगा जितनी उसकी आवश्यकता है। इससे जो है वो बर्बादी जो है वो नहीं होगी।
0: और अब तो देखिए कोई कोई प्रांत हमारा ऐसा है जहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो और हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है कि जो वर्षा जल है उसका संचयन किया जाए, उसको सेव किया जाए, ताकि आने वाले समय में बहुत अच्छा साबित हो हमारी खेती के लिए, हम सबके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो डॉक्टर साहब एक बहुत प्यारा सा हमने गाना भी चुना है जिसे हमारे श्रोता भी सुनना चाहते हैं, किसान भाई बहन भी और आपको भी, तो लीजिए आनंद लीजिए इस गीत का।

0: बिल्कुल, देखिए बारिश का मौसम भी चल रहा है रजनीश, और इस तरीके के जो गीत हैं ना, कहीं ना कहीं हम सबको प्रेरित करते हैं, मन को आनंदित करते हैं। बिल्कुल, और आज का विषय भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारा और उपयोगी है, जलवायु परिवर्तन और पोषण सुरक्षा एक उभरती हुई चुनौती।
1: जी तो डॉक्टर साहब, एक बात, जैसे अभी हम फोन कॉल भी देख रहे थे, किसान भाई बहनों के अतिरिक्त भी आम नागरिकों की तरफ से भी बहुत सारे कॉल आ रहे थे जलवायु परिवर्तन को लेकर। हर व्यक्ति किस तरह से जलवायु के संतुलन में या पोषक तत्वों के संतुलन में अपना योगदान कैसे दे सकता है, इस विषय में बताइए।
2: हाँ जी, जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है किचन गार्डनिंग, या जिसको हम कई बार पोषण वाटिका भी बोलते हैं।
1: जी।
2: तो कहने के लिए तो शब्द गार्डन है तो, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में या बड़े शहरों में कई बार इतनी कच्ची जगह नहीं उपलब्ध होती जिसमें आप इस तरह के पौधे लगा सकें। तो आजकल लोगों ने बालकनी में बहुत तरह की सब्जियां फल उगाने शुरू कर दिए हैं। तो आपके पास जो भी जगह है, जो भी कोई कोना जहां पे थोड़ी धूप आती हो, वहां पे आप चाहें तो पॉली बैग्स में कोई भी फल या आपके जो दैनिक इस्तेमाल की सब्जियां हैं वो उगाएं और खाएं, और कोशिश करें कि आप उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो आप आसानी से जो

0: है अपने घर में अच्छा खाना उगा के खा सकते हैं।
1: और आजकल तो डॉक्टर साहब रूफ गार्डन और वर्टिकल गार्डन इस तरह के ऑप्शन
0: जी बिल्कुल, अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास रूफ है, तो आप हाइड्रोपोनिक्स का एक सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप जो पॉली बैग्स होते हैं उसमें भी विभिन्न तरह के जो सब्जियां हैं या फिर जो आपके फूल हैं वो लगा सकते हैं और उन्हें आप कंज्यूम कर सकते हैं।
2: और डॉक्टर, चलते चलते आप हमारे सभी सुनने वालों के लिए क्या महत्वपूर्ण बात या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मेरा संदेश बस इतना ही है कि आप विविध प्रकार के अनाजों को और सब्जियों को उगाएं और वही खाएं और स्वस्थ रहें,
1: और साथ साथ में पेड़ पौधे भी लगाते रहें।
0: जी, और जब भी मौका लगे तो आप ऐसा जो पेड़ पौधे लगाने से और इस तरह का योगदान देने से पीछे ना हटें।
2: और पेड़ पौधे लगाने की तो सबकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम हमारी सरकार ने भी एक अभियान निकाला है, वन महोत्सव हम मना रहे हैं, तो ये जो किरदार है वो हम सब का होना चाहिए, हम सब की महत्वपूर्ण भूमिका है, किसान भाइयों के अलावा भी
0: जी,
2: एक आम नागरिक की भी ये महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जीवन का आधार ऑक्सीजन हम सबको चाहिए
0: जी।
2: तो डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर रुचि बंसल, वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, इसके लिए हम आपका हृदय से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: धन्यवाद।
2: और रजनीश, इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर, और आपकी सेवा में प्रस्तुत किया प्रतिमा शर्मा
1: और रजनीश ने यह कार्यक्रम।
2: अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। श्री रिजिजू ने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा बाधित होने से विद्यार्थियों और देश को गलत संदेश जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज भूस्खलन के कारण 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद करना पड़ा। वहीं डोडा जिले में मुख्य पुल पर दरारें दिखने की आशंका के बाद सुरक्षा जांच के लिए वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए रोक दी गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह उधमपुर जिले के देवल में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ, जिसके कारण अधिकारियों को दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अमरीका और ईरान के सप्ताहांत में सैन्य हमले रुकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 47 सेंट प्रति बैरल पर थी। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के होंगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, introduced the bill in the House.
4: I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Bracket Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. Thank you, Speaker, sir.
3: During the introduction of the bill, the opposition members were on their feet demanding discussion on alleged police action during recent student protests over the NEET issue. Meanwhile, Speaker Om Birla said that members across political parties had been demanding deliberation on the issue of NEET, and the bill introduced in the lower house is an initial step towards reform. The Rajya Sabha was adjourned till 3 p.m. and the Lok Sabha has been adjourned till 5 p.m. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today slammed opposition parties for disrupting the House and preventing a discussion on the Public Examination Bill. Speaking to the media at the Parliament complex, he said the bill provides stringent and time-bound punishment for those found guilty of involvement in paper leaks. Mr. Rijiju said preventing a discussion on such an important issue will send the wrong message to students and the country. He urged the opposition parties to respect the sentiments of students and engage in a constructive debate on the proposed legislation.
5: Congress party aur kuch dal hai unko kehna chahta hu.
6: I want to tell the Congress party and all other political parties, do not allow this issue to be derailed. At this moment, the interests of the students must remain the top priority. The country's examination system needs meaningful reforms, and ensuring that examinations are conducted in a free, fair and transparent manner should be of the highest importance.
5: Yes.

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। स्वागत आप सभी का कार्यक्रम मन भावन में। पहला गीत मेरी तरफ से आप सबके लिए, और आपको फरमाइश करनी है तो fmgoldair@gmail.com पर हमें मेल कीजिए।
1: लेते सैया ओढ़नी, हो लेते

पहला गीत मैंने अपनी तरफ से आप सब के लिए प्ले कर दिया है और अब आपकी बारी है। आप हमें मेल कर सकते हैं fmgoldair@gmail.com पर। जब तक आप हमें मेल करते हैं, एक बेहद आवश्यक सूचना आप सुन लें। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 6 साल के बच्चे को अति शीघ्र ब्लड की आवश्यकता है। बच्चे को ब्लड कैंसर है और इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हों, कृपया मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 9635442662। एक बार फिर से इस नंबर को दोहरा रही हूँ, कृपया इस नंबर को नोट कर लीजिए और अगर आप रक्तदान करने में सक्षम हैं तो ज़रूर इस बच्चे की मदद कीजिए। नंबर है 9635442662। आप ये रक्तदान कर सकते हैं शीघ्र दर शीघ्र। और अब बारी है आपके संदेशों की और मेरी नज़र है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश आ रहे हैं। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और इन्होंने एक गीत की फरमाइश की है जी। अगला संदेशा जो है वो किसका है, हेलो किया है इन्होंने। हेलो जी मुकेश, जतिन, रितिका, सोनम, सुमन, ममता और बरारी बिहार से इन्होंने ये संदेशा भेजा है और आपने कहा है अपने देश से बहुत प्यार करते हैं।

बहुत सुंदर बात आपने कही है। और इसी के साथ साथ अगला संदेशा सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना, इनका ये संदेशा आया। इसी तरह आपके लगातार संदेशे मुझ तक पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप अपने संदेशे भेजते रहिए अपनी फरमाइशों के साथ, लेकिन जो गीत हम आपकी नज़र करते हैं वो किसी एक की फरमाइश होती है। लेकिन ये बात तय है साथियों कि जब भी हम किसी की भी फरमाइश हम सुनते हैं, ये अलग बात है कि आप कहें कि भाई हमारी फरमाइश नहीं सुनाई, लेकिन हम जब भी किसी और की फरमाइश सुनते हैं तो वो गीत अच्छा लगता है। और वो इसीलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि ये वही सब गीत हैं जो अपने ज़माने के बहुत ज़्यादा मशहूर गीत रहे हैं। इन्होंने अपने अपने अंदर इतनी मिठास रखी है कि हमारे दिलों में आज भी महक रहे हैं। आइए, ये किसी एक की पसंद है, सुनते हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग हमारे दिलों में घर कर जाते हैं, जिन लोगों के साथ हमने बहुत प्यारा वक्त गुजारा होता है, वो गाए बगाए याद ज़रूर आते हैं, उनकी कहानियाँ याद आती हैं। और ज़िंदगी भी एक कहानी है और इस कहानी को आगे बढ़ाने का जिम्मा है हमारे पास। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। और अब बारी है अगले गीत की, लेकिन उससे पहले बारी है आपके संदेशों की। बहुत शुक्रिया हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया, सोनू भाटिया, आपने जमशेदपुर से हमें संदेशा भेजा है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे संदेश हैं। हरजिंदर सिंह जी, आपका नाम मैंने ले लिया है, तो अब आप जो संदेशा है अपना, आप इंजॉय कीजिएगा गीत, क्योंकि बार बार एक ही इंसान के बहुत सारे मैसेजेस आते

है ना, तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। हरियाणा रोहतक से अंकित कांगड़ा हैं, मोनी हैं और प्रिंस हैं, और सीताराम कांगड़ा हैं, इनके साथ साहिल कांगड़ा भी हैं। ये आपके मैसेज आ रहे हैं जी। बबलेश पवार हैं, डैनी पवार हैं, मनीष पवार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और बाड़मेर से आपने हमें ये संदेशा भेजा है, और आप जिस तरह से मैसेज करते हैं उससे मोहब्बत एफएम गोल्ड के लिए आपकी नज़र आती है, अच्छा लगता है। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का ये संदेशा आया है, आप भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस संदेशे के लिए। और अगला संदेशा किसका है जी, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल हैं, कमला रानी हैं, गीतिका हैं और भानु प्रकाश हैं। मुझे लग रहा है कि अब नाम तो ले लिए गए हैं, बारी है एक और बेहतरीन नगमे की, आशा जी की आवाज़ में, फिल्म चांद और सूरज से।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक

0: करदाता एक राष्ट्र निर्माता आयकर विभाग भारत सरकार। जरा सुनिए अपने जरूर
1: ये मेरा छोटा भाई है ना बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है भैया सब ऊपर वाले की दया है सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सभी का स्वागत एक बार फिर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। आज मन भावन कार्यक्रम में आपके साथ में आपकी दोस्त सीमा वर्मा और मेरे साथ तो आप सब हैं ही, अपने मैसेजेस के ज़रिए, अपनी मेल्स के ज़रिए और आपकी फरमाइशें भी लगातार हमें मिल रही हैं। एक बार फिर से उस ज़रूरी सूचना को सुन लें, क्योंकि किसी बच्ची को बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है मदद की। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 6 साल के बच्चे को अतिशीघ्र खून की आवश्यकता है। बच्चे को ब्लड कैंसर है और इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। इच्छुक रक्त कर दानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के क्यों ना हो, अगर आप इच्छुक हैं, सक्षम हैं, तो आप ये जो मोबाइल नंबर अब मैं बोलने वाली हूँ इसको प्लीज़ नोट कीजिए और जल्द से जल्द आप संपर्क करें। 9635442662 संपर्क करने के लिए एक बार फिर से नंबर मैं दोहरा रही हूँ, 9635442662। याद रखिएगा, आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है। और अब हम आपके संदेशों की ओर आते हैं। आपके संदेश हमें लगातार मिल रहे हैं। ये जो संदेश है कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह साहब का है। शाहजहाँ बेगम है इनके साथ, मरियम है और जैनब है। अब दूसरे संदेश की तरफ नज़र है, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर हैं, रत्नमाला सुरलकर और आरती हैं इनके साथ, कुमकुम और गुड़िया हैं। यानी कुमकुम को गुड़िया कहते हैं या कुमकुम और गुड़िया अलग अलग हैं, ये मैं नहीं जानती। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से किसका ये मैसेज आया है? टीडी मल्होत्रा साहब हैं, ऋतिक मल्होत्रा हैं, प्रतीक मल्होत्रा हैं, अनिल शर्मा हैं, जयवीर सिंह हैं और डॉक्टर अमनदीप हैं, जो डॉक्टर साहब ने भी मैसेज किया है। एक और मैसेज देखते हैं, फिर उसके बाद आपको बहुत खूबसूरत गीत सुनवाते हैं। ये हमारे पास आया है जी, किसने भेजा है? मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार हैं, शेख शागीर हैं, शेख वजीर हैं और सोहेल शेख हैं। तो बस फिर बारी है अब एक बहुत खूबसूरत गीत की, जो आप ही में से किसी एक की फरमाइश है, आइए सुनते हैं।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत अभी हमने सुना। लैला मजनू एक ऐसी फिल्म है जो दो तीन बार बन चुकी है, शायद 50s में भी बनी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और ये तो खैर 70s की। चलिए अब इस गीत से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपका जो संदेशा है उसे पढ़ते हैं। आपने लिखा है, पर ये किसने लिखा है ये तो बता दें, विहारी कॉलोनी शाहदरा से दिल्ली से तुलसी मस्कीन साहब हैं। इन्होंने कहा है कि आज आपको देख के, यानी देखना मतलब वो कह दिया जाता है ना कि आपको देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं आपको सुन के अच्छा लग रहा है। आज आप मंडे को आई हैं शनिवार की जगह। जी कई बार ऐसा हो जाता है। तो चलिए आपके नाम मैं ले देती हूँ जो आपने नाम लिखे हैं, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन है इनके साथ चंडीगढ़ से। राहुल खुराना, रचिता खुराना, किशु और रिधान खुराना है। आपका संदेशा आया है और आपने भी एक गीत की फरमाइश की है तो हम कोशिश करेंगे उस गीत को आप तक पहुंचाने की, लेकिन उससे पहले कुछ एक नाम जो है वो पढ़ना ज़रूरी भी हैं। और पानीपत से ये हमारे पास नरेश मल्होत्रा जी का संदेशा आया है, लक्ष्य मल्होत्रा हैं, कोयल जी हैं इनके साथ और इनके पापा जी हैं नानक चंद मल्होत्रा, और इन्होंने रोहतक से कुछ नाम भेजे हैं, इनके रिश्तेदार होंगे शायद, पीयूष सिक्का हैं, कोयल सिक्का हैं और डिग्गू और भाविक सिक्का हैं। तो आपका भी ये संदेशा हमने ले लिया है, अब बारी है किसका संदेशा लेने की। बहुत सारे मैसेजेस, और क्या होता है कि आप मेल करते हैं ना तो मेल वो ऊपर भी आप कुछ लिखते हैं। अब यहाँ पे किसका ये आ रहा है, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी हैं, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता का संदेशा आया है। और आप में से बहुत सारे लोग पता है ये कहते हैं कि भाई हमारा बस आप संदेशा जो है उसे शामिल कर लें, गीत जो कोई भी गीत होगा तो उसमें हमारे नाम को आप फिट कर दीजिएगा। तो हम फिट कर रहे हैं जी। जिला खारगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा है, अर्चना वर्मा है, अनुज हैं इनके साथ, आयुषी हैं, रमेश चंद्र वर्मा है, शेख मूसा भाईजान हैं, भाई राजकुमार बुढ़ाना है। और अगला संदेशा, कई बार खुद को एहसास होता है कि भाई बहुत सारे नाम ले दिए हैं अब बारी गीत की है, तो वही कुछ ऐसा फीलिंग सी आ रही है। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी हैं, नावेद हसन अब्बासी हैं, सुहेल हसन हैं, इनके साथ अनम यशफ अब्बासी हैं और रसीद वारसी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना है क्योंकि एक बहुत खूबसूरत गीत 1961 की फिल्म जंगली से आपको सुनाना है।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: वेलकम बैक जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 100.1 पर आपका मनपसंद कार्यक्रम मन भावन। मनपसंद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके मन को जो गीत पसंद है ना, वो आप हमें भेजते हैं और हम आप तक पहुँचाते हैं। अगर आज आपका जन्मदिन है, अगर आज आपकी एनिवर्सरी है, घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ है, घर में कोई नन्ना मेहमान आया है, जो भी खुशी है वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आज आप बहुत उदास हैं, आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, भाई होता है, मूड के हिसाब से दिन जो है वो गुजरता है। और अगर आपको लग रहा है बस मुझे आज किसी से बात नहीं करनी है, सिर्फ अपनी पसंद का गाना सुनना है और आंखें मूंद के वो गाना सुनना है, तो भी आप हमें FM गोल्ड या डेली @gmail.com पर मैसेज कर सकते हैं। अब आप में से कुछ एक कह रहे होंगे देखियो कितनी जल्दी पढ़ दिया पता, तो उनके लिए fmgoldairdelhi@gmail.com। वैसे समय ये तो नहीं कह सकते, बहुत सारा है हमारे पास, लेकिन थोड़ा समय तो है, तो इसीलिए आपको ये पता हमने बता दिया। छत्तीसगढ़ से हमारे पास रोशन देवगन है, कौशल्या देवगन है और हेमलता डिम्पल देवगन है, इनका हमारे पास संदेश आया। और जो अपना नाम लिखते हैं ये कलर्ड में लिख देते हैं तो नज़र जो है वहीं की वहीं पहुंचती है। वसीम अंसारी, बेबी अंसारी और डॉक्टर डब्लू अंसारी, ये आपने कहाँ से हमें लिखा है ये तो देखना होगा, लेकिन आपके नाम हमने पढ़ दिए हैं और जल्दी से हम अगले उसके मैसेज की तरफ जाते हैं। इंदिरा विहार से आपने हमें ये मैसेज किया है और इसके साथ साथ एक और मैसेज है जो अब हम लेते हैं। ये है जी, किसका है जी, हेमलता है, हेमा है, हिना है और हर्षित हैं और खुशी गोस्वामी हैं और लालगिरी गोस्वामी हैं। इन्होंने श्री गंगानगर राजस्थान से हमें संदेशा भेजा है। और एक दो और संदेश

उसके बाद एक बहुत खूबसूरत गीत सुनते हैं उत्तम नगर से। उत्तम कुमार भगत हैं, श्वेता भगत हैं, किशु हैं, तासु हैं और इनके साथ अर्णव आनंद हैं और सत्यम आनंद हैं। मुन्ना भगत भी हैं और गुड्डी भगत हैं इनके साथ। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंग नेजा हैं और पूनम गंग नेजा हैं इनके साथ और विशाल, प्रियंका और निमित हैं। तो अब मैंने आपके संदेश पढ़ दिए हैं, आपके नाम ले दिए हैं और मैं जानती हूँ जिनके नाम नहीं लेते हैं या नहीं लिए जाते हैं, ऐसे कहना चाहिए, लगता तो है कि अभी तक हमारा नाम नहीं आया। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, हमारा बहुत जी चाहता है कि हम आपके सभी नाम पढ़ें, लेकिन वक्त बहुत बड़ा हाकिम होता है, इसे ना सलाम करके ही आगे निकलना चाहिए। यहाँ पर विश्वकर्मा परिवार है जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से ये भेजा है। इनके नामों के बाद एक बहुत खूबसूरत गीत सुनते हैं। बिजेंद्र साहब हैं, तारा देवी हैं और सोनाली विश्वकर्मा है, सोनम विश्वकर्मा है और आशीष विश्वकर्मा है। तो हमने ये नाम ले दिए हैं और अब बारी है एक और खूबसूरत गीत की। अब बारिशें तो आ ही गई हैं, मानसून तो आ ही गया है, सावन का महीना भी बस आ ही गया है समझ लीजिए। तो ये गीत बहुत ही भाएगा, आप इसे सुनिए। तो

लता जी की आवाज़ में अभी हमने ये गीत सुना और आप जानते ही हैं कि आप कहाँ और किसके साथ हैं। मैं बताऊं, अब वक्त आगे बढ़ने की इजाज़त ज़्यादा नहीं दे रहा है, हम जल्दी से आपके संदेश पढ़ देते हैं। हरिद्वार से हमारे पास ये संदेशा आया, ताज मोहम्मद अंसारी साहब हैं, ग़ुलाम साबिर राही हैं, महराज जहां हैं, और ये आपका जो संदेशा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी और मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह का ये संदेशा आया है और आपने उत्तर प्रदेश से हमें ये संदेशा भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए जी। इसी तरह आप एफएम गोल्ड के साथ जुड़े रहिए क्योंकि ये आपका परिवार है। इद्रिस सैफी साहब हमें कहाँ से लिखते हैं ये देखना होगा। इसके साथ साथ क्योंकि अब समय कम है तो बस हम सोच रहे हैं कम से कम आपके कानों में अपना नाम जो है वो सुनाई दे तो आपको लगेगा कि भाई हमारी भी कोशिश जो है वो। बुलंदशहर से हमारे पास अब्बासी परिवार है पूरा का पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए और मैंने भी अब अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा दी है। हो सकता है आज की इस कार्यक्रम का आखिरी संदेशा पढ़ रही हूँ। बुलंदशहर से, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शहनवाज हैं, सरफराज हैं, फरदीन हैं, सुहान हैं, अरजान हैं, आबान हैं और पूरा का पूरा ये अब्बासी परिवार है साथियों। और एक संदेशा यहाँ मेरे को और नज़र आ रहा है, यहाँ पर किसका नाम है जी, नारायण साहब हैं ये गायकवाड़, नारायण गायकवाड़ हैं, दयानंद गायकवाड़ हैं, ओंकार से और साई गायकवाड़ हैं, जालंधर से मक्कड़ परिवार है। आपने हमें संदेशा भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आपके साथ जो नाम है मैं फटाफट पढ़ देती हूँ, ये हैं जी संदीप हैं, ज्योति हैं, मन्नत मक्कड़ हैं और भरत हैं, और इनके साथ कमल साहनी साहब भी हैं। आपने भी हमें जो संदेशा भेजा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथियों अब आज की मन भावन की आखिरी पेशकश, तो कह दूं आपको, करती हूं इस खूबसूरत गीत के हवाले आप सभी को सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सदस्यों से सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर से शुरू हुआ तो उपसभापति श्री हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सदन के वेल में घुस गए। श्री हरिवंश ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच उन्होंने सदन को शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। दोपहर 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा किया और इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। श्री रिजिजू ने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा बाधित होने से विद्यार्थियों और देश को गलत संदेश जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री केशव चंद्र ने आज खान मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री चंद्र ने खान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की और मंत्रालय की प्रमुख पहलों और चल रही गतिविधियों की समीक्षा भी की। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सरायदियों जैसे अधिक प्रभावित इलाकों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रुकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Lok Sabha has been adjourned till 5 p.m. amid opposition protests over alleged police action against students during the protests on the NEET issue. Earlier, the House was adjourned several times amid repeated disruptions as Minister of State Dr. Jitendra Singh introduced the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill proposes stricter penalties including imprisonment of up to 10 years, fines up to 10 crore rupees, confiscation of properties of convicted offenders, special fast-track courts, completion of investigations within 2 months, and trials within 3 months of filing the charge sheet. Speaker Om Birla and Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged members to allow discussion on the bill, saying 6 hours had been allotted and 91 amendments had been received. The minister expressed concern over the behaviour of opposition parties and said that disrupting discussion on such an important bill sends a very wrong message. The Rajya Sabha was also adjourned several times and final till 5:15 p.m. amid protests over the same issue. Earlier, Minister of State for Home Nithyanand Rai moved the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026 for discussion. The bill seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana. The Supreme Court today asked the Uttar Pradesh government to include a forensic auditor in the Special Investigation Team SIT constituted by the state to investigate the allegations of embezzlement of the donations received by the Ram Temple Trust in Ayodhya. A bench of Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joy Mallya Bagchi and Justice V. Mohanna also directed the SIT to submit a status report regarding its ongoing investigation. During the hearing, Solicitor General of India Tushar Mehta, appearing for the Uttar Pradesh government, told the Apex Court that SIT has been constituted, headed by Inspector General of Police IG for Lucknow Range S. Kiran. The External Affairs Ministry summoned the Ukrainian Ambassador Dr. Oleksandr Polishchuk following the attack on a commercial vessel MV OMORFI in which an Indian national was killed. Conveying its serious concerns over the incident, the Ministry condemns such attacks on commercial shipping in the strongest terms, underscoring the adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation and international commerce. The United Kashmir People's National Party UKPNP today called on the Pakistani authorities to exercise restraint and refrain from using force against peaceful protesters participating in the long march organized by the Joint Awami Action Committee JAAC from Rawalkot to Muzaffarabad in Pakistan-occupied

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 है। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। आइए साथियों, कुछ बेहतरीन खूबसूरत गीत सुनते हैं, अपने ज़माने के ऐसे गीत जो हमारी जुबां पर रहे, ऐसे गीत जिन्होंने हमारे दिल में घर किया, और ऐसे गीत जो आज भी जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के टुकड़ों के साथ ये मेल भी खाते हैं।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के।
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। और साथियों, अब एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं। ये फिल्म का नाम है ज़मीन आसमान। 80 के दशक में ये फिल्म आई और बहुत खूबसूरत गीत है लता जी की आवाज़ में। इस गीत के उस पार आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोज़गार समाचार।

0: Website of Sangeet Natak Academy. Kindly do refer to www.sangeetnatak.gov.in. The Central Water Commission, New Delhi, under the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, invites applications from eligible candidates for filling up 52 tentative posts of Assistant Director Grade 2, Subdivisional Engineer, Group B Gazetted Non-Ministerial Post. The posts are available in various offices of the Central Water Commission across India and will be filled on deputation basis, including short-term contract. The selected candidates will be placed in pay level 7 as per the 7 CPC. Interested eligible officers may submit applications in the prescribed format through proper channel within 45 days from the date of publication of the vacancy notice. Detailed vacancy information and application format is available on the official website. Kindly do refer to www.cwc.gov.in. I repeat, it is www.cwc.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। जनसंपर्क अधिकारी, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, रक्त आधान अधिकारी, मेडिकल फिजिसिस्ट, रेडियोथेरेपी विभाग तथा मेडिकल फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग। जरूरी योग्यता, आवेदन करने का तरीका, आवेदन का फॉर्मेट, ईमेल और पोस्ट से आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख इत्यादि और अन्य शर्तों के बारे में जानकारी के लिए देखिए एम्स भोपाल की वेबसाइट www.aimsbhopal.edu.in। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रशासनिक अधिकारी लेखा का एक पद रिक्त है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत शर्तों की जानकारी हासिल कर सकते हैं इस वेबसाइट से www.labasna.gov.in। विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय नई दिल्ली में इन पदों को भरने की आवश्यकता है। सहायक रिक्तियों की संख्या 3, आशुलिपिक ग्रेड 1 रिक्तियों की संख्या 3 और उच्च श्रेणी लिपिक रिक्तियों की संख्या 2। अधिक जानकारी के लिए आप देखिए वेबसाइट www.handlooms.nic.in। भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत अविवाहित भारतीय पुरुष अभ्यर्थियों से अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट भर्ती के लिए चयन परीक्षा में उपस्थित होने हेतु आवेदन आमंत्रित कर रही है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देखिए वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स विशेषज्ञ सामरिक एनक्रिप्टरों के अभिकल्पन एवं प्रमाणीकरण के लिए 1 रिक्ति और सलाहकार सतर्कता के लिए 2 रिक्तियों पर आवेदन आमंत्रित करती है। इसके लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.c.in। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया आमंत्रित कर रहा है कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद के लिए आवेदन। पदों की संख्या 9 है। भर्ती सीधी भर्ती के आधार पर की जानी है और इसके लिए अधिक जानकारी हेतु आप देख सकते हैं वेबसाइट www.stpi.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को आवश्यकता है सहायक विमान क्षेत्राधिकारी और प्रशिक्षणाधीन सहायक उड़ान अनुदेशक की। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की वेबसाइट IGRU

0: www.karyarpage.gov.in पर करियर पेज देख सकते हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र आमंत्रित कर रहा है कनिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड 2 के 2 पदों और क्षेत्र कार्यकर्ता के 1 पद के लिए आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.ncdc.mohfw.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में परामर्शदाता परियोजना समीक्षा का 1 पद रिक्त है। वेतनमान, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, आरक्षण और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं NDMA की वेबसाइट ndma.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: अभी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार सुन रहे थे साथियों। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 MHz है। वक्त हो चला है परिक्रमा का।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। परिक्रमा के इस अंक में हम आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया की प्रमुख खबरों से, साथ ही उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद करेंगे जिनकी उपलब्धियां आज भी हमारे समाज और संस्कृति को समृद्ध बना रही है। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
3: हेलो वैष्णवी। हेलो एंड अ गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड ऑन द 100.1 मेगाहर्ट्ज। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट वैष्णवी। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
2: लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया।
3: प्रोसीडिंग्स इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट डिसरप्टेड एमिड ऑपोजिशन रकस। यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू सेज प्रिवेंटिंग डिस्कशन ऑन सच इंपॉर्टेंट इशू विल सेंड रॉन्ग मैसेज टू द कंट्री।
2: अमेरिका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट।
3: Weather Department forecasts heavy to extremely heavy rainfall in parts of Odisha, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal as deep depression forms over Bay of Bengal.
2: Isha Singh ne ISSF Vishw Cup nishanebazi mein mahilaon ki 25 meter pistol spardha mein swarn padak jeeta, Manu Bhakar ko kansi padak.
3: And 22nd Commonwealth Table Tennis Championship begins in New Delhi. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will observe CRPF Raising Day.

0: Yes, and celebrating a remarkable milestone in the history of India's security forces, we are observing today the 88th Raising Day of the Central Reserve Police Force, the CRPF.
1: आज का दिन उन वीर पुरुषों और महिलाओं के साहस, समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता को नमन करने का है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि सीआरपीएफ की शुरुआत 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच में केवल एक बटालियन के साथ हुई थी?
0: That's right, and from those humble beginnings, it has grown into India's largest central armed police force, with 246 battalions serving across the length and breadth of the country.
1: सीआरपीएफ को वास्तव में विशिष्ट बनाती है इसकी बहुआयामी भूमिका। आतंकवाद का मुकाबला हो, वामपंथी उग्रवाद से निपटना हो, कानून व्यवस्था बनाए रखना हो, शांतिपूर्ण चुनाव कराना हो या प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्यों में लोगों की मदद करनी हो, सीआरपीएफ हर चुनौती का डटकर सामना करती है।
0: Absolutely, Vaishnavi, and every mission reflects the force's guiding motto, service and loyalty. These are not just words, they are values that every CRPF personnel lives by every single day.
1: CRPF के कुछ विशेष इकाइयां भी हैं। क्या आपने रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF के बारे में सुना है?
0: Of course, Vaishnavi, the RAF is specially trained to handle riots, crowd management and emergency situations with professionalism and sensitivity.
1: और अभिषेक, फिर है कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, एक विशेष कमांडो इकाई जिसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में कठिन अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
0: Yes, and it's truly inspiring, Vaishnavi, to see how these specialized units strengthen India's internal security while ensuring the safety of millions. But behind every uniform is a story of immense courage.
1: बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। पिछले कई दशकों में 2000 से अधिक सीआरपीएफ जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनका अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
0: एंड एवरी सैक्रिफाइस रिमाइंड्स अस, वैष्णवी, दैट व्हाइल वी गो अबाउट अवर डेली लाइव्स, दीस ब्रेव हार्ट्स स्टैंड अलर्ट, ऑफन फार अवे फ्रॉम द फैमिलीज, प्रोटेक्टिंग अ पीस एंड सिक्योरिटी।
1: आज जब सीआरपीएफ अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है, तो ये केवल उसकी उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि उन मूल्यों का भी सम्मान है जिन पर ये बल गर्व करता है, यानी अनुशासन, साहस, पेशेवर उत्कृष्टता और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण।
0: From the snowy mountains to dense forests, from bustling cities to remote villages, the CRPF has earned the trust of the nation through its dedication and resilience.
1: वास्तव में सीआरपीएफ देश के सबसे भरोसेमंद सुरक्षा बलों में से एक बन चुकी है, जो हर परिस्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है, चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो।
0: So on this special occasion, Vaishnavi, we extend a heartfelt greetings to every serving and retired CRPF personnel and the families. Your service, sacrifice and commitment are deeply respected.
1: जी अभिषेक, और अंत में आइए याद रखें कि किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति केवल उसकी सीमाओं में नहीं, बल्कि उन वीर सपूतों के समर्पण में भी निहित होती है, जो दिन रात उसकी एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करते हैं।
0: So here's wishing the Central Reserve Police Force a very proud and successful 88th Raising Day. And today we also pay a heartfelt tribute to one of India's most beloved sons, a visionary scientist and inspiring teacher, and the People's President Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam, whose death anniversary we observe today.

0: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन बड़े सपनों, अटूट संकल्प और राष्ट्र सेवा की प्रेरक गाथा है। उनके निधन के वर्षों बाद भी उनके विचार, उनके कार्य और उनका व्यक्तित्व आज भी लाखों लोगों, विशेषकर देश के युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
1: And here I'd like to share something with our listeners, Vaishnavi, about the humble origins of Dr. APJ Abdul Kalam. He sold newspapers as a young boy to help support his family and fund his education. And later on, often called the Missile Man of India, Dr. Kalam played a defining role in strengthening India's defense and space capabilities. And beyond his scientific achievements, he will always be remembered as one of the greatest teachers our nation has ever known.
2: I designed a four-line poem-like thing called Creativity. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great.
0: डॉक्टर कलाम की शिक्षा केवल कक्षा की चार दीवारों तक सीमित नहीं थी। चाहे वे किसी स्कूल में हो, विश्वविद्यालय में या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, वे हर युवा को बड़े सपने देखने, निरंतर सीखने और उन्हें साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा देते थे।
1: एंड डॉक्टर कलाम वाज बोर्न ऑन 15th October 1931 इन द टेंपल टाउन ऑफ रामेश्वरम इन तमिलनाडु। कमिंग फ्रॉम अ हंबल बैकग्राउंड, ही प्रूव्ड दैट डिटरमिनेशन इन एजुकेशन कैन ओवरकम एवरी ऑब्स्टिकल।
0: उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान की मजबूत नींव रखी।
1: एंड वन ऑफ हिज लैंडमार्क अचीवमेंट्स केम एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और SLV-3।
0: जी अभिषेक, जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह का पृथ्वी के निकटवर्ती कक्षा में सफल प्रक्षेपण भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपने ही देश में विकसित और प्रक्षेपित उपग्रह लॉन्च करने की क्षमता थी।
1: And his contributions didn't stop there, Vaishnavi. Dr. Kalam was instrumental in the development and operationalization of the Agni and Prithvi missile systems, earning him the well-deserved title of the Missile Man of India.
0: डॉक्टर कलाम का मानना था कि यदि वैज्ञानिक, शैक्षणिक संस्थान और उद्योग एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ मिलकर काम करें, तो भारत अपनी स्वदेशी तकनीक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।
1: डॉक्टर कलाम्स एक्सीलेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ही रिसीव्ड ऑनररी डॉक्टरेट्स फ्रॉम मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस।
0: इसके अलावा देश ने उनके अमूल्य योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें पद्मभूषण, पद्म विभूषण और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया।
1: एंड व्हाट्स रियली कमेंडेबल अबाउट हिज पर्सनालिटी, वैष्णवी, इज दैट डिस्पाइट होल्डिंग द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ही रिमेन्ड हम्बल, अप्रोचेबल एंड डीपली कनेक्टेड विद द ऑर्डिनरी सिटीजंस।
0: अभिषेक, शायद यही कारण था कि उन्हें प्यार से जनता के राष्ट्रपति कहा जाता था। उन्होंने केवल अपनी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपनी सादगी, विनम्रता, ईमानदारी और युवाओं पर अटूट विश्वास से भी करोड़ों भारतीयों का दिल जीता।
1: And perhaps one of his most memorable messages, Vaishnavi, was dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action.
2: History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations.
0: अभिषेक, उनके ये प्रेरक शब्द आज भी हर पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं और लोगों को अपने सपनों पर विश्वास करने, कड़ी मेहनत करने तथा समाज और राष्ट्र के विकास में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं।
1: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस मन की बात प्रोग्राम ऑन आकाशवाणी यस्टरडे सेड डॉक्टर कलाम्स पर्सनालिटी एम्बॉडीड मेनी इंस्पायरिंग फैसेट्स, येट द रोल ऑफ अ टीचर वाज क्लोजेस्ट टू हिज हार्ट। ही सेड द फॉर्मर प्रेसिडेंट इंस्पायर्ड चिल्ड्रन एंड द यूथ टू ड्रीम बिग।
3: 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: एंड ऑन दिस सॉलम डे वी रिमेम्बर नॉट ओनली द साइंटिस्ट हु स्ट्रेंथेंड इंडियाज डिफेंस एंड स्पेस प्रोग्राम्स, बट ऑल्सो द टीचर हु इग्नाइटेड काउंटलेस यंग माइंड्स।
0: उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि ज्ञान, विनम्रता, सेवा भाव और राष्ट्र के प्रति समर्पण में निहित होती है।
1: सो एज वी पे अ रिस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट टू भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लेट अस कैरी फॉरवर्ड हिज विजन ऑफ अ डेवलप्ड, सेल्फ रिलायंट एन एनलाइटेंड इंडिया।
0: अंत में हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर कलाम के आदर्श हमें निरंतर प्रेरित करते रहें और हर उस युवा को नई ऊर्जा और नई दिशा दें जो बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का साहस रखता है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करने का। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और

0: 1-2-3-3-1-4-4-4-4 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है। सबसे पहले चलते हैं शिमला की ओर। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में इन दिनों ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला मनाया जा रहा है। चौगान मैदान में आयोजित हो रहा ये 8 दिवसीय उत्सव श्रावण मास के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का भव्य शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हो गया है। प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस ऐतिहासिक व पारंपरिक मेले का शुभ आरंभ किया। इस दौरान लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिर्जा परिवार की ओर से तैयार मिंजर मंदिर में अर्पित करने के बाद ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों की धुनों के बीच शोभा यात्रा भगवान रघुनाथ मंदिर पहुँची। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक मिंजर मेला अपने आप में एकजुटता को दर्शाता है। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि ये उत्सव प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सांप्रदायिक सौहार्द और जीवंत लोक परंपराओं का प्रतीक है।
2: ये अच्छा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस मिंजर मेले के माध्यम से इसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको संजो करके रखा है।
1: मिंजर मेले में गाए जाने वाले प्रसिद्ध पारंपरिक ऋतुकालीन गीत कुंजड़ी मल्हार का विशेष महत्व है, जो प्रकृति, संगीत और स्थानीय लोक संस्कृति का

0: मेले में सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों और हिमाचल प्रदेश के लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। रंग बिरंगी रोशनी, संगीत और लोक संस्कृति की अनुपम छटा के बीच आयोजित पहली सांस्कृतिक संध्या ने अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की शानदार शुरुआत का संदेश दिया। आयोजन में उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि चंबा का ऐतिहासिक मिंजर मेला आज भी अपनी सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं के कारण लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखता है। मेले के दौरान 8 भव्य सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन होगा, जिनमें बॉलीवुड, पंजाबी, हिमाचली और स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
1: Yes, and from the Ninjar Mela, we turn our attention to a story from Nashik. The Catch the Rain Water Conservation Initiative, been implemented in Maharashtra's Nashik district, was recently praised by Prime Minister Narendra Modi during his Mann Ki Baat program.
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
1: Let us now go over to our Mumbai correspondent to know more.
3: The Catch the Rain campaign has emerged as a successful model of water conservation in Maharashtra's Nashik district. Through strong public participation, interdepartmental coordination and the effective implementation of various government schemes, under the initiative 2199 water conservation works have been completed at a cost of ₹257.93 crore, creating an additional 12,243 TCM of water storage capacity and bringing 2,931 hectares of land under new irrigation. Thanking the central government for recognizing the initiative, Nashik district collector Ayush Prasad, who led the campaign, appealed to farmers to adopt and implement the Jaltara project on their farms, describing it as an effective measure for groundwater recharge and water conservation. Maharashtra's Nashik has created a successful model for water conservation by converging several government initiatives, including the Gaal Mukta Dharan, Gaal Yukta Shivar scheme, Jal Yukta Shivar Abhiyan 2.0, the Pradhan Mantri Krishi Sanchayi Yojana, stream deepening and widening works, and various other state government schemes. This integrated approach has significantly strengthened water conservation and improved water security across the district. For Parikrama, this is Shailaja Tiwale from Mumbai.

0: Yes, you are listening to a composition, A Meeting by the River by Vishwamohan Bhatt.
1: और श्रोताओं, अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी गायिका से जिनकी मधुरता ने भारतीय संगीत को कई भाषाओं में समृद्ध किया। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सम्मानित पार्श्व गायिकाओं में से एक, केएस चित्रा के बारे में। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, मराठी, गुजराती और अन्य भारतीय भाषाओं सहित 20 से अधिक भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए।

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो वैष्णवी और अभिषेक को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
1: श्री बिरला ने सदस्यों से सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच उन्होंने सदन को शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाले बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने SIT को जांच के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इंकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितम्बर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु ने कांस्य पदक जीता। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Lok Sabha was adjourned till 5 p.m. amid opposition protests over alleged police action against students during the protest on the knee tissue. Earlier, the House was adjourned several times amid repeated disruptions as Minister of State Dr. Jitendra Singh introduced the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill proposes stricter penalties including imprisonment of up to 10 years, fines up to 10 crore rupees, confiscation of properties of convicted offenders, special fast-track courts, completion of investigations within 2 months and trials within 3 months of filing the charge sheet. Speaker Om Birla and Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged members to allow discussion on the bill, saying 6 hours had been allotted and 91 amendments had been received.
5: I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. We have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt this debate? The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
4: News just in, Lok Sabha has been adjourned for the day. The Rajya Sabha was also adjourned several times till 5:15 p.m. amid protests over the same issue. Earlier, Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026 for discussion. The bill seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, Jan Gan Man. The Supreme Court today asked the Uttar Pradesh government to include a forensic auditor in the Special Investigation Team, SIT, constituted by the state to investigate the allegations of embezzlement of donations received by the Ram Temple Trust in Ayodhya. The court also directed the SIT to submit a status report regarding its ongoing investigation. During the hearing, Solicitor General of India Tushar Mehta, appearing for the UP government, told the Apex Court that an SIT has been constituted, headed by Inspector General of Police for the Lucknow Range, S. Kiran. The External Affairs Ministry summoned the Ukrainian Ambassador Dr. Alexandra Polishchuk following the attack on commercial vessel MV Omorafi, in which an Indian national was killed. Conveying its serious concern over the incident, the ministry condemned such attacks on commercial shipping in the strongest terms, underscoring their adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation and international commerce. A deep depression over the northwest Bay of Bengal has triggered widespread torrential rainfall across Orissa, disrupting normal life and raising concerns over flash floods and inundation. The Met Department has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall in the state today. Several districts have recorded exceptionally heavy precipitation, with low-lying areas submerged and transport services affected. In Jammu and Kashmir, a fresh landslide today blocked the 250-kilometer strategic Jammu-Srinagar National Highway in the Udhampur district, while the main bridge in the Doda district was temporarily closed to vehicular movement after suspected cracks triggered a safety inspection. A fresh batch of 3,823 Amarnath pilgrims was allowed to cross the affected stretch after authorities restored one-way traffic on the highway. In Assam, the flood situation has improved as flood waters have receded in most of the affected

5:11 21 सेकेंड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। आज हफ्ते का पहला दिन आपके साथ मैं सीमा वर्मा। मौसम भी देखिए हमारा कैसे साथ दे रहा है। मौसम बड़ा प्यारा बड़ा सुहाना हो गया है। पता नहीं आपके वहाँ बारिश थमी है या अभी भी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये गाना दोनों रूपों में मेल खा ही जाएगा।

एक दूजे के लिए फिल्म से अभी हमने गीत आप तक पहुंचाया, प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और अब आपको एक ऐसा गीत सुनाते हैं साथियों जिसने अपने देश में तो धूम मचाई ही, 80s की बात कर रही हूँ, 1982 की बात कर रही हूँ, जब डिस्को डांसर फिल्म जो है वो पर्दे पर आई। अब इस फिल्म के वैसे तो सभी गीत बहुत पसंद किए गए लेकिन एक ऐसा गीत जो भारत में तो बहुत चर्चित हुआ, डिस्को डांस का क्रेज स्टार्ट हुआ, मिथुन चक्रवर्ती जी हर दिल अजीज हो गए और रूस में, ख़ास तौर पर रूस में वहाँ के रेडियो स्टेशंस पर यह गीत बजने लगा, वहाँ की शादियों में, गलियों में, किसी भी फंक्शन में ये गीत वहाँ बजता और लोग झूम झूम कर इस गीत पर नाचते। देख लीजिए ये असर होता है संगीत का। अब इसके बारे में बता दिया आपको तो याद कीजिए 80s का दौर जब डिस्को म्यूजिक आया और एक नई क्रांति लेकर आ गया, कुछ नया था जो हर किसी को भा गया। तो सुने फिर इस गीत को। पार्वती खान ने इस गीत को गाया और ये गीत अब हम मिलकर

भाई ये जो गाना है ये तो लास्ट में जो गाना गा रही हैं वो तो रो पड़ी, और रोना तो बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कोई मुस्कुराता रहे और दिल से मुस्कुराता रहे, सबके जीवन में खुशियाँ हों और ज़िंदगी बहुत प्यारे तरीके से आगे बढ़ती रहे। इसलिए चलिए एक गाना सुनते हैं जिसकी वजह से आपने मुस्कुराना तो ज़रूर है साहब।

साथियों, सावन का महीना हो, मॉनसून आ चुका हो, तो कई बार बातों ही बातों में बारिश का जिक्र बहुत होता है। और जब बारिश का जिक्र होता है तो हर कोई ये कहता है कि बारिश बड़ी अच्छी लगती है। और वो बारिश जो पहली बार धरती को छूती है वो अपने आप में बड़ी ख़ास होती है। याद रखिएगा, पहली बारिश बहुत ख़ास होती है, क्योंकि कहते हैं कि बारिश की बूंदें जो धरती पर चंद पड़ गईं, सारे इत्रों की खुशबुएं मंद पड़ गईं। तो जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, वो अपने आप में बड़ी ज़्यादा ख़ास होती है। बहरहाल, हम आपको याद दिला दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और हमारे साथ 80s और 90s के बेहतरीन गीत, जो मैं बाहर का जो मौसम है उससे मेल खाते हुए गीत आप तक पहुंचा रही हूं। ये सोच करके आपको कैसा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। बारिश का जब जिक्र होता है तो कोई कहता है मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है, कोई कहता है कि घर पर हूँ तब अच्छी लगती है, बाहर नहीं। बहरहाल, चलिए, कैसा लगता है आपको, इस गीत में सुनते हैं।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई। आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

करती हूँ गाते गुनगुनाते आपका जो सफ़र है वो आगे बढ़ रहा होगा। अमूमन देखा गया है कि जब बारिश होती है तो ट्रैफिक जैम थोड़ा हो जाता है। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो आप ख़ुद को अकेला ना समझें, एफएम गोल्ड 100.1 आपके साथ है। और आज मंडे की खूबसूरत भीगी भीगी सी इस शाम में आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और ये एक बहुत भीगा भीगा सा गीत आप

सावन के महीने में सावन के झूले तो ज़रूर पड़ते हैं, और यहाँ पर हम कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं तो यहाँ पर झूले जो हैं वो थोड़ा सा हम मिस करते हैं, लेकिन अगर गांव में देखें तो आज भी गांव में सावन के झूले जो है वो ज़रूर डलते हैं और झूला भी झूला जाता है इस मौसम में। अब हमने ये बहुत प्यारा गीत सुना लम्हे फिल्म से। जब बारिश आती है तो अपने संग खुशियां लाती है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि कई बार बारिश अपने साथ एक बहुत ज़बरदस्त ताप लेकर आती है। अब आप कहेंगे कि पानी है तो ताप कहाँ से होगा। ये जब बारिश कई बार कुछ के लिए ताप बन जाती है और कुछ के लिए राहत बन जाती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार यादों का जो सफ़र होता है वो एक बार फिर से शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग याद आते हैं ऐसी बारिश में, जिनके साथ हाथ में हाथ डालकर कभी भीगे होंगे हम बारिश में। बहुत कुछ होता है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, कितनी सारी फीलिंग्स होती होंगी, सोचिए ज़रा।

इस गीत में एक अंतरे में लाइन आती है आखिरी अंतरे में कि कभी टूट कर चीज कोई जुड़ी है, बिल्कुल जुड़ती है साहब, बिल्कुल जुड़ती है, बस सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच रखनी होती है। ये सकारात्मक सोच हम कैसे रखते हैं भाई? आप अगर ये सोचेंगे कि अंधेरे में वो जो जुगनू दिखाई दे रहा है वही तो मंजिल है और उसका पीछा करेंगे, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको वो जो टूटी हुई चीज़ है वो ना जुड़े? और एक बात और बताऊं आपको मैं, ये जो टूटी हुई चीज़ होती है जिसे हम दिल कहते हैं, इसे जोड़ते हैं हमारे दोस्त, कुछ पुराने और कुछ जो यूं ही राहों में चलते हुए नए दोस्त बन जाते हैं। कहते हैं कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं दोस्त जब साथ में खड़े हो जाते हैं। तो साहब दोस्ती है, और दोस्ती इन मौसमों की मोहताज नहीं होती, इनका अपना अलग एक मौसम होता है जो हमेशा के लिए होता है। तो ये गीत दोस्ती के लिए, आप सबके दोस्तों के लिए, और गोल्ड और आपकी दोस्ती के लिए।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

बारिश को एंजॉय करते हुए, गाते हुए, गुनगुनाते हुए, बिल्कुल ये सफ़र जो है वो चल रहा है। और एक बार आपको याद दिला दूं कि इस भीगे भी

5:10 पर वो अब बिल्कुल अपने अंजाम पर पहुंच गया है जी। डेस्टिनेशन हमें नज़र आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अब आपसे विदा लेनी है, अब जाना है, क्योंकि लौट कर फिर आपसे मिलने सीमा वर्मा ने ज़रूर आना है। विमलेश आ चुकी हैं स्टूडियो में, अपने कार्यक्रम की तैयारी कर रही हैं और मुझे इशारा कर रही हैं कि अब तुम सीट से उठोगी तो मैं सीट में बैठूंगी। तो कहने का मतलब ये कि बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। इस मौसम ने कह सकते हैं कि हमारे मूड को बहुत अच्छा कर दिया। और FM गोल्ड सदा ये चाहता है साथियों कि आप शाद रहें, आबाद रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और जब भीगा भीगा मौसम होता है, गर्मी से हमें राहत मिलती है, तो ऐसे में बहुत कुछ दिल में होता है जो बाहर निकलना चाहता है। कई बार बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी अपने से कहना चाहते हैं, लेकिन वो सही समय नहीं होता है, है ना। और कई बार जब ऐसा मौसम होता है और खुशगवार हर तरफ सब कुछ नज़र आ रहा होता है, मुस्कुराते चेहरे नज़र आ रहे होते हैं, तो फिर दिल कहता है कि अब वो बात जो बहुत समय से दिल में दबी हुई थी, अब उसे बाहर निकालना ज़रूरी है, और वो फिर बात कहनी आसान भी हो ही जाती है। तो चलिए फिर अब वादा निभाइए, होंठों पर जो बात है उसे सुनिए और सीमा वर्मा को इजाज़त दीजिए। आप सुनते रहिए FM गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Both the Houses of Parliament were adjourned for the day following uproar by opposition parties on the alleged police action during students' protest over knee tissue. The Lok Sabha was adjourned several times today amid repeated disruptions as Minister of State Dr. Jitendra Singh introduced the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill proposes stricter penalties, including imprisonment of up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, confiscation of properties of convicted offenders, special fast-track courts, completion of investigations within 2 months, and trials within 3 months of filing the charge sheet. Speaker Om Birla and Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged members to allow discussion on the bill, saying 6 hours had been allotted and 91 amendments had been received. The minister expressed concern over the behaviour of opposition parties and said that disrupting discussion on such an important bill sends a very wrong message. In the Rajya Sabha, Minister of State for Home Nityanand Rai moved the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026 for discussion. The bill seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gan Man. The Uttar Pradesh government today informed the Supreme Court that it has set up a 4-member Special Investigation Team or SIT headed by Inspector General of Police for the Lucknow Range, Kiran S., to probe the alleged embezzlement of the donations received by the Ram Temple Trust in Ayodhya. The team will also include a DIG rank officer, a senior superintendent of police, and an additional SP. The top court asked the state government to include a forensic auditor as the 5th member of the SIT, which will submit its first status report within 2 weeks. Meanwhile, a special court in Uttar Pradesh today extended the judicial custody of all 8 accused in the alleged Ram Temple donation theft case by 14 days. The External Affairs Ministry summoned the Ukrainian ambassador, Dr. Oleksandr Polishchuk, following the attack on commercial vessel MV Omorafi, in which an international was killed. The ministry conveyed its serious concern over the incident and condemned in strongest terms such attacks on commercial shipping and highlighted their adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation, and international commerce. Heavy rain continues to affect several parts of the country. In Odisha, a deep depression over the northwest Bay of Bengal has triggered torrential rainfall. The IMD has issued a red warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rain today. In Jammu and Kashmir, a landslide blocked the Jammu-Srinagar National Highway in Udhampur district. Traffic has been partially restored, allowing a fresh batch of 3,823 Amarnath pilgrims to cross. In Doda district, the main bridge was temporarily closed for safety inspection after suspected cracks were noticed. In Assam, the flood situation has improved as waters have receded in most affected areas. Over 37,000 people remain in 109 relief camps. IMD has also forecast heavy to very heavy rainfall over Delhi, Chandigarh, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Vidarbha till tomorrow. 2-time Olympian Sajan Prakash qualified for the men's 200-meter butterfly final after finishing as the 6th fastest swimmer overall in the heats at the Commonwealth Games in Glasgow today. Prakash finished second in behind Scotland's Duncan Scott. Sajan Prakash will now compete in 8 men final slated later tonight. ISSF Shooting World Cup, India's Isha Singh grabbed the gold in the women's 25-meter pistol event in Hangzhou, China today. She upstaged Olympic medalist Manu Bhakkar, who took the bronze to complete a double podium finish for India. Home Minister Amit Shah and Commerce and Industry Minister Piyush Goyal have congratulated Indian shooters Isha Singh and Manu Bhakkar on their impressive performances. Benchmark domestic equity indices rebounded today and closed 1% higher. The Sensex climbed 776 points to close at 76,836, while Nifty rose 229 points

0: to settle at 23,996. And global crude oil prices plunged around 7% today after US and Iran paused military strikes over the weekend. International benchmark Brent crude was trading 7.9% down at $89.11 per barrel in intraday trade. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: आज हम याद कर रहे हैं उस व्यक्तित्व को जिसे दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, पीपल्स प्रेसिडेंट और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में जानती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के सपनों में बस जाते हैं। एक साधारण नाविक परिवार में जन्मे डॉक्टर कलाम, जिसने आसमान को अपनी मंजिल बनाया, एक वैज्ञानिक जिसने भारत को नई उड़ान दी, एक राष्ट्रपति जिसने बच्चों को अपना सबसे बड़ा मित्र माना और एक शिक्षक जिसने आखिरी सांस तक ज्ञान बांटा। तमिलनाडु के छोटे से द्वीप रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम का बचपन किसी राजसी वैभव में नहीं बीता। सुबह सूरज निकलने से पहले अखबार बांटना, स्कूल जाना और रात में पढ़ाई करना, यही उनकी दिनचर्या थी। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी की पढ़ाई की और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे सफर का अध्याय जिसमें भारत के वैज्ञानिक इतिहास की दिशा बदल दी। आइए सुनते हैं इस बारे में इस खास रिपोर्ट में।
3: बचपन में ही डॉक्टर कलाम ने मेहनत का महत्व समझ लिया था। आर्थिक कठिनाइयों ने कभी उनके सपनों की ऊंचाई कम नहीं की। वे अक्सर कहते थे कि जीवन में परिस्थितियां कभी भी आपके भविष्य का निर्णय नहीं करती, बल्कि आपका संकल्प करता है। विज्ञान के प्रति उनका झुकाव लगातार बढ़ता गया और इसी जुनून में उन्हें चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक पहुंचा दिया, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई के दौरान एक घटना अक्सर याद की जाती है। एक परियोजना को समय पर पूरा न कर पाने पर उनके प्रोफेसर ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं हुआ तो उनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाएगी। उस चुनौती ने युवा कलाम को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और तय समय से पहले परियोजना पूरी कर दी। यही अनुशासन और समर्पण आगे चलकर उनके पूरे जीवन की पहचान बना। युवा अब्दुल कलाम भारतीय वायुसेना में पायलट बनना चाहते थे। चयन परीक्षा देने के बावजूद जब उनका चयन नहीं हुआ तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में उन्होंने लिखा कि कभी कभी ईश्वर हमारी योजनाओं को इसलिए बदल देता है ताकि हम अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंच सके। यही असफलता उन्हें वैज्ञानिक बनने की दिशा में ले गई। आइए सुनते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ये शब्द।
4: When I was 23 fellow, that I will become a pilot. Okay? I will become a pilot. So I studied aeronautical engineering. I went to Air Force for pilot. Okay? They did not select me. Okay? Out of 10 fellows, I was a 10th fellow, a selected fellow. 9 seats only they had, I lost it, okay? But when I became the president, I became the supreme commander. I told the chief of the air staff, I want to learn flying. He said, I'm going to give you training. He trained me for 6 months, then I flew SU-30. Message is, dream transforms into thoughts, thoughts result into action.
2: कहते हैं कि सपनों की असली परीक्षा तब होती है जब रास्ता हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन से साबित किया कि असफलता अंत नहीं होती बल्कि नई शुरुआत का अवसर होती है, और यही नई शुरुआत उन्हें उस संस्थान तक ले गई जिसने भारत के अंतरिक्ष इतिहास को बदल दिया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन।
3: वर्ष 1960 का दशक, दुनिया अंतरिक्ष की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा चरम पर थी। इसी दौर में वर्ष 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से जुड़े। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर काम किया। उस समय संसाधनों की कमी इतनी थी कि रॉकेट के पुर्जे कभी साइकिल पर तो कभी बैलगाड़ी में ढोए जाते थे। डॉक्टर कलाम को भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी SLV-3 का परियोजना निदेशक बनाया गया। पहला प्रक्षेपण 1979 में किया गया, लेकिन मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो सका। अगले ही वर्ष 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का ऐतिहासिक मोड़ था।
2: अंतरिक्ष में सफलता ने भारत का आत्मविश्वास बढ़ाया, लेकिन डॉक्टर कलाम का अगला लक्ष्य केवल आकाश तक सीमित नहीं था। अब उनका ध्यान देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली की ओर था। आइए सुनते हैं इस बारे में इस रिपोर्ट में।
3: वर्ष 1982 में डॉक्टर अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO लौटे और हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के निदेशक बने। 26 जुलाई 1983 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, जिसने भारत को स्वदेशी मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई शुरुआत दी। वर्ष 1998 में राजस्थान के पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन परीक्षणों के बाद भारत ने स्वयं को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। डॉक्टर कलाम ने रूस के सहयोग से दुनिया की पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस परियोजना को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई।
2: लेकिन विज्ञान और तकनीक की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उनके व्यक्तित्व में कभी अहंकार नहीं आया। शायद इसी विनम्रता ने उन्हें वैज्ञानिक से आगे बढ़कर एक लोकप्रिय जननेता बना दिया।
3: वर्ष 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने औपचारिकताओं से अधिक संवाद को महत्व दिया। देश के विभिन्न हिस्सों की यात्राओं के दौरान वे विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में छात्रों से अवश्य मिलते थे। इसी कारण उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया। उनका प्रसिद्ध कथन, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते, आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने PURA प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य था कि गांवों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, माई जर्नी और टर्निंग पॉइंट्स जैसी पुस्तकें आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती हैं।
2: एक विरासत जो आज भी जीवित है। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद डॉक्टर कलाम ने स्वयं को पूरी तरह शिक्षण और युवा संवाद के लिए समर्पित कर दिया। 27 जुलाई 2015 को वे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। विद्यार्थियों से संवाद के दौरान ही उन्हें अचानक अस्वस्थता महसूस हुई और वहीं पर उनका निधन हो गया। ये संयोग ही था जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी युवाओं को सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, उसने अपनी अंतिम सांस भी विद्यार्थियों के बीच ली। उनकी जन्मतिथि 15 अक्टूबर पूरे विश्व में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। डॉक्टर कलाम का सपना था एक विकसित, आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक सोच वाला भारत। आज जब भारत अंतरिक्ष अभियानों, रक्षा तकनीक, डिजिटल नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, तब उनकी दूरदर्शिता और भी प्रासंगिक दिखाई देती है। उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि महानता जन्म से नहीं मिलती, बल्कि कठिन परिश्रम, ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा से अर्जित की जाती है। शायद इसीलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का एक स्थायी विचार है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने। तकनीकी सहयोग दिया अरुण देव सिंह ने। नमस्कार।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. Today is Monday and we'll be taking your calls, listeners, on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I am Gaurandhavan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है, जहां हम ताज़ा आर्थिक खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। आज सोमवार है और आपके प्रश्नों को हम सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों के उत्तर देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा शिखरवार। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल जी।
1: और सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आर्थिक सुर्खियों पर।
0: थैंक यू निखिल एंड दीपशिखा, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। A quick look at the headlines before we begin. Benchmark domestic indices surge 1%. Sensex rises almost 800 points. Nifty settles at nearly 24,000. Most Asian stock market indices register gains. And global crude oil prices tumble around 7%.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 1% की बढ़त। सेंसेक्स में करीब 800 अंकों का उछाल और निफ्टी 24,000 अंक के आसपास पहुंचा। अधिकतर एशियाई शेयर बाजार लाभ के साथ बंद हुए और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट।
0: Listeners, before we move into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांकों में आज उछाल आया और दोनों प्रमुख सूचकांक 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 776 अंक ऊपर आकर 76,836 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 229 अंक की तेजी के साथ 23,996 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में भी आज बढ़त देखी गई। मिड कैप सूचकांक में 1.1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.3% का लाभ दर्ज हुआ। इससे पहले भू राजनीतिक चिंताओं में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच बाजार हरे निशान के साथ खुले। निवेशकों के सकारात्मक रुख के कारण सभी सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई, जिससे पूरे दिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर चढ़ते रहे। लगातार बढ़त ने दोनों मुख्य सूचकांकों को लगातार 5 दिन की गिरावट के सिलसिले को तोड़ने में सहायता की।
0: Benchmark domestic equity indices rebounded today and ended 1% higher. The Sensex climbed 776 points to close at 76,836, while the Nifty rose 229 points to settle at 23,996. The broader market at the National Stock Exchange also gained in line with frontline indices. The mid-cap 100 index added 1.1%, while the small-cap 100 index soared 1.3%. Earlier, the markets opened with a gap up amid easing geopolitical concerns and a decline in crude oil prices. Positive investor sentiment fueled broad-based buying across sectors, driving

0: The Sensex and Nifty higher throughout the intraday session. The sustained gains helped both benchmark indices end their five-day losing streak.
1: Sensex में शामिल 30 में से 28 कंपनियों में बढ़त दर्ज हुई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में Eternal में 5.6% से ज्यादा, Indigo में 4.9% से अधिक और Infosys में लगभग 3.7% की तेजी आई. इसके विपरीत HDFC बैंक में 0.4% की गिरावट आई और Axis बैंक मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ.
0: In sectoral indices on the BSE, barring telecommunication, which dipped almost 0.7%, all other sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, mid-small private banks Quality Tilt advanced over 2.3%, IT rose 2.3% and Realty gained more than 2.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,779 companies advanced, 1,579 declined and 200 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 67 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.89 रुपए पर बंद हुआ. दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है. और आज अगर बाजार की चाल पर नजर हम डालते हैं तो पता चलता है कि 5 दिन पिछले सप्ताह में गिरावट का सिलसिला देखा, आज उसमें सकारात्मक रुख नजर आया और अलग अलग हिस्सों से पॉजिटिव खबरें भी मार्केट पर आई हैं. तो इसके अलावा क्या आपको लगता है कैसे सेंटिमेंट्स रहे जिन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ अपग्रेड किया?
2: सबसे बड़ा जो एक फैक्टर निखिल जी रहा है आज बाजार में, जो अगर हम देखें जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आज जो विराम, जो फ्रेश अटैक्स है उस पर विराम अमेरिका ने लगाने की बात की है और ऐसा माहौल लग रहा है कि हो सकता है ये शायद एक ड्यूरेबल एक एग्रीमेंट की तरफ शायद मूवमेंट हो, ऐसी उम्मीद है. और यही उम्मीद जो है बाजार में आपको दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है. उसके अलावा देखिए यूएस फेड का डिसीजन है जो इस हफ्ते कल मीटिंग स्टार्ट होगी, तो इन सारे क्यूज़ को बाजार देख रहा है. अगर आप रिजल्ट्स भी देखें तो वो पॉजिटिव रहे हैं, बेहतर रिजल्ट हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स. तो बाजार जो है वो होल्ड किया हुआ था कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बावजूद, लेकिन जब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस में अगर आप देखें तो वो जब एक सिग्नल आया है तो वो बाजार में उसको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव क्यू मिला आज और वो इसीलिए रिएक्ट इस तरह से किया है.
0: We'd like to share with you listeners once again, we'll be taking market related queries. Our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And while we await listener calls, Deepshikha, you know, we've always been very gung-ho and very positive about the India growth story. And I think, you know, so much is happening across geopolitical tensions and everything. But let's focus a little on the India growth story. So good results, as you said. And I think oil prices, of course, will play a role. Inflation will have its own path to follow. But what about our growth story? Strong as ever?
2: Actually, if you look at the numbers which have been coming out, you know, first quarter beyond expectations, there's a lot of apprehension around monsoon, but there is a slight improvement now. And if you look at the sowing, that also the numbers are much better. So all these we expect will have some impact, positive impact in terms of the growth story that remains intact. And with the easing of West Asia oil prices, definitely, you know, economy, it's a very positive for Indian economy going forward. Expect that it will go as was expected in terms of performance.
0: Right. So the larger picture remains positive, green, and
2: that
0: and
2: is
0: very,
2: what
0: very optimistic.
2: That is what.
0: All right.
2: I
0: and particularly optimistic, keeping global scenarios in mind.
2: Yeah.
0: We have our first caller from Faridabad, Rajiv. Rajiv, welcome. Please ask your question.
3: मैडम, मैं राजीव शर्मा बोल रहा हूँ फरीदाबाद से.
2: नमस्कार राजीव जी.
3: शिक्षा जी, एक मेरे को आप लोगों से शिकायत है. आप लोग किसी भी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हम कंपनी स्पेसिफिक चीजें नहीं लेते, लेकिन आप ही लोग स्पेसिफिक कंपनीज के रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, ऐसा क्यों?
2: राजीव जी, देखिए, हम किसी स्पेसिफिक कंपनी पर एडवाइज नहीं दे सकते. रिजल्ट्स जो है वो एक अनाउंसमेंट होता है पब्लिक के लिए, और खास तौर पे जब लिस्टेड कंपनी होती है तो वो

0: जनरल पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट किया जाता है।
1: राजीव जी, इसमें मैं आपको कंफर्मेशन देना चाहते हैं कि हम आप तक सूचना पहुंचाते हैं, जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा कि आपको क्या
0: जी,
1: करना है।
0: बिल्कुल निखिल जी।
1: देवशिखा जी, अभी जो मॉनसून की बात चल रही थी, जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी कि मॉनसून का परफॉर्मेंस इस बार इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो अभी रिजल्ट्स अगर हम देखें और मॉनसून को देखें, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट आने वाले कुछ समय में कैसा चल सकता है?
0: देखिए, अगर आप मॉनसून देखें, सोइंग देखें, तो सोइंग जो है वो काफ़ी हद तक पिकअप हो कर गई है। मॉनसून का स्प्रेड जो है उतना नहीं था, लेकिन इम्प्रूवमेंट आया है। अब उम्मीद की जाती है कि जो सेकेंड क्वार्टर भी होगा उसका भी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, स्पेशली बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा था कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से थोड़ा प्रेशर रहेगा कंपनीज के ऊपर, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया है, लेकिन उतना असर नहीं आया। तो इस पर फर्स्ट क्वार्टर विल पॉसिबली एक्ट एज अ बेस एंड सॉर्ट ऑफ विल बिल्ड अपॉन इट।
1: इस बीच चेन्नई से हमारे साथ में विक्टर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विक्टर जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
2: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग विक्टर।
2: गुड इवनिंग एंड थैंक यू मार्केट मेंटर टीम फॉर द वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइडेड। My question is regarding gold prices, madam. So, what will be the upward trend or downward trend on the gold prices? Because we have seen a lot of volatility in the gold prices.
0: Yes, Victor. Gold, you know, typically this is not the buying season. If you look at the India, you know, historically, traditionally, I would not get into the prices, but gold still remains a good long-term investment. If and also, you know, just look at your portfolio and how much you can keep. Best percentage is like about 10-15% of your portfolio.
3: Right. We've always, you know, throughout the Market Mantra series that we've said, always said have a diversified portfolio.
0: Exactly.
3: And one of the diversifications is gold.
0: Gold.
3: You know, nor do we say only have small cap, only have mid cap. So diversify so that it hedges you against different
0: fluctuations. You know, if there is a geopolitical, you know, crisis that we saw, or, you know, inflation, the gold will act as a hedge in future.
1: Deepshika, अभी mid cap और small cap की हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि लगातार उसमें भी गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन आज जैसे खरीदारी बड़े पैमाने पर हुई तो mid cap और small cap में भी हमें उछाल देखने को अच्छा खासा मिला है। तो ये राहत का एक कह सकते हैं कि असर है, या मतलब राहत की बात है क्या? अभी भी इसमें वोटैलिटी हमें देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं?
0: निखिल जी देखिए, जिस समय तक वेस्ट एशिया में क्राइसिस, ये जो है इसमें एक बहुत कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है परमानेंट, तब तक थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। और सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है उसके लिए सेंसिटिव जो है आपका स्मॉल एंड मिड कैप ही रहता है। तो अगर स्टेबिलिटी वहाँ आ जाती है, एक ड्यूरेबल पीस एग्रीमेंट कुछ हो जाता है, तो इसमें हम देखेंगे कि ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये उतार चढ़ाव कुछ समय तक रहेगा अगर पीस नहीं होता है।
3: राइट। सो दीपशिका, यू नो व्हेन वी टॉक ऑफ वॉलेटिलिटी एंड यू आर सेइंग दैट इट्स बाउंड टू बी देयर, बट इज देयर समथिंग कॉल्ड रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी?
0: सो यू नो, इफ यू लुक एट, इफ tomorrow you know the pause is lifted, there's again a crisis, there would definitely, it won't be range bound. So what I'm saying is, if you have a durable piece in West Asia, if it is durable enough and we've seen good corporate earnings, then definitely mid and small caps will show a good movement. But this volatility, I can't say will be like range bound, especially because there is uncertainty in West Asia, on West Asia count.
3: So uncertainty filters down everywhere.
0: Everywhere.
3: And I think somewhere trying to fix it, put a fine, where is the method in that? Uncertainty is uncertainty.
0: Uncertainty, right. Yes.
3: Yeah. Right. We have a next caller from Gurugram, Tarun. Tarun, welcome. Please ask your question.
4: Hi, good evening. My question is, with respect to the diversification in the mutual fund portfolio, which of these two options is a better option? Investing in directly into a gold mutual fund, or investing in the gold through a diversified or a liquid mutual fund?
0: I think it is best to keep a very best to maintain a balance.
3: Right. In fact, you know, Tarun, and this is what a lot of experts also believe, that balance is the key. So if you're saying which is the best, both of them have their pros and cons, and our mutual fund experts invariably will share those with you, have been over the past few programs. But if you are a particular kind of a fund suits you, I think

0: You need to sort of have a diversified portfolio, maintain, keep a very balanced approach towards it.
1: Right.
2: दीपशिका, भी मार्केट की अगर हम बात करें तो देखा गया है कि लगातार कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, और जो ऐसे सेक्टर्स थे जो कहीं रुक रहे थे उन्हें भी एक ग्रोथ मिल रही है. तो अभी हमारी जितने मतलब इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसीज़ की जब बात करते हैं, एक ग्रोथ रेट जिसका हम बढ़ाते रहते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिससे सभी को एक पॉजिटिव वे मिले आगे बढ़ने के लिए. आपको लगता है कि जो छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं लोग, उनको थोड़ा सा अगर वो सस्टेन करते हैं चीज़ों को तो उनको बड़ा मुनाफा मिलता है?
0: देखिए, छोटी कंपनी में अगर निवेशक निवेश करता है, एक वो रिस्क उसमें ज़्यादा होता है, एक रिस्क एपेटाइट रहता है. तो जैसा कि मैं हम लोग बातचीत कर रहे थे कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखना आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो बेस्ट रहता है. आपका रिस्क एपेटाइट अगर ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको रिटर्न उसी हिसाब से ज़्यादा मिले. बट छोटे निवेशक हैं, बेहतर उनके लिए ये होता है कि वो रिस्क ज़्यादा ना लें
2: जी.
0: तो उनका जो बेट है वो ऐसी कंपनीज पे रखें जिनका स्टेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, देखें उसको, उसके परफॉर्मेंस देखें और तब घुसें उनमें.
2: और इस बीच भोपाल से शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं. शंकर, आपका प्रश्न पूछिए.
3: नमस्ते मार्केट पंथरा टीम.
0: नमस्ते शंकर जी.
3: मैडम, माय क्वेश्चन इज अबाउट इन्फ्लेशन. Government declares inflation or whatever, RBI tries to control the inflation, but our real life inflation looks to me very high, and banks deposits for our senior citizens are never able to cover up the losses, or it never actually gives beyond the, it gives always less than inflation. So how what is the solution for us to senior citizens? But equity is one thing, but we are not in a position to take much risk. So where should we invest so that we are at least not at loss in FD, bank FDs? Thank you.
0: Shankar ji, this is a question which actually is a big dilemma for policy makers also. You know, when interest rates rise, they benefit the investors who have deposits in banks or who are earning interest on their income. But it is also, it pinches those who have taken loans, who are also, who can be middle class savers, who have taken home loans or some other loans. But yes, from investment point of view, definitely inflation is always seen as a tax. It affects not just savers, but everybody else, even those who are going to purchase or households. Better would be to have a diversified portfolio. So you can also look at other investments, just not bank FDs, but go beyond. And which is why we keep advising people to have a diversified portfolio so that both your risks and returns are well balanced and met with.
2: दिल्ली से अगले श्रोता है नितिन हमारे साथ में. नितिन जी, आपका सवाल पूछिए.
4: जी नमस्कार जी.
0: नमस्कार नितिन जी.
4: नमस्कार. मैं मतलब कि ये पूछना चाहूँगा, जैसे हम गोल्ड और सिल्वर का रेट बताते हैं, तो जो उसका प्योर सोना होता है उसका रेट कुछ मार्केट में खरीदने लगते हैं तो इससे रेट से ज़्यादा मिलते हैं, ऐसा क्यों? और दूसरा, सिल्वर का जो चांदी के जो बर्तन खरीदते हैं तो वो भी चांदी के बर्तन प्योर नहीं मिलते, उसमें भी 50% के करीब मिलता है. इसके लिए हम इस क्या चीज़ चेक करें कि जो हमारे को चांदी और सोना, सोना तो फिर भी ठीक है, चांदी के जो बर्तन खरीदते हैं आने वाले समय में बर्तन खरीदारी करते हैं तो वहाँ ये बर्तन हेराफेरी कर देते हैं, इसके लिए क्या उपाय है?
0: नितिन जी, आपके इस लाइन पे बहुत शोर आ रहा था, बहुत क्लियरली आपका जो सवाल है वो समझ नहीं आया, लेकिन जितना मुझे समझ आया आप ये जानना चाह रहे थे कि चांदी के बर्तन जो हम खरीदते हैं बहुत प्योर नहीं होते हैं, इनको खरीदना चाहिए या नहीं. देखिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, कहते हैं ना तो ज्वेलरी खरीदिए ना बुलियन में आप इन्वेस्ट करिए, तो चांदी का अगर आप प्योर उसमें खरीदेंगे तो आपका एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो वो बेस्ट होता है. लेकिन आप इस्तेमाल के लिए अगर खरीदना चाहते हैं या आगे गिफ्ट के लिए लेना चाहते हैं तो आप देख करके लें कि जो ज्वेलर आपको बेस्ट दे रहा है, जो आपके विश्वास

0: है और सर्टिफिकेशन कुछ आपको उसकी गारंटी दे रहा है।
1: इसमें एक चीज उन्होंने और पूछी थी कि इन चीजों का बफर स्टॉक कर सकते हैं हम, या जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों में से क्या प्रॉफिटेबल है?
0: नहीं तो जैसा कि मैंने कहा, ये बर्तन वगैरह ठीक है, आगे अगर दाम बढ़ेगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन प्योर अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप बुलियन में कीजिए, मतलब उसके बिस्किट खरीदिए या कॉइन्स खरीदिए। बर्तन में आपका वेस्टेज बहुत हो जाता
1: जी
0: है।
2: राइट, डिपेंड्स ऑन द पर्पस कि किस पर्पस
0: हाँ
2: के
0: किस
2: लिए आप
0: पर्पस से,
2: खरीद रहे
0: अगर
2: हैं।
0: आप आगे देना चाहते हैं या आगे
2: जी
0: रिटर्न के लिए, शादी ब्याह के लिए लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका मेकिंग चार्जेस, आपका बाकी सब भी बढ़ रहा है, तो
2: तो
0: आप वो
2: उतने
0: खरीद
2: प्रोपोर्शन में
0: के
2: नहीं
0: उतने
2: बढ़ेगा
0: प्रपोर्शन
2: जितना।
0: में, हाँ,
2: जी
0: तो आप वो खरीद के रख सकते हैं।
2: जी
0: जी
2: भिलाई से वी हैव रवि। रवि स्वागत है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
3: नमस्ते, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
2: गुड इवनिंग
0: नमस्कार
2: रवि।
3: मैडम, मुझे जानना है।
1: आई थिंक उनसे हमारा संपर्क टूट गया है किसी वजह से।
2: द कॉल ड्रॉप्ड बट मीन वाइल वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेल टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। द कंपनीज स्टैंड अलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज अराउंड 25.3% ईयर ऑन ईयर टू 5,533 करोड़ रुपीज। बेल स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय नियरली 8.2% टू ओवर 1,048 करोड़ रुपीज ऑन एन एनुअल बेसिस।
1: आगे बढ़ते हैं। प्रमुख एशियाई शेयर बाजार सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.1% से अधिक ऊपर आ गया। हांगकांग के हैंगसिंग इंडेक्स और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1% की तेजी देखी गई। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में लगभग 0.6% उछाल आया और जापान का निक्केई 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ ताइवान का ताइएक्स मामूली रूप से नुकसान में रहा। यूरोपीय शेयर बाजार की बात करें तो आज प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक जर्मनी का डेक्स 1.7% से ज्यादा ऊपर पहुंच गया। फ्रांस का कैक 40 1% के लाभ में था और लंदन के फुटसी 100 में 0.6% उछाल देखा गया। देव से कहा, लास्ट वीक में जब हमने देखा तो एशियाई मार्केट्स में पहले सकारात्मक रुख देखा गया, उसका फिर गिरावट का रुख आया, अभी फिर बहुत ज्यादा उछाल नहीं लेकिन एक बैलेंसिंग उछाल देखने को मिला है, तो ये जियोपॉलिटिकल असर रहा इस पर या मार्केट का कुछ असर रहा?
0: देखिए, जियोपॉलिटिकल असर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है आईटी कंपनीज के अर्निंग्स को लेकर के बेहतर अर्निंग्स आए कुछ अमरीकी कंपनियों के, जो लार्ज टेक कंपनीज हैं, उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट, खासतौर से अगर आप देखें कोरियन बाजार जो है, जो पिछले समय काफ़ी गिरावट उसमें देखी गई थी, तो वहाँ ये थोड़ा सेंटिमेंट बेहतर हुआ है।
1: सिंगापुर की अगर बात करें तो वहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के बड़ा ही एक बैलेंस्ड रवैया अपनाया जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर डॉलर का जो पेमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा उनको नुकसान ना हो, इसका भी असर पड़ सकता है मार्केट पर?
0: बिल्कुल, ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, हर देश जो है अपना जियोपॉलिटिकल जो असर है वेस्ट एशिया क्राइसिस का, उसको मैनेज करने के अलग अलग तरीके देख रहा है, तो सिंगापुर में भी ये कोशिश की गई है, उसका भी असर डेफिनेटली उनके बाजार पर दिखाई दे रहा है।
2: सो दीपशिखा, व्हेन वी सी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट वॉलेटिलिटी अर्लियर एंड व्हेन वी सी फ्लक्चुएशंस ऑफ वॉलेटिलिटी इन इंडियन मार्केट एंड अदर एशियन एंड अदर मार्केट्स, डू यू फील दैट बिकॉज ऑफ इंडियाज डिपेंडेंस ऑन क्रूड इम्पोर्ट्स, द व्हाट्स हैपनिंग इन द गल्फ रीजन इज लाइकली टू इफेक्ट आवर मार्केट्स मच मोर देन द अदर्स?
0: एब्सोल्युटली गौरांग, इंडियन मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी, वी आर लार्जली इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर आर क्रूड रिक्वायरमेंट्स एंड वी सॉ यू नो हाउ रुपी केम अंडर प्रेशर, वी हैड पुल आउट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, दे हैव नाउ बिगन टू कम इन, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द इंडियन मार्केट्स। सो डेफिनेटली इफ समथिंग रियली सिवियर, लाइक आई सेड अर्लियर, इफ the conflict resolves, if you have a durable resolution to the conflict in West Asia, it would be a great positive for the Indian market. But definitely if it goes into crisis mode, if there are more complications and crude spikes, it's again a big negative for India, much more than other countries.
2: From Jaipur we have Jitendra, now our next caller. Jitendra, welcome, please ask your question.
4: मैडम, जैसे अभी प्राइवेट बैंक के 5-6% शेयर जो है डाउन हुए थे, तो मैंने निफ्टी 50 से जो है एक दो परचेज किया और हर एक महीना करूंगा, तो ठीक है क्या मेरा करना?

0: प्राइवेट बैंक का।
1: जितेंद्र जी, फाइनेंशियल सेक्टर खासतौर पे जो बैंक्स हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रह रहा है, उनकी एसेट क्वालिटी भी बहुत बेहतर रही है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है फाइनेंशियल सेक्टर का परफॉर्मेंस जो है आगे भी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में बेहतर रहने की उम्मीद है।
2: एंड इफ देयर इज, अगर पहले बैंकिंग सेक्टर आपके पास नहीं है और आपने लिया तो
1: डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा।
2: We have now to take a look at the crude oil prices. Global crude oil prices plunged around 7% today after the United States and Iran paused military strikes over the weekend. Brent crude was trading 7.6% down at $89.43 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 6.8% down at $83.26 per barrel when reports last came in. So again, Deepshikha, we were talking, and as you said, because of the pause, I think crude oil is down today, and so there is movement. But this has been quite a substantial movement in the downward direction.
1: Absolutely, because if you look at, you know, OPEC is also sort of, they've not pulled back on the production. There's Venezuela also adding to the market. So there is crude available. So despite, if you look at, you know, last, not when the crisis was like at its peak, but after that, crude has sort of stabilized. So unless, you know, something really drastic happens, we expect the crude to remain stable in this range possibly. Again, you know, I qualified it.
2: I know. It's absolutely understandable, because these are just opinions, and, you know, I think based on your experience and also, you know, trying to moderate a path, because we really don't know what's going to happen.
1: Yeah, exactly.
2: Next caller from Bhilai, Ravi. Ravi, welcome. Haan, please ask your question.
3: Good evening. Mutual fund only portfolio management service karke aaj kuch ek SEBI ne kuch naya decision liya, uska investors pe kya impact hoga, kya fayda hai uska? Thank you.
2: So Ravi, we have a special program on mutual funds, and I think it's an important decision. We would request you to tune in to our mutual fund program, and there the expert will come and give you exactly the advice that you want, because we don't have much time. That's why we would really value your time also, that you get the expert from the best expert, which is a mutual fund expert.
4: दीपशिखा, हमने देखा कि लास्ट वीक में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 तक पहुंची, उसके बाद अब लगातार ये गिरावट का रुख दे रहे हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो इस महंगाई और चालू खाते के घाटे के संदर्भ में अगर देखें तो कैसा आपको लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी और उसका असर नो डाउट मार्केट पर जरूर पड़ेगा?
1: बिल्कुल, देखिए, इन्फ्लेशन पर तो बहुत ही पॉजिटिव असर होगा, क्योंकि क्रूड गिर रहा है, बराबर हमारा आयात बहुत ज़्यादा होता है, और करंट अकाउंट के लिए भी आपने जो पूछा उसके लिए भी एक बहुत पॉजिटिव है क्रूड का गिरना।
2: In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading nearly 0.7% up at 1,44,750 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.7% up at 2,24,510 rupees per kilogram a short while ago.
4: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.6% बढ़कर 1,43,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.8% की बढ़त के साथ 2,23,862 रुपए पर थी। दीपशिखा जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद निखिल,
2: थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टू आवर प्रोग्राम। Listeners, before we close, a quick look at the headlines once again. Benchmark domestic indices surge 1%. Sensex rises almost 800 points. Nifty settles at nearly 24,000. Most Asian stock market indices register gains. And global crude oil prices tumble around 7%. And that's all in today's program. Till next time, namaskar. Namaskar.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर तचंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सेंडर पालिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हुई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सख्ती की नई पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व सदस्य और शिक्षाविद प्रोफेसर सुषमा यादव, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। और ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण कानून 2024 में संशोधन करेगा। ये विधेयक का परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं शिक्षाविद और UGC की पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव। प्रोफेसर यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
2: धन्यवाद और सबको नमस्कार।
1: प्रोफेसर यादव, जो ये विधेयक आज पेश किया गया लोकसभा में, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप वर्तमान परिदृश्य में कैसे आंकती हैं? किस तरह से हमारे ये पब्लिक एग्जामिनेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है?
2: जी देखिए, एक तो सबसे पहले अगर मैं बात कहूँ तो अभी जो हम युवा पीढ़ी को थोड़ा असंतुष्ट, थोड़ा परेशान, एजिटेटेड देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से, और प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार इसको रोकने में पीछे नहीं हटेगी, ये उस आश्वासन की तुरंत पूर्ति है। लेकिन यह संशोधन विधेयक है, सरकार 2024 में भी पहले ये विधेयक ला चुकी है, और क्योंकि उसके बाद भी प्रश्न पत्र लीक हुए और एक नहीं अनेक स्थानों पर लीक हुए, और उससे बच्चों का विश्वास इन परीक्षाओं से लगभग उठने लगा था, इसलिए यह विधेयक संशोधन आया है। और विशेष तौर पर यह सार्वजनिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले कदाचार, धोखाधड़ी, अनुचित साधनों के प्रयोग पर प्रभावी रोक लगाने का उद्देश्य रखता है
1: जी।
2: और परीक्षा प्रणाली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल अगर आप देखें अपने आसपास तो युवा को बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। उनकी भी गलती नहीं है अगर वो कहीं असंतुष्ट होते हैं तो, क्योंकि एक तो वो जो आप परीक्षा पास करते हैं अपनी डिग्री के लिए, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कहीं प्रवेश परीक्षा है, कहीं प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सार्वजनिक नौकरियों के क्षेत्र में हो
1: जी।
2: इसलिए शिक्षाएं महत्वपूर्ण है। तो इस परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना, निष्पक्षता लाना और सबसे बड़ी बात उसमें विश्वसनीयता लाना, ताकि यह पीढ़ी उन पर विश्वास कर सके, ताकि प्रत्येक प्रतियोगी और अभ्यर्थी को समान अवसर मिल सके, यह इस विधेयक का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है
1: जी।
2: साथ ही यह रोक लगाने का भी काम करना चाहता है, नकल पर रोक, प्रश्न पत्र के लीक होने पर रोक, क्योंकि वो बड़ी गंभीर चुनौतियां बन गई हैं इस समय, और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, मतलब मुझे तो बहुत ही कड़ी लग रही थी ये कार्रवाई जब मैंने इन प्रावधानों को पढ़ा, क्योंकि बेईमानी करते समय थोड़ा डरे व्यक्ति
1: जी
2: कि मैं जितना कमाऊं इसमें से उससे अधिक मेरा दंड में लग जाएगा, यह शायद एक भय उनके मन में ये विधेयक लाना चाहता है। और फिर एक इम्पर्सोनेशन बहुत बढ़ने लगा है, जो ये हमारी युवा पीढ़ी है आसानी से चीजें प्राप्त भी करना चाहती है, तो मैं नहीं मेरी जगह ये परीक्षा दे ले, विशेष तौर पर दोज हु कैन अफोर्ड इट, उस पर भी सख्ती से रोक लगाने की बात है और दोनों को सजा देने की भी बात। फिर अब मात्र ये व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया है, जब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, एक प्रकार से ये पूरी इंडस्ट्री बन गई है, तो संगठित शिक्षा कदाचार भी बड़ी समस्या है और बड़ा अपराध भी हो गया है। तो यदि कोई गिरोह या संगठित समूह प्रश्न पत्र लीक कराए, नकल में या परीक्षा में धोखाधड़ी जैसी गतिविधियां आरंभ करे या उनमें शामिल हो जाए, तो उसके विरुद्ध यह विधेयक संगठित कड़ी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई करने की बात करता है
1: जी। बिल्कुल,
2: उसका उद्देश्य ये भी है, अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा, मेरिट पर आधारित चयन को प्रोत्साहन, और परीक्षा संस्थाओं की जवाबदेही या उत्तरदायित्व सुरक्षित करना भी इस विधेयक का उद्देश्य है।
1: बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है पब्लिक एग्जामिनेशंस का, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, उसमें पारदर्शिता लाना, उसमें जिस तरह का चैलेंजेस हमने हालिया दिनों में देखे हैं वो फिर ना उत्पन्न हो, और उत्पन्न हो तो उनका तुरंत निवारण हो, उस संदर्भ में जिस तरह से आपने एक तो आपने जिक्र किया कि जो जेल टर्म्स हैं या जो

0: जुर्माना है उनको काफी हद तक बढ़ाया गया है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या इंस्टीट्यूशंस हों, हर एक कैटेगरी में उनको बढ़ाया गया है ताकि एक डर हो ऐसा कुछ भी ऑफेंस करने से पहले, जो हमारे सारे लाखों छात्रों को प्रभावित करता है। और दूसरा, जो जिस तरह से जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, उसको त्वरित करने की जो बात की गई है, उसको एफिशिएंट बनाने की बात की गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बात की गई है और उसमें डे टू डे बेसिस पर, ये नहीं कि दो या तीन हफ्ते बाद की तारीख होगी, डे टू डे बेसिस पर ट्रायल्स, और वो 3 महीने में उन ट्रायल्स को पूरा करना, इस एस्पेक्ट को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए, बिल जो है ये कहता है कि जो कोर्ट्स होंगे वो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में काम करेंगे, विद डे टू डे हियरिंग, ट्रायल्स टारगेटेड टू कंक्लूड, 3 महीने के अंदर वो समाप्त हो जाएं, चार्जशीट होने के, और एक सेंट्रल स्पेशल टास्क फोर्स की भी बात करता है ताकि हाई स्टेक्स पेपर्स लीक जो होते हैं या इंटर स्टेट और क्रॉस स्टेट पेपर लीक जो होते हैं, अंतर्राज्यीय होंगे, उनको ये देख सके और उन माल प्रैक्टिसेस को देख सके, और साथ ही स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूटर्स की भी बात करता है हु आर डेडिकेटेड टू एग्जामिनेशन माल प्रैक्टिस केसेस, और बात भी है, एक नया अपील मैकेनिज्म की भी ये बात करता है कि किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सके डिवीजन बेंच और हाई कोर्ट में या फिर हायर कोर्ट में विद इन 3 मंथ्स ऑफ एडमिशन, क्योंकि आप ये प्रायः ये माना जाता था जो सिविल केसेस होते हैं भारत में
0: जी,
1: उन सिविल केसेस में कोई जल्दबाजी करता ही नहीं है
0: जी,
1: और जब तक आप पुलिस को भी संतुष्ट कर लें तो फिर वो और भी देरी हो जाती है, और आप जानते हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है उसमें यदि संगठित गिरोह हो तो बड़ी आसान व्यवस्था को भी प्रभावी कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो डिले तो कर ही सकते हैं। अब इसमें यदि डिले होता है तो नेचुरली बच्चों के तो साल जा रहे हैं ना
0: जी,
1: उनका हर साल, उनका हर महीना महत्वपूर्ण है, उस रूप में ये एक बहुत त्वरित न्याय का आश्वासन देने वाला कानून है, विधि है, और संशोधन भी ऐसे ही किए गए हैं ताकि जो पुरानी हमने देखी थी कहीं कहीं ढील है उस विधि में या कानून, उसको दूर किया जाए और बच्चों को और युवा पीढ़ी को, और मात्र युवा पीढ़ी को नहीं, उनके माता पिता को भी, पूरे समाज को ये विश्वास हो कि पेपर लीक की समस्या या नकल रोकने की समस्या कोई छोटी सी समस्या नहीं है, एक बड़ा अपराध, उसको बड़े अपराध में देखा जाए, यह इस विधि का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसकी सजा भी बढ़ाई है, देखिए 3 से 5, पहले वो 5 से 10 साल कर दी है, उससे भी अधिक जो फाइन बढ़ाया है वो तो बहुत ही अधिक बढ़ा दिया गया है, यानी डिटरेंस के रूप में, निवारण के में, निवारक प्रभाव ये पैदा करे, यह इसका उद्देश्य है, और प्रक्रियाओं में देरी भी कम होगी। लेकिन एक बात यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, भारत संघीय व्यवस्था है, ये रखा गया है कि स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूटर्स हों राज्यों में भी, यूपीज में भी, अपील मैकेनिज्म भी मजबूत हो, और साथ ही साथ सभी राज्य सरकारें भी इस प्रकार की कानून यदि पास करेंगी तो सच में इसका अर्थ युवाओं के लिए और पूरे समाज के लिए, और समाज के बाहर मैं कहूंगी राष्ट्र के लिए, बस बन पाएगा।
0: जी बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि जब जुर्माना बढ़ाया जाता है या जो जेल सेंटेंस है उसकी अवधि बढ़ाई जाती है तो एक डेटरेंट के रूप में काम करता है, एक तरह से आपको जैसे एक डर होता है कि आप ये ऑफेंस ना करें या आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे इंडिविजुअल्स के लिए आपने जैसे अभी बताया पनिशमेंट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के लिए भी है, जो मिनिमम सेंटेंस है वो पहले 5 वर्ष था अब 7 वर्ष है, और पहले 1 करोड़ जुर्माना था उसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है जी, और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी उनको कहा है कि उन्हें आपको 4 साल के बजाय 8 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा पब्लिक एग्जाम कंडक्ट करने से। ये आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर लेवल पर जो है इस तरह की रोकथाम लगाई जाए?
1: जी, इसका मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि अभी जिस प्रकार का विशाल और विस्तृत परीक्षा व्यवस्था हमारी बन गई है, ये पूरी संस्था बन गई है, तो उसमें जो संस्थाएं परीक्षा करवाती हैं वो नेचुरली अपने आप में पर्याप्त नहीं होती, और उनको बहुत सारे सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा CUET में, नीट में, नेट में, सभी में बहुत सारे, और इवन फॉर UPSC फॉर दैट मैटर, तो इन सभी में हमें बहुत सारे सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता होती है, और उसमें प्रिंटिंग, डिजिटल सेवाएं, तकनीकी सहायता, परिवहन, अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली बहुत सी एजेंसियां इसमें भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब उनकी मिलीभगत से, उनकी लापरवाही से, उनके लालच से, उनकी ग्रीड से कहीं भी इस सेवा में बाधा आ सकती है। इसलिए उन सेवा प्रदाताओं को भी इसमें उत्तरदायी बनाया गया है और उनके लिए भी निवारक प्रभाव कठोर दंड से पैदा करने का प्रयास किया गया है। नहीं तो ये मान लिया जाता है कि हमारा क्या, वी वर ओनली सर्विस प्रोवाइडर्स, और अभी तक उनको कोई सोचता भी नहीं था, उनकी भी जिम्मेदारी की गई है। और एक चीज जो अभी तक मैं भी नहीं कह पाई हूँ, तो साइबर अपराध जो इसमें अब शामिल हो गए हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल तकनीकों का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं
0: जी,
1: तो डेटा सुरक्षा, सर्वर सुरक्षा, इंक्रिप्शन, डिजिटल निगरानी, इन जैसे उनकी भी आवश्यकता पड़ गई है। क्योंकि साइबर अपराध मात्र राशि के क्षेत्र में या पैसों के क्षेत्र में नहीं बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध जहां जहां हम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, वहां वहां ये बढ़ते जा रहे हैं। अब भी हम डिजिटल सेवाओं की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन भी यहां देना चाहती हूं कि हमें सरकार ने वादा किया है कि अगली बार से ये कंप्यूटर पर होंगी परीक्षाएं, तो वहां भी हमें डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, इनकी विशेष प्रावधान बनाने होंगे, रखनी होगी, इनका ध्यान रखना होगा। क्योंकि मशीन अपने आप में तो कुछ नहीं करती, लेकिन मशीन को यूज करने वाले, मशीन का रख रखाव करने वाले तो व्यक्ति ही होते हैं, संस्थाएं ही होती हैं। तो उन संस्थाओं में और उन व्यक्तियों में भी अंततः इस विधि का, इस कानून का डर हो, भय हो। और साथ ही साथ इससे भी बड़ी बात, अगर आप थोड़ा और समय दें मुझे, तो इससे भी बड़ी मैं कहना चाहती हूँ, ये तो विधि है, ये दंड है, ये अपराध है और उसको रोकने की व्यवस्था है, परंतु इन सब से बड़ी नैतिकता है। जब तक वो नैतिकता व्यक्तियों और संस्थाओं में नहीं आएगी, और एक शिक्षाविद होने के कारण मैं भी अपराधी महसूस करती हूँ कई बार स्वयं को, क्योंकि जो पीढ़ी निकाली है, ऑल्दो ये पीढ़ी हमारे बाद की पीढ़ी है, जो पीढ़ी रहे हैं उसमें नैतिकता और शॉर्टकट चुनने की जो एक इच्छा हमेशा बनी रहती है, उस इच्छा से मुक्ति, ये जब तक हम बच्चों में नहीं लाएंगे, और माता में बड़े स्वप्न देखने की इच्छा और उन स्वप्नों को बच्चों के माध्यम से पूरा करने की इच्छा, वह भी बच्चों आकांक्षाएं हैं, वो सपने हैं वो, लेकिन उन सपनों से भी कहीं ना कहीं बच्चों पर भार पड़ता है, और फिर ये सब कर एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करते हैं जहां अपराध होते हैं, पेपर लीक, नकल करना आसान लगता है, इम्पर्सोनेशन क्राइम नहीं लगता, अनैतिक नहीं लगता, और अंततः कोई भी शॉर्टकट मिल जाए, चाहे वो पैसे के माध्यम से मिले, चाहे वो प्रभाव के माध्यम से मिले, हर व्यक्ति उस तरफ चलना चाहता है। तो बच्चों को इनसे भी रोका जाए, माता पिता भी पर बोझ ना डालें, तो मैं समझती हूँ अपराधों से मुक्ति अधिक आसानी से मिल सकती है।
0: आपने बहुत ही एक गंभीर बात कही और बहुत ही अहम पहलू है इस पूरे जो प्रकरण है उसका। एक और मैं आपका जो ध्यान जिस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी, आज सुबह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सभी एमपी से अपील किया था कि जो भी विपक्ष के हों, पक्ष के हों, सब जो डिस्कशन है एग्जाम रिफॉर्म बिल पर, उसमें हिस्सा लें, अपनी ओपिनियंस दें, और उनके आधार पर जो है, जो व्यवस्था है वो और ज्यादा मजबूत बनेगी, उसमें जो भी अगर हम कुछ और चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे तो उनको भी पूरा तरह से कंसिडर किया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये एक जिम्मेदारी सारे सांसदों की भी बनती है कि वो इस पर एक मीनिंगफुल डिस्कशन करें विदाउट डिस्ट्रप्शन?
1: जी बिल्कुल बनती है। देखिए, ये राजनीतिक विषय तो हो सकता है
0: जी,
1: लेकिन इस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट डू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ दिस, क्योंकि ये बुनियाद जरूरत है और बुनियादी अधिकार भी है, और उस बुनियादी अधिकार की सुरक्षा और सब तक उसे पहुंचाना सभी सांसदों का, संपूर्ण सरकार का, हमारी पूरी विधायिका का कर्तव्य है।
0: सुषमा जी, लोकसभा में आज पेश लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर इस समग्र चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद और सबको नमस्कार एक बार फिर।
2: अभी आप सुन रहे थे लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सख्ती की नई पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व सदस्य और शिक्षाविद प्रोफेसर सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और ये वक्त है सांझ ढली का। सांझ ढली में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

जी हाँ, इधर तो घटा उमड़ भी गई, बरस भी गई और हम भीग भी गए। जी हाँ, बहुत खूबसूरत सा ये समा है इस वक्त, और इस समा में बेहतरीन सा प्रोग्राम सांझले, जिसमें बेहतरीन से नगमे हम आपको सुनाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो नगमे हम लेके आए, वो नगमे हम आपको सुनाएं जो आपके दिल तक उतर जाएं और आपको ऐसा लगे कि अच्छा

जी हाँ, कितना प्यारा सा नगमा था ना ये, और कितने साधारण शब्दों में अपने दिल की बात इस गीत ने दोहराई, गीत ने सभी को बताई, है ना। और कुछ भी हलचल नहीं थी, बस अपने मन की बात बहुत साधारण तरीके से इस गीत में बोली गई, कही गई, हम तक पहुंचाई गई। कितना प्यारा सा, बिल्कुल सरल सा। जी हाँ, ऐसे ही सरलता हमेशा हमेशा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि सरलता में ना बड़ी सच्चाई होती है, और जो बनावटी चीज़ें होती हैं अक्सर अलग दिख जाती हैं। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि सच्चे रहिए, साधारण रहिए और निर्मल रहिए। कोशिश करें कि इस तरह का स्वभाव रखें कि दूसरों के दिल में तुरंत दस्तक दे जाए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
4: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
3: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
4: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
3: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
5: जी हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले आपने जो गीत सुना, फिल्म गीत गाया पत्थरों से था, और अभी जो आप गीत सुनेंगे वो फिल्म बावर्ची से है।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो।

0: ना कैमरा नई लाइट्स,
1: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
0: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
1: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
0: आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू दे

0: की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा पार्षद सत्य शर्मा अध्यक्ष और सत्यपाल सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली नगर निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ किया। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माली बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्रवाई में सहयोग करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: 3 मई को हुए नीट यूजी पेपर लीक के आरोपों के कारण उसे रद्द करने और दोबारा नीट परीक्षा कराने की घोषणा के बाद राष्ट्रीय जनता दल सांसद सुधाकर सिंह की एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि वह देखेगी कि सरकार की ओर से नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में बनाई गई हाई पावर टास्क फोर्स नीट परीक्षा को ऑनलाइन कराने के बारे में क्या सुझाव देती है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि कुछ अलग तरह के सुझावों की जरूरत है, खासकर तब जब नीट परीक्षा को फिजिकल मोड से ऑनलाइन मोड में बदला जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता का विश्वास सुशासन सुधारों और प्रभावी क्रियान्वयन पर आधारित है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में श्रीमती गुप्ता ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा जैसे पहलों से सरकार लगातार काम कर रही है।
4: जिस तरीके से पेपर लीक केस में स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई और केवल बनाई नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें निर्णय लेना होगा और मुजरिम को सजा दिलवानी होगी। इसी लोकसभा के सत्र में ये सख्त कानून लेके आया जा रहा है। 10 साल तक की कड़ी जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, और भविष्य में कभी पेपर लीक ना हो इसलिए ये एग्जाम अब CBT के माध्यम से करवाया जाए।
2: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विद्यार्थियों से नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनने का आह्वान किया। दक्षिण जिला नवाचार परिषद प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए श्री सूद ने कहा कि उद्यमिता, नवाचार और आत्मनिर्भरता ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। दिल्ली सरकार ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जहां छात्र स्कूल स्तर से ही नवाचार और रिस्क लेने की भावना विकसित कर सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। एक रिपोर्ट।
5: पिछले वर्ष 22 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को मुख्य याचिका के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय के 16 दिसंबर के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने के आवेदन पर भी नोटिस जारी किया था। निचली अदालत ने कहा था कि इस मामले में निदेशालय की शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनन अनुचित नहीं है क्योंकि ये FIR पर आधारित नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ दिवंगत कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस

0: सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हासिल की। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा पार्षद सत्य शर्मा लगातार दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। वहीं भाजपा पार्षद सत्यपाल सिंह उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। एक रिपोर्ट।
2: पदभार ग्रहण करने के बाद सत्या शर्मा ने कहा कि उनकी कार्य योजना स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, शिक्षित दिल्ली, सुशासन और सशक्त निगम के 5 प्रमुख संकल्पों पर आधारित होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्थायी समिति में पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा तथा जनहित के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। श्रीमती शर्मा ने कहा कि निगम की विकास परियोजनाओं का समयबद्ध तरीके से पूरा करने, सफाई व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली नगर निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन, जलभराव की रोकथाम, मॉनसून संबंधी रोगों से बचाव, टोल प्लाजा पर यातायात जाम, पीएम उदय योजना और सड़क कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों से स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही के साथ काम करने को कहा। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी के रिज क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से पारिस्थितिक पुनर्स्थापन अभियान चला रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 120 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,00,000 देसी पेड़ और 81,700 पौधे लगाए जाएंगे। इनमें बरगद, पीपल, नीम, अर्जुन, जामुन, शीशम, पलास और खिजड़ी जैसे प्रजातियां शामिल है। ये पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत शुरू किए गए 70,00,000 पौधारोपण मिशन का हिस्सा है। इसमें डीडीए को 23,00,000 देसी पौधे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वर्ष अब तक दिल्ली में 8,29,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इस अभियान का उद्देश्य जैव विविधता बढ़ाना, वायु गुणवत्ता में सुधार, शहरी ताप प्रभाव कम करना और दिल्ली के प्राकृतिक वन तंत्र को पुनर्जीवित करना है। दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने चौखंडी और ख्याला में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि विकास कार्यों की शुरुआत जितनी जरूरी है, उनका समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा होना उतना ही आवश्यक है। पश्चिमी दिल्ली के कई क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन की मरम्मत कार्यों के कारण बुधवार सुबह 10 बजे से बृहस्पतिवार दो बजे तक जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि इस दौरान राजौरी गार्डन, तिलक नगर, टैगोर गार्डन, विष्णु गार्डन, सुभाष नगर, ख्याला, राजा गार्डन सहित कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर लोग पानी के टैंकर मंगाने के लिए 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 250 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक स्कूटी बरामद की है। मामले में आगे की जांच जारी है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और पटना के बिहार संग्रहालय ने प्रदर्शनियों, विद्वानों की चर्चाओं, अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी बातचीत को बढ़ावा देने और संस्थागत सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक संयुक्त पहल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में आज से एक सप्ताह तक चलने वाली 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न देशों से आए खिलाड़ियों, अधिकारियों और प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि देशों तथा संस्कृतियों को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे।
3: मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता की आधिकारिक ट्रॉफी का अनावरण किया, खिलाड़ियों को खेल भावना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की शपथ दिलाई। अपने संबोधन में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी सरकार खेल अवसंरचनाओं और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
4: ये बहुत गर्व का मोमेंट है और दिल्ली अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रही है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, स्पोर्ट्स पर्सन को फैसिलिटी देने के लिए और लगातार दिल्ली में एक माहौल बनाने के लिए जिसमें हमारे युवा हमारे स्टूडेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें।
3: इसके अलावा श्री सूद ने कहा कि यह प्रतियोगिता केवल विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के बीच खेल प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं है बल्कि विभिन्न देशों के बीच मित्रता सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल भावना को सशक्त बनाने का अहम अवसर भी है।
5: इट गिव्स मी एन इमेंस प्लेजर
6: 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए दिल्ली में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी और गर्व हो रहा है। खेल दोस्ती और बेहतरीन प्रदर्शन की भावना से जुड़े 25 कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना हमारे लिए सम्मान की बात है।
3: 2 अगस्त तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में भारत सहित कॉमनवेल्थ के 25 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीराबाई चानू को स्कॉटलैंड में हो रहे ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की भारोत्तोलन स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण जीतने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतना उनकी असाधारण मेहनत दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रतीक है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये मीराबाई चानू की शानदार खेल यात्रा का एक और गौरवपूर्ण अध्याय है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 65 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर राजा मुथु पंडे को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्वदेशी मिसाइल तकनीक नवाचार और दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से डॉक्टर कलाम ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी दिल्ली में आज शाम तेज वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा पार्षद सत्य शर्मा अध्यक्ष और सत्यपाल सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली नगर निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
8: ओह लवली, वेल डन।
7: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
8: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
9: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
8: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
9: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
8: आप कौन?
10: आरबीआई कहता है
11: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। सरकार ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज

तक सहमति बनाने की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।

अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। चार बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 बजे कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभापति से अनुमति मिलने पर विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खड़गे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खड़गे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खड़गे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खड़गे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का

मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे, जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। ये विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान

हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हुए एक सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृहमंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ईशा सिंह ने निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा, मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। भारतीय बॉक्सर सचिन सिवाच ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप कल से कोयम्बटूर में खेली जाएगी। और भारतीय पुरुष टीम वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश टीम कंपटीशन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से, जहां ईशा सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उनके साथ मनु भाकर ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। भारतीय निशानेबाजों का चीन के हांगझोऊ में चल रहे ISSF निशानेबाजी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। निशानेबाज ईशा सिंह ने आज महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और देश का नाम रोशन किया। वहीं ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: ईशा ने फाइनल में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने पूरे मुकाबले के दौरान जोरदार प्रदर्शन करते हुए 50 शॉट्स में से 40 अंक हासिल कर

0: ते हुए स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। उन्होंने मेजबान चीन की युए झांग को पीछे छोड़ा। झांग ने 37 अंक के साथ रजत पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में मनु का सामना उत्तर कोरिया की योन ग्योंग पाक से हुआ। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन डबल शूट आउट में मनु ने बाजी मारते हुए पदक हासिल किया। ईशा के स्वर्ण और मनु के कांस्य पदक के साथ विश्व कप में भारत के पदकों की संख्या तक 3 हो गई है। इससे पहले महिला निशानेबाज संयम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। पदक तालिका में चीन 14 पदकों के साथ शीर्ष पर है और भारत 3 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। शशांक, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीत लिया है। ज्ञानेश्वरी का ये प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत खेल अवसंरचना का प्रमाण है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। लगातार कल भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया विशेष, और आज भी ज्ञानेश्वरी का कैसा रहा आज का उनका प्रदर्शन?
2: जी प्रशांत, ज्ञानेश्वरी ने मेडल टैली में भारत के लिए एक और पदक जोड़ दिया है। उन्होंने स्नैच में 88 किलो और क्लीन एंड जर्क में 111 किलो समेत कुल 199 किलो वजन उठाया। ये जो खिलाड़ी हैं, ये छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव भोंडिया से आती हैं। उसके बावजूद उन्होंने रजत पदक जीत कर यह दर्शाया है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, जीतने का जज्बा सब पीछे छोड़ देता है। इसी के साथ साथ ज्ञानेश्वरी एशियाई चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक विजेता रह चुकी हैं। स्नैच में ज्ञानेश्वरी ने 3 लिफ्ट शानदार किए और क्लीन एंड जर्क में शानदार उनका जो सफर था वो चुनौतीपूर्ण रहा। ज्ञानेश्वरी ने 107 किलो वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ओनोमे ने तुरंत ही 110 किलो वजन उठाकर यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज्ञानेश्वरी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, जिन्होंने 111 किलो वजन उठाकर फिर रिकॉर्ड अपने नाम किया। हालांकि यह रिकॉर्ड 1 मिनट ही उनके नाम रहा और ओनोमे ने 113 किलो वजन उठाकर रिकॉर्ड पर कब्जा कर लिया। भारोत्तोलन में यह भारत का 4th और कुल 5th पदक है।
1: विशेष, ज्ञानेश्वरी ने तो बेहतरीन प्रदर्शन किया ही है और पदक देश के नाम किया, लेकिन अन्य खेलों में भी खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। बहुत सारे खेलों में खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, तो कुछ खेलों में निराशा हाथ रही। कैसा रहा उन खिलाड़ियों का प्रदर्शन आज?
2: जी अगर प्रशांत अन्य खेलों की बात करें तो आज का दिन भारत के लिए काफी मिला जुला रहा है। धावक तेजस सिरसे ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में जगह बनाई है और इसके साथ ही उन्होंने भारत के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए एक और उम्मीद जगाई है कि शायद भारत इसमें पदक जीत सके। वहीं ऊंची कूद में मुरली श्रीशंकर ने अपनी पहली छलांग में 8.01 मीटर की दूरी तय करके ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड को पूरा करते हुए पुरुषों की लॉन्ग जंप के फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने ये सब पहले ही प्रयास में कर लिया।
1: हालांकि अगर हम बात करें विशेष, जो गुरिंदर वीर सिंह है जिनका रांची में जो इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन आज गुरिंदर वीर सिंह जो है दूसरे स्थान पर है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। उनसे सभी को उम्मीदें थी।
2: जी उनके लिए आज बहुत ही निराशा उनको हाथ लगी। 100 मीटर दौड़ में जहां नेशनल रिकॉर्ड होल्डर गुरविंदर सिंह जो है वो आगे ही नहीं बढ़ सके। अपने पहले कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा ले रहे थे वो, और 25 वर्षीय खिलाड़ी जो है 10.39 सेकंड का समय निकालकर जमैका के रोहन वॉटसन से पीछे रह गया और वो सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए काफ़ी नहीं था।
1: और अगर विशेष सचिन सिवाच की भी बात की जाए तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया आज। कैसा रहा उनका खेल प्रदर्शन आज?
2: देखिए सचिन सिवाच ने आज विलियम हेविट को हराया है और 60 किलोग्राम बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में वो पहुंच गए। उन्होंने राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड के जो विलियम हेविट हैं उनको 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से शिकस्त दी है। इस जीत के साथ सचिन ने पुरुषों के 60 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की मेडल की उम्मीदों को जिंदा रखा और ग्लासगो गेम्स में पोडियम की ओर एक और कदम आगे बढ़ाया है।
1: बहुत सारे गेमों के बारे में आपने विशेष बताया, लेकिन और कौन से गेम अभी चल रहे हैं और किन पर और निगाहें होंगी?
2: प्रशांत इस समय महिलाओं के 58 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में बिंदिया रानी देवी का मुकाबला जो है वो जारी है। वहीं आज रात 10:05 पर लॉन बॉल के भी मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स में राउंड 5 में आज पुतुल सोनोवाल प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। उनका मुकाबला आज अनवर हमादा से होगा। और भी मुकाबलों की अगर आप बात करें तो रात 12:30 से पुरुषों के 79 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में वल्लूरी अजय बाबू जो है वो खेलते दिखेंगे।
1: और विशेष ये तो हुई आज के मुकाबलों की बात, कल जादूमणि और प्रीति ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उन्होंने उम्मीद भारत की जगाए रखी है।
2: जी बिल्कुल, पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि ने राउंड ऑफ 16 में पाकिस्तान के रहमान को 5-0 से हराया है। जादूमणि ने पहले राउंड को 3-2 से अपने नाम किया था, दूसरे राउंड में सभी जजों ने उनको 10-10 अंक दिए। इससे पहले राउंड ऑफ 32 में ये जो भारतीय मुक्केबाज है, उन्होंने स्कॉटलैंड के एरोन कुलेन को 5-0 से हराया था।

0: प्रीति ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया 54 किलोग्राम में, और वह पूरे मुकाबले में बहुत ही हावी नजर आई अपने प्रतिद्वंदी पर, और ये जो मुकाबला है उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जीत लिया।
1: लगातार भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा है, और अगर हम कल के खेलों की बात करें तो भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई है।
2: Much better than the first, and there it is, locked away. A true star of Commonwealth Games weightlifting.
3: Chanu Mirabai.
2: More records again for Mirabai Chanu. Gold medal. Commonwealth Games.
1: महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के स्नैच में 85 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने नया कीर्तिमान बनाया। नाइजीरिया की रजत पदक विजेता रूथ असुकुओ नियोंग ने स्नैच में 75 और क्लीन एंड जर्क में 93 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान, और मलेशिया की आइरीन हेनरी ने कुल 167 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। मीराबाई चानू ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
4: बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत इमोशनल भी हूँ, सब कुछ है। और खुश इसलिए कि मैं काफी सेक्रीफाइस और बहुत सारे टेंशन इंजुरी से लेके गेम्स तक आके मैंने मेडल दिया है। पहला इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना एक प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश।
1: वहीं वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के लिए रजत पदक जीता।
2: Raja Muthupandi, what a result this is. So, Commonwealth Championship silver last year, now Commonwealth Games silver in Glasgow.
1: क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 158 किलोग्राम और 160 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया, लेकिन अपनी आखिरी कोशिश में 170 किलोग्राम वजन नहीं उठा सके और दूसरे स्थान पर रहे। राजा ने रजत पदक जीतने का श्रेय अपने परिवार और कोच को दिया।
5: क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसके बाद मैंने टाइम लाइक लास्ट 23-24 नेशनल्स में मैंने गोल्ड लिया। उसके बाद मोदी नगर में 2 साल से ट्रेनिंग किया वेटलिफ्टिंग वॉरियर्स में, इसी के लिए हमने प्रिपरेशन किया। डिसअपॉइंटमेंट तो हूँ, क्योंकि जैसे मेरा ऊपर मेरा कोच भी ट्रस्ट किया था कि हम गोल्ड के लिए हम पूरा एफर्ट लगाएंगे, लेकिन मैंने अच्छा नहीं किया।
1: वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह चनम्बम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 121 किलोग्राम वजन उठाकर स्नैच में कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा और रजत पदक अपने नाम किया। रजत पदक जीतने के बाद ऋषिकांत सिंह ने अपना अनुभव साझा किया।
6: पहले हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसने हमारे स्पोर्ट के लिए बहुत बेनिफिट दिया, सभी ने तो जानते हैं। इसके बाद वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट श्री संदीप यादव सर एंड वेटलिफ्टिंग चीफ कोच श्री विजय शर्मा एंड स्पेशली फ्रॉम मणिपुर ओलंपिक मेडल सिल्वर मेडलिस्ट मेरा भाई चनु, मेरा जो दीदी है वो, इसको मैं क्रेडिट दूंगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आज 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
7: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुथुपंडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
1: इस बीच खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कांस्य पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार से मुलाकात की और उन्हें 10 लाख रुपए के नकद इनाम से सम्मानित किया। और अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स, जो टेबल टेनिस दिल्ली में शुरू हुआ है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शुरू हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सप्ताह तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न देशों से आए खिलाड़ियों, अधिकारियों और प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि देशों तथा संस्कृतियों को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
8: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
1: इस बीच श्रोताओं, आपको बता दें कि शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने आज इस प्रतियोगिता में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए जिम्बाब्वे और मालदीव को 3-0 से हराया। पुरुष वर्ग के ग्रुप ए के मुकाबले में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता मानव ठक्कर ने ताइना मोमवोमा को 11-3, 11-2, 11-6 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद अनुभवी हरमीत देसाई ने तापीवा मुसारुवा को 11-5, 11-4, 11-5 से शिकस्त दी। युवा खिलाड़ी पायस जैन ने विक्रम सिंह को 11-3, 11-3, 11-8 से पराजित कर भारत की 3-0 की एक तरफा जीत सुनिश्चित की। बात हॉकी पर, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप कल से कोयंबटूर में शुरू हो रही है। 12 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट में देश भर की 30 टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। और आप एक नजर क्रिकेट पर भी डाल लेते हैं। भारत ने कल जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 में हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप की थी। वैभव सूर्यवंशी ने अंतिम मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ श्रृंखला के प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी खिताब जीता। उन्होंने इस खिताब को जीतने के बाद अपने अनुभव साझा किए।
9: प्लेयर ऑफ द मैच होना इंडिया के लिए खेल के सीनियर इंडिया में और प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो वो सपना मेरा पूरा हुआ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं थैंक यू भी बोलूंगा जिन्होंने मेरे जर्नी में सपोर्ट किया मुझे। थैंकफुल हूँ कि सीनियर्स इस तरीके के हैं और कोचिंग स्टाफ भी, मैं तरीके से हमारे हेड कोच VVS सर ने, ऋषि सर ने मुझसे मैचेस से पहले बात किया, मुझे बहुत कुछ मेरे से डिस्कस किया कि मैं क्या फील कर रहा हूँ इस टाइम पे मैच सीरीज स्टार्ट होने से पहले, मुझे क्या लग रहा है, मैं किस माइंडसेट में हूँ। और उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया था कि तू बस खेल बिंदास, कुछ सोचना नहीं है। और सीनियर भी मेरे आसपास जो है, मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं अकेला सा हूँ या फिर सीनियर टीम में आया हूँ। सब वैसे ही लगता है जैसे मैं सारे मैचेस हर जगह पे खेलता उस तरीके के। और ईशान भैया जैसे, वो भी हमारे बिहार से ही है, तो थोड़ा सा वाइब मैच कर जाता है।
1: बात स्क्वाश पर, ओंटारियो में भारत ने वर्ल्ड स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारतीय पुरुष टीम ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जबकि महिला टीम ने भी अपने पहले मुकाबले में प्रभावशाली जीत दर्ज की। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
10: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
11: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध।

0: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन्स तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा

0: व्यापार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम वन की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉ कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉ कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम मच्छरों से होने वाले रोगों और उनके उपचार पर चर्चा करेंगे। मच्छरों से होने वाली बीमारियां भारत सहित दुनिया भर में जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये वो रोग हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण होते हैं और वाहकों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंचते हैं। ये वाहक आमतौर पर मच्छर, टिक, सैंड फ्लाई और पिस्सू जैसे कीड़े या ऑर्थोपॉड होते हैं, जो संक्रमित जीव से रोगाणु ग्रहण करते हैं और उन्हें दूसरे जीव तक पहुंचाते हैं। सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले संक्रमणों के विपरीत मच्छरों से होने वाले रोग संचरण के लिए इन वाहकों पर निर्भर करते हैं। इन बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला ज्वर, जापानी एंसेफेलाइटिस, जीका, स्क्रब टाइफस आदि हैं। बारिश के मौसम में और बारिश के बाद इन बीमारियों का संक्रमण बढ़ जाता है, पर डेंगू का संक्रमण बारिश के अलावा अन्य मौसम में भी देखा जा रहा है। इन बीमारियों से बचने के उपाय और उपचार पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय वेक्टर

0: रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय धारीवाल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-4781, 2371-1176 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्सेंडल एट यायार न्यूज अलर्ट्स पर भी हैशटैग आस्क यायार के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन यायार और दूरदर्शन की डीटीएस सेवा पर भी उपलब्ध है। सबसे पहले धारीवाल जी, ये बताइए कि मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं?
2: देखिए, मच्छर विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैं बात वहां से शुरू करना चाहूंगा और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो समय आपने रखा है वो बड़ा उपयुक्त समय है, क्योंकि अभी बारिशें चल रही हैं और बारिशों की वजह से पानी इकट्ठा होता है और ये जितने मच्छर जनित रोग हैं, मच्छरों की आप लोग देखते होंगे कि संख्या बढ़ जाती है इन दिनों में, तो उसका कारण का अपने को समझना है आज के कार्यक्रम में। और उससे जो होने वाले रोग हैं वो जैसा बताया गया कि कुछ वायरल डिजीज़ हैं, उसमें मुख्य डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानीज एनकेफलाइटिस है और पिछले कुछ सालों से जिका नाम की बीमारी भी जो है वो अपने देश में रिपोर्ट हुई हैं
0: जी।
2: और कुछ ऐसी जो है वो डिजीज़ हैं जो वनवासी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, जैसे मलेरिया है
0: जी।
2: मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है और फाइलेरिया है, उसका वैसे बारिशों से संबंध नहीं होता। और जो एक नाम लिया गया कालाजार, वो भी जो है वो ज़रूरी है, लेकिन उसका भी बारिशों से कोई ऐसा संबंध नहीं है, वो अलग उसका कीटाणु है, अलग कीट है उसका। सेंट फ्लाई का नाम जैसे आपने लिया, वो उससे जो है वो होता है और ख़ास करके बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कालाजार, और उसके लिए उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है और लगभग अच्छी बात है कि भारत ने लगभग उस पर विजय प्राप्त कर ली है और उसका जो WHO का सर्टिफिकेशन है हमारा वो हो जाएगा। तो मुख्य बात है कि मच्छर जो है वो इसमें तीन कैटेगरी में रखना चाहूँगा मैं। एक मच्छर जो दिन के समय काटते हैं,
0: जैसे डेंगू का है।
2: डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर का नाम आम बोलचाल की भाषा में टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है इसको, जिसको कोई भी व्यक्ति देख करके पहचान सकता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल डॉक्टर ही जो है वो पहचानेंगे या जो है वो जो विशेषज्ञ हैं वही पहचानेंगे। उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे टाइगर के शरीर में स्ट्रिप्स होती हैं, वाइट ब्लैक, इसी तरह की, तो इसलिए उसको टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है और वो दिन के समय काटता है, ये इसमें मुख्य बात है
0: जी।
2: और बाकी जो मच्छर होते हैं वो डॉन और डस्क कहा जाता है,
0: जो रात के
2: संध्या के समय पर या जो है वो प्रातःकाल
0: अर्ली मॉर्निंग
2: का। और तीसरी कैटेगरी होती है जो मिडनाइट में काटने के लिए आते हैं और खास करके
0: शिफ्ट में आते हैं
2: वो, तो इन लोगों में भी मच्छरों में मतलब एक कि उन्होंने अपना समय बांट रखा है, तो ये एक समाज के लिए मैसेज भी है कि देखिए वो अपनी जो है वो प्रजाति को बरकरार रखने के लिए कोई दिन में आता है, क्योंकि ज़रूरत क्यों पड़ती है उनको, मानव के खून की या पशु के खून की ज़रूरत मच्छरों को इसलिए पड़ती है कि उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजाति जो है वो चालू रखने के लिए कोई ना कोई, किसी ना किसी का खून चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल आदमी का ही, व्यक्ति का ही खून जो है वो काम करेगा। जानवरों में उनको जो है वो जूफिलिक जो है वो मच्छर कहा जाता है, कि वो जानवरों पर ज़्यादा जो है वो निर्भर करते हैं। तो ये मुख्य बात अपने को ध्यान रखनी है कि मच्छर दिन में काटने वाले डेंगू करेंगे और जो सुबह और शाम करने वाले हैं वो ज़्यादातर मॉस्किटो न्यूसेंस मॉस्किटो कहलाते हैं, वो नहीं करते हैं, बीमारी नहीं जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, और ख़ास करके जो नालियाँ वगैरह होती हैं, गंदा जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें उसकी ब्रीडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। जो डेंगू का मच्छर होगा वो साफ पानी में और छोटे छोटे से आपके जैसे बॉटल, बिस्लरी की बॉटल है या कप है, उसमें पानी भी इकट्ठा हो गया तो उसमें भी ब्रीडिंग, तो और 7 दिन लगते हैं उसमें।
0: डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया सब में तेज बुखार आता है, लेकिन अलग अलग हम कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या होते हैं अलग अलग उनके?
2: देखिए, डेंगू का लक्षण एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, कि उसमें बुखार बहुत तेज होगा और उसके साथ उसको बॉडी एक जो है वो बहुत सीवियर होगा, और उसमें एक खास लक्षण होता है कि रिट्रो जो आईज हैं, आई बॉल, उसके चारों तरफ जो है वो दर्द जो है वो रहता है, और चकत्ते हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक डेंगू में खास करके ये संभावना होती है कि खून वगैरह निकल सकता है।
0: और चिकनगुनिया में?
2: चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द जो है वो होता है बुखार के साथ में।
0: और मलेरिया में डॉक्टर पीयूष
1: जी? ये तीनों बुखार जो हैं पोस्ट मानसून सीजन में पाए जाते हैं। अगर पहला बुखार बहुत तेज हो, जैसे बुखार शुरू हुआ और बहुत तेज बुखार हुआ और शरीर पे लाल रंग के रैसेस हुए, और जैसा सर ने बताया कि ये तेज दर्द के साथ अगर ये होता है तो ऐसा माना जा सकता है कि ये डेंगू हो सकता है, आंखों के पीछे का दर्द इसका ही है। मलेरिया में बुखार पैरोक्सिज्म में आता है, यानी कि थोड़े समय तक बुखार आया, जारा कपकपी के साथ बुखार आया, ठीक हो गया। और अगर चिकनगुनिया में जो जोड़ों में दर्द होता है वो बुखार के बाद के समय में पाया जाता है,
0: मतलब बुखार ठीक होने के बाद
1: में, ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो दीर्घकालिक जो जटिलताएं के रूप में हम लोग इसे कहते हैं।
0: अच्छा, हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं, योगेश जांगरे छत्तीसगढ़ से। योगेश जी?
3: जी नमस्ते।
0: नमस्ते योगेश जी, अपना सवाल पूछिए।
3: हम ये जानना चाहते हैं, दो प्रश्न है जी। पहला ये है कि ये मच्छर जनित रोग क्या जानलेवा भी हो सकते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे आसपास की साफ सफाई में हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है?
2: देखिए, जहाँ तक योगेश जी जानलेवा की बात है, तो ये बीमारियां, और क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में खास करके मलेरिया का प्रकोप पहले बहुत होता था, और आपको शायद जानकारी होगी, आप कौन से जिले के हैं छत्तीसगढ़ में?
0: अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया, हालांकि वो हमें सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।
2: छत्तीसगढ़ में मलेरिया का जो उन्मूलन प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत जो बेड नेट्स हैं, मच्छरदानी है, और मच्छरदानी में भी ऐसी जिसमें कीट जनक पदार्थ जो है वो लगा रहता है, इसको हम लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स बोलते हैं, उसके द्वारा मलेरिया की काफ़ी कमी आई है। लेकिन जो आपका मुख्य प्रश्न है कि जानलेवा ये हो सकती है यदि जो है वो समय पर दवाई जो है वो ना ली जाए,
0: तो
2: इसी तरह से डेंगू में भी जानलेवा हो सकता है। बहुत कम केसेस में इस तरह के जो है वो लक्षण होते हैं, और चिकनगुनिया तो नहीं जो है वो बहुत
1: एक मोटे आंकड़े के तौर पर अगर देखा जाए तो एक से लेकर के 3% तक, ये डिपेंड करता है कई सारे चीज में कौन से स्पीसीज में है, तो मलेरिया और डेंगू जो है वो जानलेवा हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर धारीवाल सर ने भी कहा, इसके लिए जरूरी है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रिकॉग्निशन, यानी जल्द से जल्द इसे पहचाने और उपयुक्त इलाज इसका करें।
0: तो क्या जो नियमित रक्त जांच होती है उससे शुरुआत में पता चल जाएगा संक्रमण का?
1: जी हाँ, ये जैसे मूल तौर पे डेंगू और मलेरिया की बात करें तो दोनों में खून के जांच के द्वारा इसका पता चल सकता है। किस दिन बुखार के किस दिन कौन सी जांच कराई जाए, या जांच अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार हमें पता चल सकता है। और अब तो कई तरह के रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि ये जिसकी की सेंसिटिविटी जो है 80-90% तक ऐसा रहता है, या इससे भी ज़्यादा कई केसेस में होता है, जिसमें कि हम लोग बफी कोट और जो अगर इसे माइक्रोस्कोप के अंदर में थिक एंड थिन स्मियर के द्वारा देखते हैं, तो ये सारी जांच बड़े प्रमाणिक हैं और बिल्कुल आसानी से आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। तो बारिश के मौसम के बाद जब कभी भी आपको बुखार और उसके लक्षण, जिसकी चर्चा हम लोग कार्यक्रम में आगे करेंगे, अगर आपको वैसा हो तो आप

0: नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपने डॉक्टर की सलाह पर ही आप उपयुक्त जांच करवाएं, और जांच के अनुसार जो उसका उपयुक्त इलाज है वो अगर आप करते हैं तो इसमें जो हम लोग जो मॉर्बिडिटी यानी आपके शरीर को होने वाले नुकसान को और जान को होने वाले खतरे को बिल्कुल शून्य के बराबर कर सकते हैं।
1: विपिन
2: अभी एक योगेश जी का एक प्रश्न और था
1: जी,
2: कि हमारा नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य है इन बीमारियों से बचने का, तो उसमें एक संदेश मैं देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के द्वारा कि सप्ताह में एक दिन, ये जो आजकल का मौसम चल रहा है मानसून का, पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें। हफ्ते में एक बार चाहे जो भी आपको ठीक लगे वो नागरिक जो है वो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड करके, और घर के आसपास जो डेंगू का मच्छर होता है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जो है वो जा सकता, केवल मीटर्स में ही उसकी जो है वो फ्लाइट रेंज होती है, इसको फ्लाइट रेंज बोलते हैं हम। तो घर और घर के आसपास यदि जो है वो हम हफ्ते में एक बार एक नियम बना लें कि परिवार के लोग निकलें और जो है वो ये देखें कि कहीं कोई कंटेनर तो नहीं पड़ा रह गया, कोई बॉटल तो नहीं पड़ी हुई है, कोई प्लास्टिक का कप तो नहीं पड़ा है, कोई प्लास्टिक का सामान तो नहीं पड़ा है, छत पर कोई ट्यूब वगैरह तो नहीं पड़ी है, टायर वगैरह तो नहीं पड़ा है, उसको जो है वो खाली कर दें।
1: और कूलर की सफाई भी बहुत
2: जरूरी है, कूलर की सफाई में उसमें रगड़ना जरूरी है,
1: सिर्फ पानी सुखाना ही नहीं रगड़ना
2: जरूरी है। उसके पीछे साइंस ये है कि अंडा जो है वो चिपका रह जाता है दीवार से, और इसमें मच्छरों के जो अंडे होते हैं उसके द्वारा भी एक से दूसरे मच्छर को भी बीमारी जो है वो जा सकती है, जिसको हम ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये एक संदेश
1: जी। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते विपिन जी।
3: मेरा सवाल ये था कि डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जो तीनों बीमारियां हैं, क्या इनका होने का कारण एकमात्र मच्छर ही होता है या फिर कोई अन्य कारण से भी ये बीमारियां हो सकती हैं, या फिर किसी कोई बीमारी हुई है तो फिर मच्छर काटने से ही होती है?
0: देखिए, विज्ञान के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो डेंगू और चिकनगुनिया ये एक वायरस की ये के द्वारा ये होता है, और मलेरिया जो है एक पैरासाइट की वजह से होता है। मच्छर सिर्फ इसे एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं, तो ये ट्रांसमिशन कराते हैं, और मच्छर काटने की वजह से यह मूल तौर पर होता है।
1: देशदीप दास है हमारे साथ, अब ये है केंद्रापाड़ा ओडिशा से। जी
4: नमस्ते।
1: नमस्ते
4: नमस्ते जी। नमस्ते
1: जी। जी आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं।
4: जी मेरा सवाल है, वेक्टर जनित रोगों का कारण क्या है?
2: देखिए
1: आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो
0: शुरू में हम लोगों ने इसके संबंध में
1: हम अभी तक यही चर्चा कर रहे थे, फिर भी संक्षेप में एक बार फिर से बता दीजिए।
2: देशदीप जी, जो वेक्टर एक शब्द है जो हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, बाकी ये जो है वो जो आर्थ्रोपोड्स या कीट होते हैं जिसमें मच्छर आता है, मक्खी आती है, प्लेग का जैसे पिस्सू जो है वो जिसको ये कहा जाता है, जो इसके ऊपर रहता है, चूहे के ऊपर रहता है, और स्क्रब टाइफस का एक माइट्स होता है, छोटा छोटे जो है वो कीटाणु होते हैं, उनसे होने वाले रोगों को वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहा जाता है।
1: अमित उपाध्याय हैं अब फोन लाइन पर सासाराम बिहार से। अमित जी क्या कहना चाहते हैं आप?
5: जी मैं अमित उपाध्याय बोल रहा हूँ सासाराम बिहार से। मैं ये मेरा ये सवाल था कि हर एक साल हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह बाढ़ आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमेशा मच्छर का प्रकोप ज्यादा रहता है, और वैसे भी जो छोटे मोटे बरसात के दिनों में और भी जगह होता है, तो हम लोग इसमें कुछ नए नए इतना टेक्नोलॉजी हम लोग अपडेट हो गया है, चाहे बहुत सारा हम लोग उपग्रह वैसा छोड़ते हैं, तो कुछ हम लोग ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं क्या कुछ ठोस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि इसमें कुछ ठोस हम लोग मच्छर को लेकर एक ऐसा कुछ बना दिया जाए ताकि उसको कुछ मारा जा सके, या कुछ वैसा कुछ दवाई या प्रयोग करके ताकि उसको कुछ मतलब परमानेंटली कुछ सोल्यूशन हो जाए, खासकर बरसात के मौसम में। चार पांच
0: अमित जी आपका विचार बहुत उत्तम है, शायद अगले कुछ वर्षों में या फिर अगले कुछ दशकों में इस संबंध में भी कुछ नई चीज़ें जो बायोटेक्नोलॉजी इसके माध्यम से हो सकता है, लेकिन जब तक तब तक के लिए जैसा कि कार्यक्रम के दरमियान में डॉक्टर धारीवाल वाल साहब ने आपको बताया है कि सप्ताह में एक बार अपने आसपास 1 किलोमीटर तक 500 मीटर तक आप जाएं, जहां कहीं भी जल जमाव की समस्या हो तो उस

0: से जो अप्लाइड जो ये मॉस्किटो नेट रहता है, जो मच्छरदानी रहता है, उसका प्रयोग करें। इन सभी के प्रयोग के माध्यम से हम लोग मच्छर के काटे जाने के कारण जो कोई भी बीमारी होता है उसकी संख्या में को नियंत्रित कर सकते हैं।
1: ये बात ये भी कर रहे थे कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ सरकार कुछ करे मच्छरों से बचाव के लिए, क्योंकि छोटे स्केल पर तो लोग कर सकते हैं लेकिन बड़े स्केल पर तो सहयोग चाहिए।
2: नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें अमित जी का जो कहना है बाढ़ वाला, तो उसमें एक थोड़ा सा मैं साइंटिफिक फैक्ट्स रख दूं सामने कि जब बाढ़ आती है तो ये जितने ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो शुरू में तो ये मच्छर जनित रोग जो हैं वो कम होते हैं बाढ़ वाले में, लेकिन उसके बाद जब पानी रिसीड कर जाता है, हाँ, और पानी जब इकट्ठा हो जाता है और खास करके छोटे छोटे पोखर जो बन जाते हैं,
1: जो रुक जाता है पानी
2: उसमें यदि 7 दिन से ज्यादा का होगा तो उसमें मच्छर होगा और फिर उसका एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है
1: 7 days।
2: तो लगभग ये 7 days का उसका एडल्ट निकलने का टाइम और उसको इन्फेक्ट होने का टाइम, और उसके बाद जो है वो व्यक्ति को वो काटेगा तब जो है वो। तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से पूरी जो है वो इसमें विज्ञान की तरफ जो सैटेलाइट की बात की इन्होंने, तो वो सैटेलाइट से वो एरिया इंगित कर लिए जाते हैं और उसमें फिर विशेष खास करके इंसेक्टिसाइड्स का जो है वो स्प्रे वगैरह किया जाता है। जैसे पहले DDT का होता था, आजकल DDT क्योंकि बैन हो गई है और उसकी जगह दूसरे केमिकल जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप के वो हैं उनका स्प्रे होता है और उसका प्रभाव काफी समय के लिए रहता है। तो सरकार की तरफ से ये सुविधा की जाती है।
1: हमारे अगले श्रोता हैं चौधरी महेंद्र सिंह, मथुरा उत्तर प्रदेश से। जी चौधरी जी, आप जी अपना सवाल पूछिए।
3: जी आदरणीय आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय नमस्कार।
2: नमस्कार
3: जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये डेंगू की बीमारी है ये नर के काटने से फैलती है या मादा के से, और इसके लक्षण क्या है जब ये काट लेता है मच्छर का?
1: डेंगू के लक्षण तो हम बता ही चुके हैं।
0: डेंगू के लक्षण ये मादा मच्छर के काटने की वजह से होता है, तेज बुखार होना, शरीर में दर्द होना, आंखों के पीछे में दर्द होना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं।
1: चलिए डेंगू के प्रिवेंशन के लिए ड्राई डे का जो कॉन्सेप्ट है जो आप जिसके बारे में बात कर रहे थे इसके बारे में थोड़ा और बताइए।
2: देखिए इसमें इसके पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि जो मच्छर का लाइफ साइकिल है वो यदि पकड़े अपन एडल्ट यदि पकड़ते हैं तो एडल्ट अंडे देता है और वो पानी में देता है, वो लार्वा में कन्वर्ट होता है और फिर वो लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है और प्यूपा से वो इमर्ज होकर के फिर एडल्ट होता है जो काटता है। तो ये सारी प्रक्रिया में अंडे से लेकर के और एडल्ट बनने तक लगभग 7 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मच्छर ने आज अंडा दिया और वो एडल्ट बन जाएगा। तो इसलिए यह 7 दिन का कंसेप्ट आया है कि यदि पानी आपका 7 दिन से ज़्यादा खड़ा रहा है किसी भी जगह पर, चाहे वो आजकल जैसे प्लास्टिक ये चाय के कप्स वगैरह जो है वो मैं देखता हूँ जगह जगह जो है वो छोड़ देते हैं और उसका फिर कलेक्शन नहीं होता, तो बारिश हो जाती है तो उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसमें खास करके ये डेंगू के जो मच्छर हैं एडीज मॉस्किटो जिसको बोलते हैं टाइगर मॉस्किटोज वो जो है वो, तो इसलिए वो 7 दिन वाला कंसेप्ट जो है वो आया है।
1: हमारे अगले श्रोता हैं राकेश शिमला से।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोठाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
4: जी, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे डेंगू मलेरिया जो है अगर आप बच्चों को काटा है क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा बुखार से नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को अगर मच्छर से बचाना हो?
2: राकेश जी, बच्चों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए ये जो है वो एक तरीका ये होता है कि दिन के समय में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन के समय काटता है, तो छोटी जो मच्छरदानी आती है उसमें बच्चे को सुलाएं और बच्चे को कपड़े ऐसे पहनाएं कि उसमें मच्छर के खुला शरीर जो है वो ना रहे। और तीसरी बात ये कि जो है वो जालियों का घरों में जालियों

0: खिड़कियाँ खुली नहीं होनी चाहिए, और ख़ास करके शिमला के, क्योंकि आप हैं और क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का जो विषय चल रहा है उसकी वजह से भी ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश अब जो है वो अछूता है।
1: कई पहाड़ी जगहों पर भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, नागालैंड में भी है।
0: बिल्कुल।
1: पीयूष जी, ये बताइए कि डेंगू को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो क्या क्या है? जैसे प्लेटलेट्स को लेकर ही काफी बातें की जाती है कि इसे बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार करो, कितना सच है, कितना कारगर है ये?
2: देखिए, डेंगू को लेकर के 3-4 मुख्य भ्रांतियां हैं। सबसे पहले ये कि डेंगू के इलाज में सिर्फ प्लेटलेट ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहता। किसी भी मरीज को या डेंगू के सीजन में हर कोई प्लेटलेट को लेकर के बड़ा बहुत ज़्यादा पैनिकी होता है।
1: रोज की संख्या देखी जाती है,
2: रोज उसकी संख्या देखी जाती है। तो सबसे पहले प्लेटलेट की संख्या महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसकी संख्या बुखार ठीक होने पर, यानी 5 से 7 दिन या उसके बाद में यह महत्वपूर्ण रहता है। शुरुआती समय में बुखार का नियंत्रण करना यह ज़्यादा जरूरी रहता है, और इस दौरान हाइड्रेशन का अप्रोप्रिएट होना यह ज़्यादा जरूरी रहता है। और इस दौरान अगर ब्लड की जांच भी कराई जाती है तो ब्लड में जो है पैक्ड सेल वैल्यू यानी हिमेटोक्रिट की जो वैल्यू देखी जाती है वह महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले जब कभी भी डेंगू या इसकी संभावना अगर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल नाम की ही दवा लेनी चाहिए। डिक्लोफिनैक या निमोसिलाइड या ऐसे दूसरी कोई भी और दवाई जो लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बाद में प्लेटलेट की संख्या कम होती है। पहली बात, शुरू के समय में जब बुखार बहुत तेज हो तो पैरासीटामोल भी एक डेफिनेट डोज तक दिया जा सकता है,
1: जैसे
2: कि 500 से लेकर के 1 ग्राम, एक दिन में मैक्सिमम 3 ग्राम तक एडल्ट आदमी को दिया जा सकता है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये रेडियो पर सुन करके लोग खुद का इलाज ना करें, ये सिर्फ एक बताने के लिए डॉक्टर के पास जा करके करें। और अगर बुखार उस समय ठीक ना हो तो फिर वो टेपिड वाटर से स्पॉन्जिंग करें, नंबर एक। नंबर दो ये हुआ कि प्लेटलेट की संख्या को लेकर के बहुत ज़्यादा ना घबराएं। ऑल्दो 1 लाख से कम की संख्या को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, लेकिन सीवियर टाइप ऑफ ब्लीडिंग की संख्या, ये ब्लीडिंग की संभावना बढ़ने के लिए 10,000 या उससे कम के लेवल पर ही प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट को चढ़ाने की ये के इंडिकेशन बनते हैं।
1: 10,000 से ऊपर हो तो जरूरत
2: बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हॉस्पिटल के में सेटअप में अगर आपको कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो वो और ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर टू ये बात हो गया। नंबर तीन, किसी भी भोज्य पदार्थ के खाने से, जैसे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि बकरी का दूध या फिर पपीते के पत्ते या छाला, ये पीने से जो है प्लेटलेट की संख्या बढ़ती है। मैं इस बात को बिल्कुल पुरजोर ढंग से कहना चाहूँगा कि यह एक भ्रम है। किसी भी तरह के भोजन के पदार्थ को, चाहे वो कोई तरह का फल हो, कई लोग कीवी हो गया या पपीता हो गया, ये सब के खाने से किसी भी तरह से नहीं होता। पपीते के छाले को पीने के वजह से जो है कई बार गैस्ट्राइटिस या फिर लीवर इंजाइम के बढ़ने की या हल्के तरह से लीवर में सूजन की आने की संभावना बढ़ जाती है। तो लोगों में मैं ये इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में बताना चाहूँगा कि यह बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में लोग एक दूसरे को जो है वो शिक्षा जो है
1: हर आदमी
2: डॉक्टर बनने, तो यह नुकसान ज्यादा करता है। तो जब कभी भी डेंगू होने, डेंगू में 95% बिल्कुल खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सिर्फ 3 से 4% लोग हैं जिनको कि अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसमें कि डेंगू के जो सीवियर साइन जो होते हैं वो अगर उसको आप देखते रहें, आप अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के संपर्क में रहें तो ये आपका ठीक रहेगा।
1: विजय कुमार कोल्हापुर से हमारे एक और श्रोता, विजय जी।
3: जी कनक दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते,
3: विशेषज्ञों को नमस्कार।
2: नमस्ते जी।
3: हाँ, विजय कुमार महालिंगा, विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवाड़, तहसील शहर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी
1: जी।
3: मेरा सवाल यह है कि मच्छर कट गए तो, समझो मच्छर कटे तो कौन सी क्या सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए?
2: अगर मच्छर काट ले तो फिर उसके बाद उस जगह को हल्का सा रब कर दें, और बस, ताकि वो आपको जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। मच्छर काटने से बचने के लिए ये आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जी।
1: मच्छर काटने के बाद बीमारी के लक्षण, रोग, बुखार हो जाए, दर्द हो,
2: तब हो,
1: उल्टियां हो, तब आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। धारीवाल जी, 21 जुलाई को सरकार ने डेंगू की नई वैक्सीन क्यूडेंगा को स्वीकृति दे दी है। कहा जा रहा है कि डेंगू नियंत्रण उपायों में ये मददगार साबित होगा, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन करें।
0: ये बिल्कुल आपने ठीक जानकारी दी कि भारत सरकार ने ये क्यूडेंगा नाम की एक वैक्सीन है जो

0: डेवलप हुई है और इसका लाइसेंस भारत सरकार ने इशू कर दिया है। और ये एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो इसकी टेस्टिंग होती है, और पहले भी ये बात चली थी और डेंगू की वैक्सीन जो है वो आई थी, लेकिन भारत सरकार ने उसको लाइसेंस नहीं जो है वो किया था। इस बार वाली जो वैक्सीन आई है ये क्यूडेंगा, ये अभी लाइसेंस हुई है मार्केटिंग करने के लिए। अभी इसका उपयोग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, जैसे और दूसरी टीके लगते हैं बच्चों को, चाहे वो DPT का हो, पोलियो का हो, या आजकल पेंटावेलेंट जो है वो दिया जा रहा है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जा रही है, तो ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी ये क्यूडेंगा वैक्सीन उस स्थिति में नहीं है।
1: भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं,
0: भविष्य में इस पर जो अपना भारत सरकार का एक नियम है उसके द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा इसकी जो है वो कि जब मासेस में यूज होगी
1: जी,
0: मतलब इसमें आपके प्रोग्राम के द्वारा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डेंगू बुखार होता है वो चार तरह के है वायरल, लेकिन चार तरह के अलग अलग इसके वायरसेस होते हैं, जिसको डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 ऐसा नाम जो है वो दिया गया है। डेंगू 1 और डेंगू 3 माइल्ड होता है
1: जी,
0: और डेंगू 2 और डेंगू 4 ये सीवियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसमें जो कहा जाता है कि ब्लीडिंग की जो है वो टेंडेंसी हो सकती है। तो वो जो है वो आपस में कैसी रिएक्ट करेंगे
1: जी,
0: तो वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में जब यूज होंगे मासेस में तब उसका।
1: पीयूष जी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो म्यूनिसिपल एजेंसीज और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं मच्छरों को दूर रखने के लिए, संक्षेप में?
2: जी, इन बीमारियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी व्यक्ति, हर व्यक्ति और RWA की है। अपने आसपास जहां कहीं भी पानी अगर जमा हो रहा हो तो सप्ताह में एक दिन सभी लोग बाहर निकलें और उसके बाद ये करें, यह बीमारी जो है वो ठहरे हुए पानी में ये से फैलता है। अगर ठहरे हुए पानी में आसपास अगर सफाई रखेंगे तो सरकार को और हम सभी स्वास्थ्यकर्मी को नियंत्रण करने में काफी मदद मिलेगी।
1: अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSJTalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
5: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहले स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांडर पोलिशुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सागर में ईरान के वाणिज्यिक पोत पर हुए कथित हमले का जवाब अवश्य दिया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अजीजी ने कहा कि ईरान पर किसी भी हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई का सामना करने का संकेत भी दिया। संयुक्त आवामी कार्रवाई समिति और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच वार्ता विफल होने के बाद आज पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के रावलकोट में हजारों लोग मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने के लिए एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
1: ये मार्च 52 दिनों से चल रहे विरोध आंदोलन के बीच हो रहा है। ये प्रदर्शनकारी बंदियों की रिहाई, उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने आज पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करने को कहा है। ये विरोध मार्च संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लोगों की सुरक्षा और क्षेत्र में गंभीर स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: उधर बलूच नेशनल मूवमेंट की मानवाधिकार शाखा पांक ने आरोप लगाया है कि बलूचिस्तान में अलग अलग घटनाओं में पाकिस्तानी अधिकारियों ने 4 बलूच लोगों को जबरन गायब कर दिया है। पांक ने इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। उसने कहा कि पाकिस्तान को जबरन गायब किए जाने की प्रथा को समाप्त करके और पीड़ितों तथा उनके परिवारों के लिए न्याय और मुआवजे को सुनिश्चित करके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। अमेरिका और ईरान द्वारा सप्तांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 7% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ताजा जानकारी के अनुसार वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 5.8% गिरकर 84 अमरीकी डॉलर और 14 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ईरान ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका सैन्य अभियान रोक देता है तो वो आगे और हमले नहीं करेगा। इसके बाद कीमतों में ये गिरावट देखी गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दक्षिण पश्चिम हिस्से में अनियंत्रित जंगल की आग से निपटने के लिए आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई। आग के कारण फ्रांस में 2,50,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। फ्रांस के गिरोंडे क्षेत्र में लगी भीषण आग ने पेरिस से 4 गुना बड़े क्षेत्र को तबाह कर दिया है, जहां स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अवकाश शिविरों पर रोक लगा दी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में श्रीलंका की उच्चायुक्त महिनी कोलोन से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और श्रीलंका के बीच गहरे संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनके साझा लोकतांत्रिक मूल्य और दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंध चुनावी सहयोग के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भारत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। भारतीय खगोलविदों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर निर्माण की प्रक्रिया में एक दुर्लभ ब्लू स्ट्रैगलर तारा BSS खोजा है। इससे तारों के निर्माण की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। मंत्रालय ने कहा कि स्वीकृत व्याख्या है कि ये तारे किसी साथी तारे से या तारकीय विलय के माध्यम से द्रव्यमान प्राप्त करते हैं, जिससे वे प्रभावी रूप से पुनर्जीवित हो जाते हैं। ऐसी निर्माण प्रक्रियाओं के प्रत्यक्ष अवलोकन संबंधी प्रमाण अत्यंत

0: अत्यंत दुर्लभ हैं। भारतीय निशानेबाजों का चीन के होंगझोउ में चल रहे ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। निशानेबाज ईशा सिंह ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और देश का नाम रोशन किया। वहीं ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। एक रिपोर्ट।
1: ईशा ने फाइनल में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने पूरे मुकाबले के दौरान जोरदार प्रदर्शन करते हुए 50 शॉट्स में से 40 अंक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। उन्होंने मेजबान चीन की युए झांग को पीछे छोड़ा। झांग ने 37 अंक के साथ रजत पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में मनु का सामना उत्तर कोरिया की योनग्योंग पाक से हुआ। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन डबल शूटआउट में मनु ने बाजी मारते हुए पदक हासिल किया। ईशा के स्वर्ण और मनु के कांस्य पदक के साथ विश्व कप में भारत के पदकों की संख्या अब तक 3 हो गई है। पदक तालिका में चीन 14 पदकों के साथ शीर्ष पर है और भारत 3 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है।
0: युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने जहाज हमले में भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। JAAC और अधिकारियों के बीच वार्ता विफल होने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हुए। अमेरिका और ईरान द्वारा सैन्य हमले रोकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 7% की गिरावट आई। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

10:30 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर हर श्रृंखार। और आज के हर श्रृंखार में अर्पना आप सभी का स्वागत करती है। प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से फिल्म जानवर से ये गीत आपने सुना। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बातें जो है ना, हम कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। कभी बातें आँखों से होती हैं और कभी कुछ मुलाकातें अधूरी से रह जाती हैं। सोचते तो हम बहुत हैं, सोचा तो था आज की मुलाकात में बहुत सी बातें होंगी, मगर कमबख्त जुबान खामोश रही और आँखें बोलती रही। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज साथ है लता जी का। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। ये गीत आप सभी के लिए है।

प्यार का बंधन तो अनजाना ही होता है दोस्तों, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि प्यार तो जादू है जो हमारे दिल में बस जाते हैं, उनसे बहुत सी बातें करने का दिल करता है, मगर जब मुलाकात होती है ना तो उन्हें देखने से दिल कहाँ भरता है, जुबान तो जैसे खामोश सी हो जाती है और फिर हर बात जैसे आँखों से होती है।

अभिमान फिल्म से लता जी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। 10:45 और 30 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं

जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz और आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार। आज के हर श्रृंगार में आपके साथ है अर्पना, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म हस्ते जख्म से आपके लिए गीत।

दोस्तों, कभी कभी आपको ये भी लगता होगा ना कि मुलाकातें जो हैं वो अधूरी रह जाती है जितनी बार भी आप मिलते हो, जैसे ऊपर वाला आपको इशारा कर रहा है कि ये मुलाकातों का सिलसिला हमेशा चलता रहे, क्योंकि अधूरी मुलाकातों को पूरा करने के लिए बार बार तो मिलना पड़ता है, जैसे हम और आप यूं ही FM गोल्ड पर बार बार मिलते रहते हैं। अगला गीत होगा फिल्म बदलते रिश्ते से। इस गीत के बाद FM गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार और 11:10 पर हमारी और आपकी जो अधूरी मुलाकात है उसे पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले भी आप सुनेंगे क्या, 11:10 पर होगा मार्केट मंत्रा, उसका आप पुनः प्रसारण सुनेंगे और 11:40 पर आपके साथ रहूंगी गीत मेरे मनमीत में, मैं अर्पना। फिलहाल वक्त हो गया है 10:55, ये गीत आपके लिए और समाचार जरूर सुनिएगा इस गीत के बाद। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्ष दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर $89 और 74 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम डेविड को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 2400 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
1: For the sixth consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments, while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of the students. It incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the House.
3: I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. We have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt this debate? The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
1: Despite repeated appeal from the chair and the government, the opposition members were on their feet in both the houses. As the pandemonium continued, both Lok Sabha and Raj Sabha were adjourned for the day to meet on Tuesday. During the ongoing monsoon session, so far, no substantive business has been transacted in Parliament, with Anupam Mishra, Anand Kumar.

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. Today is Monday and we'll be taking your calls, listeners, on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I am Gaurang Dhawan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। आज सोमवार है और आपके प्रश्नों को हम सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों के उत्तर देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा शिकरवार। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल जी।
1: और सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आर्थिक सुर्खियों पर।
0: थैंक यू निखिल एंड दीपशिखा, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। A quick look at the headlines before we begin. Benchmark domestic indices surge 1%. Sensex rises almost 800 points. Nifty settles at nearly 24,000. Most Asian stock market indices register gains. And global crude oil prices tumble around 7%.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 1% की बढ़त। सेंसेक्स में करीब 800 अंकों का उछाल और निफ्टी 24,000 अंक के आसपास पहुंचा। अधिकतर एशियाई शेयर बाजार लाभ के साथ बंद हुए और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों

0: में आज लगभग 7% की गिरावट।
1: Listeners, before we move into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांकों में आज उछाल आया और दोनों प्रमुख सूचकांक 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 776 अंक ऊपर आकर 76,836 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 229 अंक की तेजी के साथ 23,996 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में भी आज बढ़त देखी गई। मिड कैप सूचकांक में 1.1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.3% का लाभ दर्ज हुआ। इससे पहले भू राजनीतिक चिंताओं में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच बाजार हरे निशान के साथ खुले। निवेशकों के सकारात्मक रुख के कारण सभी सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई, जिससे पूरे दिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर चढ़ते रहे। लगातार बढ़त ने दोनों मुख्य सूचकांकों को लगातार 5 दिन की गिरावट के सिलसिले को तोड़ने में सहायता की।
1: Benchmark domestic equity indices rebounded today and ended 1% higher. The Sensex climbed 776 points to close at 76,836, while the Nifty rose 229 points to settle at 23,996. The broader market at the National Stock Exchange also gained in line with frontline indices. The mid-cap 100 index added 1.1%, while the small-cap 100 index soared 1.3%. Earlier, the markets opened with a gap up amid easing geopolitical concerns and a decline in crude oil prices. Positive investor sentiment fueled broad-based buying across sectors, driving the Sensex and Nifty higher throughout the intraday session. The sustained gains helped both benchmark indices end their 5-day losing streak.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 28 कंपनियों में बढ़त दर्ज हुई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल में 5.6% से ज्यादा, इंडिगो में 4.9% से अधिक और इन्फोसिस में लगभग 3.7% की तेजी आई। इसके विपरीत HDFC बैंक में 0.4% की गिरावट आई और एक्सिस बैंक मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ।
1: In sectoral indices on the BSE, barring telecommunication, which dipped almost 0.7%, all other sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, mid-small private banks' quality tilt advanced over 2.3%, IT rose 2.3%, and realty gained more than 2.2%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,779 companies advanced, 1,579 declined, and 200 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 67 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.89 रुपए पर बंद हुआ। दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज अगर बाजार की चाल पर नजर हम डालते हैं तो पता चलता है कि 5 दिन पिछले सप्ताह में गिरावट का सिलसिला देखा, आज उसमें सकारात्मक रुख नजर आया और अलग अलग हिस्सों से पॉजिटिव खबरें भी मार्केट पर आई हैं। तो इसके अलावा क्या आपको लगता है कैसे सेंटिमेंट्स रहे जिन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ अपग्रेड किया?
2: सबसे बड़ा जो एक फैक्टर निकल जी रहा है आज बाजार में, जो अगर हम देखें, जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आज जो विराम, जो फ्रेश अटैक्स है उस पर विराम अमेरिका ने लगाने की बात की है, और ऐसा माहौल लग रहा है कि हो सकता है ये शायद एक ड्यूरेबल एक एग्रीमेंट की तरफ शायद मूवमेंट हो, ऐसी उम्मीद है। और यही उम्मीद जो है बाजार में आपको दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। उसके अलावा देखिए, यूएस फेड का डिसीजन है जो इस हफ्ते कल मीटिंग स्टार्ट होगी, तो इन सारे क्यूज को बाजार देख रहा है। अगर आप रिजल्ट्स भी देखें तो वो पॉजिटिव रहे हैं, बेहतर रिजल्ट हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। तो बाजार जो है वो होल्ड किया हुआ था कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बावजूद, लेकिन जब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस में अगर आप देखें तो वो जब एक सिग्नल आया है तो वो बाजार में उसको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव क्यू मिला आज, और वो इसीलिए एक्ट इस तरह से किया है।
1: We'd like to share with you listeners once again, we'll be taking market related queries. Our telephone numbers 2331-4444, 233104.

0: 81 and 2371-7106. And while we await listener calls, Deep Shekhar, you know, we've always been very gung-ho and very positive about the India growth story. And I think, you know, so much is happening across geopolitical tensions and everything. But let's focus a little on the India growth story. So good results, as you said. And I think oil prices, of course, will play a role. Inflation will have its own path to follow. But what about our growth story? Strong as ever?
1: Actually, if you look at the numbers which have been coming out, you know, first quarter beyond expectations, there's a lot of apprehension around monsoon, but there is a slight improvement now. And if you look at the sowing, that also the numbers are much better. So all these we expect will have some impact, positive impact in terms of the growth story that remains intact. And with the easing of West Asia oil prices, definitely, you know, economy, it's a very positive for Indian economy going forward. Expect that it will go as was expected in terms of performance.
0: Right. So the larger picture remains positive, green, and
1: that
0: and
1: is
0: very,
1: what
0: very optimistic.
1: That is what.
0: All right. And particularly optimistic, keeping global scenarios in mind.
1: Yeah.
2: Deepshikha ji, अभी जो मॉनसून की बात चल रही थी, जिस तरह से expectation थी कि मॉनसून का performance इस बार इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो अभी results अगर हम देखें और मॉनसून को देखें, तो आपको क्या लगता है कि market आने वाले कुछ समय में कैसा चल सकता है?
1: देखिए, अगर आप मॉनसून देखें, सोइंग देखें, तो सोइंग जो है वो काफ़ी हद तक पिकअप हो कर गई है. मॉनसून का स्प्रेड जो है उतना नहीं था, लेकिन इम्प्रूवमेंट आया है. अब उम्मीद की जाती है कि जो सेकंड क्वार्टर भी होगा उसका भी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, स्पेशली बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा था कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से थोड़ा प्रेशर रहेगा कंपनीज के ऊपर, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया है, लेकिन उतना असर नहीं आया. तो इस पर फर्स्ट क्वार्टर विल पॉसिबली एक्ट एज अ बेस एंड सॉर्ट ऑफ विल बिल्ड अपॉन इट.
2: इस बीच चेन्नई से हमारे साथ में विक्टर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर. विक्टर जी, प्लीज आस्क.
3: गुड इवनिंग सर.
1: गुड इवनिंग विक्टर.
3: गुड इवनिंग एंड थैंक यू मार्केट मेंटर टीम फॉर द वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइडेड. माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग गोल्ड प्राइसेस मैडम. सो व्हाट विल बी द अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड ऑन द गोल्ड प्राइसेस, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द गोल्ड प्राइसेस.
1: Yes, Victor. Gold, you know, typically this is not the buying season. If you look at the India, you know, historically, traditionally, I would not get into the prices, but gold still remains a good long-term investment. If and also, you know, just look at your portfolio and how much you can keep. Best percentage is like about 10-15% of your portfolio.
0: Right. We've always, you know, throughout the Market Mantra series that we've said, always said have a diversified portfolio.
1: Exactly.
0: And one of the diversifications is gold.
1: Gold.
0: You know, now
1: absolutely.
0: Do we say only have small cap, only have mid cap. So diversify so that it hedges you against different
1: exactly.
0: fluctuations.
1: You know, if there is a geopolitical, you know, crisis that we saw, or, you know, inflation, the gold will act as a hedge in future.
2: Deepshikha, abhi mid cap aur small cap ki hum baat kare to pichle kuch dino mein dekha gaya ki lagatar usme bhi giravat dekhi ja rahi thi, lekin aaj jaise kharidari bade paimane par hui to mid cap aur small cap mein bhi hame uchhal dekhne ko acha khasa mila hai. To ye rahat ka ek keh sakte hain ki asar hai, ya matlab rahat ki baat hai kya, abhi bhi isme volatility hame dekhne ko milegi, utar chadhav dekhne ko mil sakte hain?
1: Nikhil ji, dekhiye, jis samay tak west asia mein crisis, ये जो है इसमें एक बहुत कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है परमानेंट, तब तक थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा. और सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव जो है उसके लिए सेंसिटिव जो है आपका स्मॉल एंड मिड कैप ही रहता है. तो अगर स्टेबिलिटी वहां आ जाती है, एक ड्यूरेबल पीस एग्रीमेंट कुछ हो जाता है, तो इसमें हम देखेंगे कि ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहेगा. लेकिन ये उतार चढ़ाव कुछ समय तक रहेगा अगर पीस नहीं होता है.
0: राइट. सो दीपशिका, यू नो, व्हेन वी टॉक ऑफ वॉलेटिलिटी एंड यू आर सेइंग दैट इट्स बाउंड टू बी देयर, बट इज देयर समथिंग कॉल्ड रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी?
1: सो यू नो, इफ यू लुक एट, इफ टुमारो यू नो द पॉज इज लिफ्टेड, देयर इज अगेन अ क्राइसिस, there would definitely, it won't be range bound. So what I'm saying is, if you have a durable peace in West Asia, if it is durable enough, and we've seen good corporate earnings, then definitely mid and small caps will show a good movement. But this volatility, I can't say will be like range bound, especially because there is uncertainty in West Asia, on West Asia count.
0: So uncertainty filters down everywhere.
1: Everything.
0: Somewhere
1: exactly.
0: Trying to fix it, find where is the method in that. Uncertainty is uncertainty.
1: Yes.
0: We have a next caller from Gurugram, Tarun. Tarun, welcome. Please ask your question.
4: Good evening. My question is, with respect to the diversification in the mutual fund portfolio, which of these two options is a better option? Investing in directly into a gold mutual fund, or investing in the gold through a diversified or a liquid mutual fund?
1: I think it is best to keep a very best to maintain a balance.
0: Right. In fact, Tarun, and this is what a lot of experts also believe, that balance is the key. So if you're saying which is the best, both of them have their pros and cons, and our mutual fund experts invariably will share those with you, have been over the past few programs. But if a particular kind of a fund suits you, I think based on your risk appetite and based on your balance that you want to create, but I think balance has been a key which is advocated by most people.
1: Absolutely. I mean, if you have a diversified portfolio, you need to sort of have a diversified portfolio, keep a very balanced approach towards it.
0: Right.
2: Deepshika, bhi market ki agar hum baat kare to dekha gaya hai ki lagatar kuch sectors aise hain jo improvement ki taraf ja rahe hain, aur jo aise sectors the jo kahin ruk rahe the unhe bhi ek growth mil rahi hai. To अभी हमारी जितने मतलब इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसीज की जब बात करते हैं, एक ग्रोथ रेट डिस्कम बढ़ाते रहते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिससे सभी को एक पॉजिटिव वे मिले आगे बढ़ने के लिए. आपको लगता है कि जो छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं लोग, उनको थोड़ा सा अगर वो सस्टेन करते हैं चीजों को तो उनको बड़ा मुनाफा मिलता है?
1: देखिए, छोटी कंपनी में अगर निवेशक निवेश करता है, एक वो रिस्क उसमें ज्यादा होता है, एक रिस्क एपेटाइट रहता है. तो जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखना आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो बेस्ट रहता है. आपका रिस्क एपेटाइट अगर ज्यादा है, अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको रिटर्न उसी हिसाब से ज्यादा मिले. बट छोटे निवेशक हैं, बेहतर उनके लिए ये होता है कि वो रिस्क ज्यादा ना लें.
2: जी.
1: तो उनका जो बेट है वो ऐसी कंपनीज पे रखें जिनका स्टेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, देखें उसको, उसके परफॉर्मेंस देखें और तब घुसें उनमें.
2: और इस बीच भोपाल से शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं. शंकर, आपका प्रश्न पूछिए.
5: नमस्ते मार्केट पंथर टीम.
1: नमस्ते शंकर जी.
5: मैडम, माय क्वेश्चन इज अबाउट इन्फ्लेशन. Government declares inflation or whatever, RBI tries to control the inflation, but our real life inflation looks to me very high, and banks deposits for our senior citizens are never able to cover up the losses, or it never actually gives beyond the, it gives always less than inflation. So how what is the solution for us to senior citizens? Equity is one thing, but we are not in a position to take much risk. So where should we invest so that we are at least not at loss in FD, bank FDs? Thank you.
1: Shankar ji, this is a question which actually is a big dilemma for policy makers also. You know, when interest rates rise, they benefit the investors who have deposits in banks or who are earning interest on their income. But it is also, it pinches those who have taken loans, who are also, who can be middle class savers, who have taken home loans or some other loans. But yes, from investment point of view, definitely inflation is always seen as a tax. It affects not just savers, but everybody else, even those who are going to purchase or households. Better would be to have a diversified portfolio. So you can also look at other investments.

0: just not bank FDs, but go beyond. And which is why we keep advising people to have a diversified portfolio so that both your risks and returns are well balanced and met with.
1: दिल्ली से अगले श्रोता है नितिन हमारे साथ में. नितिन जी आपका सवाल पूछिए.
2: नमस्कार जी.
0: नमस्कार नितिन जी.
2: नमस्कार. मैं मैडम से ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गोल्ड लोन का रेट बताते हैं तो जो उसका प्योर सोना होता है उसका रेट कुछ मार्केट में खरीदने लगे तो उससे रेट ज्यादा होते हैं, ऐसा क्यों? और दूसरा सिल्वर का जो चांदी के जो बर्तन खरीदते हैं तो वो भी चांदी के बर्तन प्योर नहीं रहते, उसमें भी 50%
0: नितिन जी आपके इस लाइन पे बहुत शोर आ रहा था, बहुत क्लियरली आपका जो सवाल है वो समझ नहीं आया, लेकिन जितना मुझे समझ आया आप ये जानना चाह रहे थे कि चांदी के बर्तन जो हम खरीदते हैं बहुत प्योर नहीं होते हैं, इनको खरीदना चाहिए या नहीं. देखिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, कहते हैं ना तो ज्वेलरी खरीदिए ना बुलियन में आप इन्वेस्ट करिए, तो चांदी का अगर आप प्योर उसमें खरीदेंगे तो आपका एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो वो बेस्ट होता है. लेकिन आप इस्तेमाल के लिए अगर खरीदना चाहते हैं या आगे गिफ्ट के लिए लेना चाहते हैं तो आप देख करके लें कि जो ज्वेलर आपको बेस्ट दे रहा है, जो आपके विश्वास का है और सर्टिफिकेशन कुछ आपको उसकी गारंटी दे रहा है.
1: इसमें एक चीज उन्होंने और पूछी थी कि इन चीजों का बफर स्टॉक कर सकते हैं हम या जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों में से क्या प्रॉफिटेबल है?
0: नहीं तो जैसा कि मैंने कहा ये बर्तन वगैरह ठीक है, आगे अगर दाम बढ़ेगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन प्योर अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप बुलियन में कीजिए, मतलब उसके बिस्किट खरीदिए या कॉइन्स खरीदिए. बर्तन में आपका वेस्टेज बहुत हो जाता है.
3: राइट, डिपेंड्स ऑन द पर्पस कि किस पर्पस के लिए,
0: किस पर्पस से अगर आप आगे देना चाहते हैं या आगे रिटर्न के लिए शादी ब्याह के लिए लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका मेकिंग चार्जेस आपका बाकी सब भी बढ़ रहा है तो आप
3: उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा
0: प्रोपोर्शन में. हाँ तो आप वो खरीद के रख सकते हैं.
3: जी जी. भिलाई से वी हैव रवि. रवि स्वागत है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: नमस्ते. गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा.
0: गुड इवनिंग रवि.
4: मैडम मुझे जानना,
1: आई थिंक उनसे हमारा संपर्क टूट गया है किसी वजह से.
3: द कॉल ड्रॉप बट मीनवाइल वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेल टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर. द कंपनीज स्टैंडअलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज अराउंड 25.3% ईयर ऑन ईयर to 5,533 crore rupees. BEL standalone net profit increased by nearly 8.2% to over 1,048 crore rupees on an annual basis.
1: आगे बढ़ते हैं. प्रमुख एशियाई शेयर बाजार सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.1% से अधिक ऊपर आ गया. हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1% की तेजी देखी गई. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में लगभग 0.6% उछाल आया और जापान का निक्केई 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ. वहीं दूसरी तरफ ताइवान का ताइएक्स मामूली रूप से नुकसान में रहा. देखिए का लास्ट वीक में जब हमने देखा तो एशियाई मार्केट्स में पहले सकारात्मक रुख देगा या उसका फिर गिरावट का रुख आया, अभी फिर बहुत ज्यादा उछाल नहीं लेकिन एक बैलेंसिंग उछाल देखने को मिला है, तो ये जियोपॉलिटिकल असर रहा इस पर या मार्केट का कुछ असर रहा?
0: देखिए जियोपॉलिटिकल असर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है आईटी कंपनीज के अर्निंग्स को लेकर के बेहतर अर्निंग्स आए कुछ अमरीकी कंपनियों के जो लार्ज टेक कंपनीज हैं, उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट, खासतौर से अगर आप देखें कोरियन बाजार जो है जो पिछले समय काफी गिरावट उसमें देखी गई थी तो वहां ये थोड़ा सेंटिमेंट बेहतर हुआ है.
1: सिंगापुर की अगर बात करें तो वहां पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के बड़ा ही एक बैलेंस्ड रवैया अपनाया जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर से काफी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर डॉलर का जो पेमेंट है उसमें बहुत ज्यादा उनको नुकसान ना हो, इसका भी असर पड़ सकता है मार्केट पर?
0: बिल्कुल, ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, हर देश जो है अपना जियोपॉलिटिकल जो असर है वेस्ट एशिया क्राइसिस का उसको मैनेज करने के अलग अलग तरीके देख रहा है, तो सिंगापुर में भी ये कोशिश

0: 4,510 रुपीस पर किलोग्राम अ शॉर्ट व्हाइल अगो।
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.6% बढ़कर 1,43,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.8% की बढ़त के साथ 2,23,862 रुपए पर थी। दीक्षिका जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद निखिल,
0: थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टू आवर प्रोग्राम। Listeners, before we close, a quick look at the headlines once again. Benchmark domestic indices surge 1%. Sensex rises almost 800 points. Nifty settles at nearly 24,000. Most Asian stock market indices register gains. And global crude oil prices tumble around 7%. And that's all in today's program. Till next time, namaskar. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:44 और 30 सेकंड हो चुके हैं। अभी जो आपने गीत सुना उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, तेरे घर के सामने फिल्म से ये गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, एसडी बर्मन का संगीत और हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत। अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म अलबेला से, ये खूबसूरत सा गीत होगा चितलकर की आवाज़ में। चलिए सुनते हैं ये गीत, गीत मेरे मनमीत। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आज आपके साथ है अर्पणा।

अगला गीत ओपी नैयर की रचना है और गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है। आशा जी की आवाज में ये गीत होगा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत।

जा तो आप कहीं नहीं सकते, ये हमें मालूम है, क्योंकि ये है आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, गीत मेरे मन मीत। अगला गीत आप सुनेंगे उसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे दूं, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ है, एसडी बर्मन का संगीत है, फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी। और इसी के साथ अर्पना भी आपसे इजाजत चाहेगी इस गीत के बाद। एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार, 11:55 और 44 सेकंड हो चुके हैं। तो चलिए गीत का आनंद लीजिए, अर्पना को दें इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने के विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। स्थानीय निवासियों ने ये जानकारी दी। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने बताया कि यह हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारीडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6वें लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

जमीन आसमान फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। वीकेंड की छुट्टी कब पलक झपकते बीत जाती है पता ही नहीं चलता। फिर आता है सोमवार, ढेर सारी जिम्मेदारियां, काम का लंबा सिलसिला और भागती दौड़ती जिंदगी। पूरे दिन बस यही लगता है कि कब थोड़ा सा सुकून मिले और कब अपनी पसंद के गीतों के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिले। और अब दिन भर की भाग दौड़ के बाद आखिरकार वो सुकून भरा पल आ ही गया। अब वक्त है सारी थकान को पीछे छोड़ने का, मन को हल्का करने का और उन सदाबहार नगमों के साथ कुछ खूबसूरत लम्हे जीने का जो हर तनाव को पल भर में भुला देते हैं।

जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वीकेंड की यादें अभी पूरी तरह धुंधली भी नहीं हुई कि सोमवार अपने साथ जिम्मेदारियों की लंबी फहरिस्त लेकर आ गया। दिन भर काम की रफ्तार ऐसी रही कि खुद के लिए दो पल निकालना भी मुश्किल हो गया। लेकिन अब जब रात धीरे धीरे अपनी चादर फैला रही है तो मन भी कुछ सुकून के पल समेटने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये सच है कि दिमाग के किसी कोने में कल सुबह के कामों की तैयारी भी चल रही है, अलार्म का ख्याल, अधूरे कामों की सूची और आने वाले दिन की योजनाएं। मगर जिंदगी का खूबसूरत संतुलन शायद यही है कि जिम्मेदारियों के बीच भी हम अपने लिए कुछ पल चुरा ही लेते हैं।

वक्त हुआ है 12:29 और ठीक 46 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बड़े दिल वाले फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। पिछले गीत ने बिल्कुल कहा कि जो पल है बस यही है, इसी पल को जी ले, अगले पल की चिंता में इस वक्त को मत गवा, यही पल है जीने के लिए और खुशियों के लिए।

कमांडो फिल्म का गाना आपने सुना विजय बेनेडिक्ट की आवाज़ और अलीशा चनॉय की आवाज़ में। अनजान ने इसे लिखा और बप्पी लाहिड़ी ने संगीत दिया। काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, उसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जिंदगी का असली हुनर यही है कि काम के बीच अपने सुकून के पल भी बचाए जाएं। अगर हम सिर्फ काम में ही उलझे रह गए तो मंजिल तो मिल जाएगी मगर सफर की खूबसूरती कहीं पीछे छूट जाएगी। इसलिए जरूरी है कि जिम्मेदारियां भी निभाई जाएं और अपने मन को सुकून देने वाले छोटे छोटे लम्हों को भी पूरी शिद्दत से जिया जाए। काम और सुकून दोनों का साथ ही जिंदगी को संतुलित, खूबसूरत और अर्थपूर्ण बनाता है। शायद यही जीने की असली कला है और यही जिंदगी का सच्चा सुख भी।

जूली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कितने सुकून भरे पल हैं ये, मीठा मीठा संगीत कानों में घुल रहा है और मीठी मीठी नींद पलकों पर धीरे धीरे उतर रही है। ऐसे लम्हों में लगता है जैसे सारी थकान कहीं खो गई हो और रात अपनी नर्म बाहों में हमें प्यार से सुला रही हो।

नूरी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। वक्त हुआ है 12:54 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने के विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्यों को घायल कर दिया। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने कहा कि यह हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारिडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6ठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों तथा दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रुपये और उपविजेता टीम को 1,00,000 रुपये मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी

यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। वहीं अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबुडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सेशल्स के जेड माइकोक से होगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।

सोने की चिड़िया फिल्म का गाना आपने सुना, तलत महमूद और आशा भोसले की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। दिल कब किससे और क्यों जुड़ जाए, इसका फैसला अक्सर इंसान नहीं कर पाता। फिर भी मोहब्बत में दूसरे की रजामंदी और एहसास की अहमियत बनी रहती है। इसलिए शायर बड़ी नफासत से पूछता है, तू बता दे प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं।

राजहट फिल्म का गाना आपने सुना, रफीक की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। कुछ लोग जिंदगी में बाहर की तरह आते हैं, उनकी मौजूदगी से हर लम्हा महक उठता है, लेकिन जब वो जाते हैं तो अपने साथ कई अनकहे सवाल छोड़ जाते हैं। दिल बार बार यही पूछता रह जाता है, क्या राज था जो दिल में छुपाकर चले गए। शायद मोहब्बत की कुछ दास्तानें कभी मुकम्मल नहीं होती, इसलिए उनकी खामोशियां भी उम्र भर सुनाई देती रहती हैं।

पतंगा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। कुछ रिश्ते वक्त की धूल में धुंधले जरूर पड़ जाते हैं, लेकिन दिल की किताब से कभी मिटते नहीं। शायद इसीलिए गीतकार लिखता है, दिल से भुला दो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। इसमें शिकायत कम है और वफा का एहसास ज्यादा है। जैसे कोई चुपचाप ये कह रहा हो कि अगर तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे यादों में भी रहना पड़े तो भी तुम्हारी याद मेरे दिल से कभी नहीं जाएगी।

बाजार फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा और संगीत दिया श्याम सुंदर ने।

वक्त हुआ है 1:29 और ठीक 31 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

झांझर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। ये पुरानी संगीत की धुनें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि दिल के उन कोनों को भी छू जाती है जहां अनगिनत यादें चुपचाप बसी होती हैं। इनमें बीते हुए लम्हों की खुशबू है, अनकहे जज्बातों की गर्माहट है और रिश्तों की मासूमियत का एहसास भी।

भाभी फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। क्या ही नाजुक और दिलकश अंदाज था इस गीत का। महज एक सवाल और एक जवाब में मोहब्बत का पूरा जहां समा गया है। जिसका नाम हर धड़कन के साथ लिया जाता हो, उसका परिचय शब्दों से नहीं दिया जा सकता। जब कोई दिल में बस जाए तो उसकी पहचान जुबान की मोहताज नहीं रहती। इस गीत की मासूम शरारत और प्रेम की गहराई आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है जितनी अपने दौर में रही होगी। पुराने गीत सचमुच कम शब्दों में बड़े बड़े एहसास कहे जाने का हुनर रखते थे।

बहार फिल्म का गाना आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, कितनी प्यारी चुलबुली और मन को गुदगुदा देने वाली धुन है ये। इस गीत में प्रेम का निमंत्रण भी है, अपनापन भी और एक मासूम सी शरारत भी, जैसे कोई अपने प्रिय से मुस्कुराते हुए कह रहा हो, एक बार मेरे दिल में जगह बना लो, फिर कभी उसे छोड़कर मत जाना, और फिर छम छमा छम छम। इन शब्दों की झनकार गीत में ऐसी मिठास खोल देती है कि अचानक ही होंठ मुस्कुरा उठते हैं और मन थिरकने लगता है।

जेलर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। प्यार जब दिल में उतर जाए तो फिर चैन और आराम दोनों ही कहीं पीछे छूट जाते हैं। दिल हर धड़कन में उसी का नाम दोहराता रहता है। तभी तो कहा गया है, हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ।

अनुराधा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि शंकर ने। कभी कभी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो गुजर तो जाते हैं लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। वक्त आगे बढ़ता रहता है मगर यादें वहीं ठहरी रहती हैं। जब उन पलों की खुशबू फिर से मन को छूती है तो दिल से और होठों से यही आवाज आती है, हाय रे वो दिन क्यों ना आए।

वक्त हुआ है 1:54 और ठीक 33 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

चार दिन और चार रातें फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने।

काली टोपी लाल रूमाल फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। दर्द की भी अपनी एक अजीब फितरत होती है, कभी वक्त उसे कम नहीं कर पाता तो कभी दवा भी बेअसर रह जाती है। इंसान हर दर पर उम्मीद लेकर जाता है, हर रास्ता आजमा लेता है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ यादों के सहारे जीना सिखा देते हैं। तभी तो ये एहसास दिल से निकलता है, न तो दर्द गया न दवा ही मिली, मैंने ढूंढ के देखा जमाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस भी हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने कहा कि यह हमला कडुना राज्य के कौरव परिषद क्षेत्र के नारीडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6ठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों तथा दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रुपए और उपविजेता टीम को 1,00,000 रुपए मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबुडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। रात सुरमई जैसे किसी चित्रकार ने आसमान पर गहरे नीले और काले रंगों से एक खूबसूरत तस्वीर उकेर दी हो। दिन भर की भागदौड़ के बाद यही वो वक्त है जब दुनिया की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है और दिल अपनी ही धड़कनों को सुनने लगता है।

दिल की राहें फिल्म का गाना आपने सुना, मन्ना डे और उषा खन्ना की आवाज़ में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। अपने सुरों में मेरे सुरों को बसा लो, कितनी खूबसूरत बात कह जाता है ये भाव। जब दो सुर एक दूसरे में इस तरह खुल जाएं कि उनमें अलगाव की कोई रेखा ना बचे, तब केवल एक धुन जन्म लेती है जो समय की सीमाओं से परे चली जाती है। शायद इसी का नाम प्रेम है, इसी का नाम अपनापन है।

दस्तक फिल्म का गाना आपने सुना मदन मोहन की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। ये गीत विरह, अकेलेपन और अनकहे दर्द की ऐसी अभिव्यक्ति है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और केवल संगीत दिल की बात कहता है।

फिल्म चोरी चोरी का गाना आपने सुना अफरोज बानो की आवाज़ में, संगीत दिया साजिद वाजिद ने। सावन की पहली फुहारें बरसते ही जाने कितनी बेटियों को अपना मायका याद आ जाता है। झूले, पेड़ों की हरियाली, माँ की ममता और बाबुल का स्नेह, सब कुछ जैसे मन को पुकारने लगता है। तभी तो ऐसे गीत पीढ़ियों से दिलों में बसे हुए हैं। वो केवल मौसम नहीं, रिश्तों की खुशबू भी साथ लाते हैं।

वक्त हुआ है 2:27 और ठीक 42 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

इम्तिहान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शाम तो हर रोज़ वैसी ही होती है, मगर हर शाम का एहसास एक सा नहीं होता। कभी वही शाम यादों की चादर ओढ़ लेती है, कभी किसी अपने की आहट बन जाती है, और कभी यूं ही दिल को सुकून दे जाती है। आज की शाम भी कुछ ऐसी ही है।

दीदारे यार फिल्म से आपने ये गज़ल सुनी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। अमीर मीनाई ने ये गज़ल लिखी और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। महबूब के चेहरे से नकाब धीरे धीरे सरक रहा है और उसकी खूबसूरती भी परत दर परत सामने आ रही है। उस नज़ारे का लुत्फ जल्दबाजी में नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता है।

अर्पण फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:47 और ठीक 31 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

रिश्ता कागज का। फिल्म से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

वक्त हुआ है 2:53 और ठीक 16 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही नीता अग्रवाल के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

फिल्म आशा से अभी आपने एक गीत सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रालय की प्रमुख अद्वितीय विक्रय योजना USP पहल की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की भूमिका केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों को जोड़ना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने नवनियुक्त अधिकारियों से सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और जनहित को बनाए रखने का आग्रह किया और भारत के पूंजी बाजारों की नींव के रूप में विश्वास पर बल दिया। NISM में आयोजित एक दीक्षांत कार्यक्रम में अधिकारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि SEBI की भूमिका विनियमन से परे निवेशकों के विश्वास की रक्षा तक फैली हुई है। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6ठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीमों ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा तथा मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11:10। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

किसी से जान पहचान होती है, पहली मुलाकात होती है, और कई बार पहली मुलाकात इस तरह की मुलाकात हो जाती है जो जीवन भर की याद बन जाती है, या कहें कि रिश्ता भी बन जाता है। इसी तरह की पहली मुलाकात से सजा ये गीत, आइए सुनते हैं।

मोहम्मद रफिया शबूसले की स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। ओपी नैयर का संगीत था, राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना। 1967 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम दो दिलों की दास्तान। ये गीत आपने सुना।

शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना साथियों। हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के संयुक्त स्वर थे। फिल्म का नाम हमराही जो रिलीज हुई थी वर्ष 1963 में। साथियों रात का समय और नींद न आने का सबब भी खोज रहे हम कई बार, ऐसा हो भी जाता है साथियों, कई बार नींद नहीं आती, ऐसे में ओल्ड कोल्ड सुरीले गीत हम सफर बनते हैं, हमराही बनते हैं, तो दिल को ताजगी मिलती है, सुकून मिलता है।

गुलशन बावरा की लिखी रचना आपने सुनी साथियों। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज़ों का जादू, फिल्म का नाम परिवार, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1968 में। साथियों, जब तक जीवन में कोई हम सफ़र नहीं आता तब तक बात ही अलग होती है, लेकिन जैसे ही हम सफ़र जीवन में प्रवेश कर लेता है जीवन भर के लिए, जी हाँ, तो बात बिल्कुल अलग ही हो जाती है। दुनिया नई नई से दिखने लगती है और बहुत सी हमारी बातें बदल भी जाती हैं, यानी सकारात्मकता का पुट और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है।

12 ओ क्लॉक इस फिल्म का गीत साथियों अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों से सजा ये नगमा था। 1958 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी साथियों। ओपी नैयर का संगीत था मजरूह, सुल्तानपुरी की लिखी बहुत ही सुंदर ये प्यार भरी रचना थी।

शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गीत हसरत जयपुरी की लिखी रचना मुबारक बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हमराही फिल्म का नाम

गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों से सजा ये गीत आपने सुना प्यासा फिल्म से। 1957 रिलीज ये फिल्म। सचिन देव बर्मन का संगीत था, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना। और जब साथियों दिल से दिल की डोर बंध जाती है तो क्या होता है? जी हाँ, यही कहते हैं हम सभी। क्या कहते हैं?

और हम भी इन सुंदर गीतों की डोरी से बंधे हुए हैं, कहाँ जाएंगे, यही लौट लौट करके आएंगे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही एफएम कोर 100.1 मेगाहर्ट्ज से। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ों से सजाइए गीत, अभी आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना, 1969 रिलीज इस फिल्म का नाम धरती कही पुकार की। साथियों, उपहार तो बहुत लिए दिए जाते हैं। जाहिर उपहार जब हम किसी को देते हैं तो बहुत सोचा समझा जाता है कि भाई क्या ऐसी चीज़ दें जो काम भी आए, अच्छी लगे, इसी तरह की बातें हमारे जहन में होती हैं। लेकिन इस अगले गीत में उपहार दे रहे हैं, ले रहे हैं, क्या उपहार आ रहा है, स्वीकार किया जा रहा है या नहीं, सुनते हैं इस नगमे में।

जी हाँ, स्वीकार हो गया इनका जो गिफ्ट ये दे रहे थे, उपहार दे रहे थे, और दिल का गुलदस्ता बाहों का हार। भाई ऐसा उपहार तो क्या बात है। शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गीत, शैली शैलेंद्र ने लिखा था, शारदा और किशोर कुमार की आवाजों का सुंदर समन्वय था इस गीत में। फिल्म का नाम वचन, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1974 में। और अब सुंदर सवाल, सुंदर जवाब से सजा ये गाना।

शिकारी फिल्म से ये रचना अभी आपने सुनी। 1963 रिलीज ये फिल्म थी। साथियों, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, जीएस कोहली का संगीत और फारूक कैसर की लिखी रचना थी। साथियों, बात जब हम करते हैं तो तारीफ का जो अंदाज़ होता है वो बहुत निर्भर करता है कि हमारे रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं। तारीफ भी उसी तरह से तो होती है। और हम तो कहते हैं कि जो बात अच्छी लगे, जो गीत अच्छा लगे, बात अच्छी लगे, घटना अच्छी लगे, उस बात, घटना या कोई भी विषय हो इस दुनिया की, उसकी तारीफ बेबाक रूप से, पारदर्शिता के साथ, बिल्कुल ईमानदारी से कर देनी चाहिए, जैसे कि ये कर रहे हैं यहाँ।

हूँ कि शोर लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत आप सुन रही हैं छाया फिल्म से। 1961 रिलीज फिल्म सलील चौधरी का संगीत राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। इसी गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी

0: विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर से कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रालय की प्रमुख अद्वितीय विक्रय योजना यूएसपी पहल की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री सिंधिया ने कहा कि मंत्रालय की भूमिका केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों को जोड़ना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने नवनियुक्त अधिकारियों से सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और जनहित को बनाए रखने का आग्रह किया तथा भारत के पूंजी बाजारों की नींव के रूप में विश्वास पर बल दिया। एनआईएसएम में आयोजित एक दीक्षांत कार्यक्रम में अधिकारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि सेबी की भूमिका विनियमन से परे निवेशकों के विश्वास की रक्षा तक फैली हुई है। उन्होंने निरंतर सीखने पर बल दिया और पेशेवर विकास के लिए सेबी के समर्पित क्षमता निर्माण विभाग और शिक्षा पोर्टल का उल्लेख किया। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6ठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय वाय प्रातः के 4:11 और 6 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, जीवन पथ पर चलते चलते कई बार ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अजनबी होकर भी बड़े अपने से लगते हैं। उनकी आभा एक अरुणिमा भांति होती है जो हमारे जीवन पथ को प्रकाशवान करती है।

किशोर कुमार की आवाज से सजा ये गीत आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, असद भोपाली की लिखी रचना। फिल्म का नाम हम सब उस्ताद हैं, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1965 में। और अब दिल की मुराद पूरी हुई, घर आ गए हैं दिल में बसने वाले।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों से सजा ये गीत आवारा फिल्म से अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना थी।

साथियों, जब कभी अकेले तन्हा होते हैं और बहुत से प्रश्न कई बार मन में होते हैं, बहुत सी उलझनें होती हैं, ऐसे में जब हम याद करते हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत बहुत बहुत अपना है और हमें लगता है कि उसे याद करके शायद हमारे मन का बोझ भी कुछ हल्का हो जाएगा, इसी तरह की भावना होती है और वाकई ऐसा होना भी चाहिए। ऐसे रिश्ते, ऐसे दोस्त होने चाहिए जीवन में जिन्हें हम सोच करके भी खुश हो सकें, गर्व महसूस कर सकें।

गुलजार की लिखी ये रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत, मोहम्मद रफ़ी शारदा की आवाज़ों का जादू, फिल्म का नाम सीमा, जो रिलीज़ हुई थी वर्ष 1971 में।

राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना अभी आपने सुनी। फिल्म का नाम भाभी, 1957 रिलीज। ये फिल्म लता मंगेशकर की आवाज थी और संगीत दिया था इस गीत के लिए चित्रगुप्त ने। साथियों, अरुणिमा काल में सूर्य की लालिमा, उसकी आभा विद्यमान है और हरी घास पर कुछ है जो चमक रहा। क्या है वो, किसका है?

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना साथियों। सलील चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना, फिल्म का नाम परख, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1960 में।

संकल्प फिल्म से ये सुंदर रचना अभी आपने सुनी। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। सुलक्षणा पंडित और विनोद शर्मा की आवाजें थी, खय्याम का संगीत, कैफी आजमी की लिखी रचना। और आइए अब थोड़े से बच्चे भी बन जाते हैं। बच्चा बनना बहुत ज़रूरी है साथियों जीवन में, तभी तो तनाव मुक्त रह पाएंगे। तनाव तो होते ही हैं, समस्या परेशानी चलती ही रहती हैं जीवन में, लेकिन सुंदर संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए सकारात्मकता के साथ यदि हम आगे बढ़ते रहें तो जीवन में परेशानियां जो आएंगी वो जल्द ही चली जाएंगी या हमें कम महसूस होंगी। आइए सुनते हैं ये सुंदर रचना।

मधुबाला झावेरी की आवाज से सजा ये गीत हमने सुना। हंसराज बहल का संगीत था, भरत व्यास की लिखी रचना। 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम जग्गू।

शमशाद बेगम लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत बैजू बावरा फिल्म से अभी आपने सुना। 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। शकील बदायूनी ने की लिखी रचना थी और नौशाद का संगीत था। साथियों हमारी सीमा प्रहरी विपरीत परिस्थितियों में भी दिन हो रात हो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, हम सभी की रक्षा करते हैं, उन्हें उन सबको नमन करते हैं हम। और जब उनको घर परिवार की याद आती है तब कई बार ऐसा होता है ड्यूटी से उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलती है या कई बार वो अपने घर की तरफ चल पड़े होते हैं, रास्ते में होते हैं, मंजिल तक पहुंचे भी नहीं होते और रास्ते में ही उन्हें संदेश मिलता है कि तुरंत वापस आ जाएं, एमरजेंसी है। ऐसा भी होता है साथियों। तो और जब छुट्टी के दिन आ जाते हैं कि भाई छुट्टी होने वाली है अब तो घर जाएंगे हम, तो उस समय क्या माहौल होता है, उसी तरह की परिस्थिति पर ये गीत बहुत ही सुंदर सजा है हमारी फिल्म जगत में।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज़ों से सजा ये गीत आस का पंछी फिल्म से अभी आपने सुना साथियों। 1961 रिलीज ये फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं अग्नि परीक्षा फिल्म से। 1981 रिलीज ये फिल्म सलिल चौधरी का संगीत, योगेश की लिखी रचना और आवाज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है।

लता मंगेशकर हेमंत कुमार के स्वरों से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं एक ही रास्ता फिल्म से। 1956 रिलीज फिल्म, हेमंत कुमार का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना। इसी रचना के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी

0: भी कहा टाइम एलोटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमफुर्मी में हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पोलिशुक को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय की मौत भी हो गई है। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की निंदा कड़ी है। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। एक दिन के लिए निर्धारित चुनाव अब अगले महीने की 10 तारीख तक 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने चुनाव का बहिष्कार किया, जबकि संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीटीआई का दावा है कि पिछले महीने जेएसी के विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई हिंसक झड़पों में 100 से अधिक लोग मारे गए, जिसके कारण लगभग 50 दिनों तक क्षेत्र में अशांति रही। नाइजीरिया के कडुना राज्य में कल बंदूकधारियों ने कम से कम 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य घायल हो गए। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने बताया कि यह हमला कडुना राज्य के कोरा परिषद क्षेत्र के नारीडों गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी समुदाय पर इसी समय हमला हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की। वे कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि कार्यबल देश के खिलौना उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिला शूट पुट F57 फाइनल में जीत हासिल करके देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। वल्लूरी अजय बाबू ने पुरुषों के भारोत्तोलन के 79 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं एथलेटिक्स में सर्वेश अनिल कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद में दूसरा स्थान हासिल करके एक और रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले मीराबाई चानू ने 190 किलोग्राम भार उठाकर महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए खिताब जीतकर भारत के लिए स्वर्ण पदक की शुरुआत की। भारत के आदित्य पटनायक ने सेपांग अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में गोल्ड व्यूज चैंपियनशिप मलेशिया के तीसरे दौर में स्पोर्टिंग क्लास जीतकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार रेसिंग खिताब जीत लिया है। इससे पहले वे लगातार 2 साल पोलो कप इंडिया में उपराष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Both the Houses of Parliament were adjourned yesterday following uproar by opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. In the Lok Sabha, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं इस समय 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः की 5:11 और 18 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, विवेकानंद जी का कथन है, जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं होना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक लेकर जाता है।

हेमंत कुमार और साथियों के स्वरों से सजा ये गीत आबे हयात फिल्म से हमने आपको सुनवाया। 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सरदार मलिक का संगीत था और हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी।

बैचू बावरा, अभी आपने इस फिल्म से ये रचना सुनी। 1952 रिलीज ये फिल्म आवाजों का जादू था उस्ताद आमिर खान और डीवी पलुस्कर का। नौशाद का संगीत था शकील बदायूनी की लिखी रचना थी। साथियों, जब धरती किसान की मेहनत से अन्न से परिपूर्ण होती है तो किसान के साथ साथ ये धरती भी अपनी प्रसन्नता जाहिर करती है। इस तरह से जब हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखते हुए छोटे छोटे उपायों को करेंगे धरती को बचाने, उसे साफ रखने वास्ते, तो भी धरती खुशी से झूम उठेगी और धरतीवासी भी उस खुशी को महसूस करके ज़रूर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं आईना फिल्म से। 1974 रिलीज ये फिल्म, नौशाद का संगीत, जानिसार अख्तर की लिखी रचना। साथियों, भोर का समय, किसी घर में नृत्य कार्यों की शुरुआत तो कहीं स्कूल दफ्तर जाने की तैयारी, और ऐसे में साथी बनते हैं ये गीत जो हमें और भी ऊर्जावान और आशावादी बनाते हैं।

आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ उसी सजा ये गीत, फिल्म का नाम अभी तो जी लें। 1977 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सपन जगमोहन का संगीत था, नक्श लायलपुरी की लिखी रचना थी। मित्रों, जीवन की एक नव भोर का आगमन तब भी होता है जब किसी भी परिवार में नव शिशु का आगमन होने वाला होता है। उसके आने की दस्तक से सारा घर, सब रिश्ते खुशी के माहौल से सज जाते हैं। ऐसी ही सुंदर खुशी को दर्शाता ये गीत सुनते हैं।